0: गाना जो गाया है उसका कोई धुन तो फिल्मी है, लेकिन भजन के माध्यम से संदेश जो है एकदम दिल को छूने वाला है। तो बात करते हैं जो हमारा आज विषय है उसकी ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। श्याम यानी एक श्याम प्रेमी के लिए बहुत बड़ी बात होती है, और श्याम प्रेमी यानी जो भगवान के प्रेमी होते हैं, श्याम यानी कृष्ण, तो जो प्रेमी होते हैं उसके, वो अपनी ज़िंदगी की उस चीज़ से जब ये संदेश लोग सुनेंगे तो अपनी ज़िंदगी की जो सोच है यानी जो अच्छी सोच है वो एकदम बदल जाएगी। तो जो हिम्मत है जो लोगों पे, वो सुनेंगे और बदलने की कोशिश करेंगे यानी अच्छी तरफ जाने की कोशिश भी करेंगे। किस्मत वाला ही सुधरता है, और नहीं तो कौन सुधरता है आज के युग में, इसलिए किस्मत बहुत ज़रूरी है। आखिर आज श्याम से बात हो ही गई, थोड़ी गलतफहमी थी वो दूर हो गई। मैंने पूछा बाबा ये क्या हाल कर दिया, अपने प्रेमियों का बुरा हाल कर दिया, दीदार नहीं कर पा रहे मिलकर तेरे नाम का भजन, कीर्तन भी नहीं कर पा रहे हैं, निराश निशान क्या चढ़ाए भोग भी हम तुम्हें नहीं लगा पा रहे हैं, बहुत मन करता है लगाने को जोर जोर से तेरे नाम का जय जयकार, वो भी नहीं लगा पा रहे हैं, आप भी मंदिर में पट बंद करके बैठे कीर्तन करने के लिए नहीं हो सकते इकट्ठे, आप करो कुछ तो इस समस्या का समाधान, तेरे प्रेमी लगा सके तेरे चरणों में ध्यान। पहले श्याम मंद मंद मुस्काए, एक व्यक्ति ने, एक जो श्याम के प्रेमी थे उन्होंने इस प्रकार का जब भजन किया तो श्याम यानी कृष्ण मंद मंद मुस्काए, मुझे तो वो पहले से ही ज़्यादा खुश नज़र आई। श्याम मुस्का कर बोली तुम तो बहुत भोले हो, बात तुम्हें मैं सारी बतलाऊंगा, थोड़ा ध्यान देना ये पहले कहना चलूंगा, फिर एक एक करके सारी बात बताऊंगा, पट मैंने अपने दरबार के लिए उनकी वजह से बंद, जो कहते थे कुछ भी हो जाए मुझे 11 पर खाटू जाने से न कोई रोक पाए, हम तो 6 महीने पहले ही सारी टिकट बनवाई, पहले कहते थे बाबा बुलाते हैं, अब कहने लगे हम जाते हैं, मेरे दर की मर्यादा भूलने लगे थे, मेरे दर खाटों की तुलना मकबरों से करने लगे थे, यानी भगवान जो खाटू श्याम है उनकी तुलना मकबरा यानी जो
1: मकबरा बोले तो
0: जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा हुमायूं का मकबरा,
1: हुमायूं का
0: तो मकबरा के मकबरा जैसे
1: वो लाल किले के पीछे,
0: हाँ मकबरा जैसे तुलना करने लगे थे मंदिरों की, इस प्रकार से जो बात आ रही है। दर्शनों के लिए नहीं अपनी फ्रेंड को लेकर घूमने पिकनिक मनाने मेरे धाम में आने लगे थे, मुँह में लेकर पान गुटका दर्शनों को आने लगे थे, निशान और श्याम बनी बिना सोचे समझे बिना, शुद्धता बिन भागती भाव से सिर्फ दिखाई को वो चढ़ाने लगे थे, 2-4 बार आगे बैठ देकर रुपया करके दर्शन खुद को बड़ा भक्त बताने लगे थे, मेरे ही सेवकों के वे कर्मियों मेरे ही सेवकों में वो कमियां निकालने लगे थे, इस पट बंद करके मैं सब देख रहा था, अब कीर्तन की बात बताऊं सबसे पहले मुझे बुलाते सबसे बाद में मुझे निकालते, सबसे पहले मुझे बुलाते सबसे बाद में मुझे निकालते, मैंने कहा ऐसा न कहो बाबा, उन्होंने कहा पहले सुनो बेटा, बीच में कुछ न कहो, सबसे पहले पंडाल में मैं आता, मुझे पूछने कोई नहीं आता, कोई आता भी तो ये पूछ कर चला जाता, बाबा का श्रृंगार कब तक होगा, मुझे बॉक्स में बंद करके लाने वाले उसको अंदाजा बताता, फिर 2-4 बड़े प्रेमी आते मेरे को सजाने को हुक्म सुनाते, कहीं तो कोई पर्दा भी न लगाता, मेरे जब श्रृंगार होता तब तक 5-7 जल्दी करो बहुत टाइम लगा दिया, पब्लिक आनी शुरू हो गई, कहते और चले जाते, मेरा श्रृंगार पूरा हुआ ये ऐलान हो गया, फिर होती पूजा की तैयारी, पंडित जी पूजा करवाने को तैयार हैं, लेकिन पूजा करवाने वाला जोड़ा अभी तक फरार है। कोई कुछ नहीं कह सकता, रुपया मोटा ले रखा। पूजा का जोड़ा आया, पंडित जी से जल्दी जल्दी पूजा को निपटाया। जोत की तैयारी हो गई, जोत आने में पल भर की देरी हो गई। सब कहने लगे, बाबा नाराज हो गया। कान पकड़ो, अरदास लगाओ, 501 रुपया चढ़ाओ। भक्त जी थोड़ी कपूर डाली, जोत आ गई। मेरी जय जयकार होने लगी, जोत लेने वालों की लाइन लगने लगी। ये जो कविता है, ये कविता रूप में आज जो संदेश है, तो जो लोग समझ पा रहे होंगे और न समझे तो यहाँ तार कर सके और पूछ सके कि ये कौन रकम का भाषा तुम बतियाए लहराज। तो कविता रूप में जो लोग जानते हैं, समझ रहे हैं, बबली जी तो पूरा समझ ही रही है, संजय जी भी समझ रहे हैं, तो और जिसको नहीं समझ आ रहा तो पूछ सकते हैं। जानकारी रिश्तेदार निभाने लगी, मंडल वाले नए नए कुर्ते पहन, बड़े बड़े बिल्ले लगा पटके पहन कर आने लगी। मेरे दर्शन के बाद पहले 56 भोग के कूपन मांगने लगी। कीर्तन की शुरुआत हुई, गणेश वंदना से शुरुआत हुई, हनुमान जी की भी बात हुई, मेरे नाम का भी गुणगान शुरू हुआ, छोटे से बड़ा सिंगार आना शुरू हुआ। कुछ नेता भी आए, कुछ बड़े महाराज भी बुलाए, फूल पत्तियाँ उड़ाते हुए उनको मेरे दरबार ले आए। मोटे मोटे फूलों के हार उनको पहनाए, सोफा सजा उनको मेरे दरबार बिठाया, और मेरी तरफ पीठ करके उनको बिठाया। एक को सजा गुरुजी कह रहे हैं, एक को सब गुरुजी कह रहे थे, मुझे ज़्यादा तो उनकी सेवा कर रहे थे। अचानक न जाने उनको क्या हुआ, जोर जोर से गर्दन हिलाने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसने मोर छड़ी जोर से घुमाई, मैंने सोचा ये मेरे दरबार में मेरे सामने कौन सी शक्ति आई। सबका उसकी ओर ध्यान हुआ, बाबा आया बड़ा, बाबा आया का शोर हुआ। मैं समझा मुझको याद किया, लेकिन सब कोई उस ढोंगी के चरणों में लंबा लेट हुआ। वो लगा मेरे चढ़ावे को खजाना कहकर बांटने, चमचे लगे गुरुजी के चरणों को चाटने। खैर वो अपनी करने की भोगेगा, मुझे मेरे पंडाल में आने का तरस तुरंत याद आया। मैंने सोचा सारा कीर्तन मेरे नाम से हो रहा, मोटा मोटा चंदा मेरे नाम से मेरे प्रेमियों इकट्ठा हो रहा, मुझे ही भूल सबका स्वागत जोरदार हो रहा। खैर छोड़ो, सिंगर छोटे माहौल बनाने लगे, कुछ भोजन तो कुछ अपने पसंद के सिंगार सुनने आने लगे। पंडाल में भीड़ बढ़ने लगी, मंडल वालों की हलचल होने लगी, स्नैक्स बहुत खा लिया, भोजन की तैयारी करने लगी। बाबा को भोग लगा दो कुछ ही कहने लगी, भोग की थाली लेकर आ गई। सिंगार के भजन भोग के गवाओं ये कहने लगी, अग्निमुख है भोग ज्योति में लगाने लगी। मेरे मन भी थोड़ा खुश हुआ, बच्चों ने पिता को याद किया, फिर इत्र की बरसात हुई, जोत में इत्र डालने लगी। मैं ये सोच में पड़ गया, इनको क्या हुआ, क्या ये सब इस इत्र के पीते हैं, अगर नहीं तो क्या अपने अग्निमुख से उड़ेलते हैं, खुद के शरीर पर डलते ही जलन होती है, मेरे मुख में डालते वक्त सोचा क्या होगा, बच्चे हैं या सोच भूल गया। फिर थोड़ी कीर्तन में ध्यान दिया, मैं सज धर कर बैठा हूँ, मुझे ये गुमान हुआ प्रेमी मेरे मुझे ही निहारेंगे, ये ध्यान हुआ, मेरे नाम का जय जयकार हुआ। 56 भोग देकर डिब्बे कीर्तन में लड़कियों को फंसाते, कीर्तन में सिंगार भजन कोई पूरा न गाता, दो चार लाइन सुनता फिर दूसरा आता, वो भजन कब झूठे किस्से कहानी सुनता, उससे बड़ा सिंगर आता यानी गाने गाने वाला, वो चटकारेदार बातें सुनाकर कभी चीखता कभी चिल्लाता। कीर्तन में भाव भक्ति को भुला, युद्ध भूमि में जैसा माहौल बनाता कोई। इस प्रकार से जो है आज का जो कविता का कविता से श्याम के बारे में बातचीत चली, तो मुझे लगता कि बहुत सारे लोगों ने वो समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे तार के माध्यम से समझ सकते हैं। संजय जी आप कुछ पूछना चाहते हैं?
1: जरूर जरूर, अति सुंदर और संदेश जो आपने रखे राजेंद्र जी, और ये बात हो जाता है कि कविता के माध्यम से आज आपने ये संदेश को रखे। और ये जरूर कहना चाहूँगा कि जीवन के किसी के प्रति की गई भलाई व्यर्थ नहीं जाता है ना। जीवन में किसी के प्रति की गई भलाई व्यर्थ नहीं जाता है, वह कब किस रूप में आपके पास लौट कर आएगी ये सिर्फ ईश्वर जानते हैं। तो हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ेंगे और गीत के बाद फिर हम सब फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
0: हाँ, तो बढ़ते हैं गीत की तरफ। जया किशोरी जी का जो भजन है बहुत ही सुंदर है और उस सुंदरता के भजन उन्होंने गाया हुआ बड़ा अच्छा है।

0: speak? अब हमने चोर को पकड़ लिया।
1: चलो चलो
0: चलो भागो जल्दी। कहानी बनना है ना स्कूल में,

0: जया किशोरी जी ने, और ये सुंदर सा भजन हम सबके लिए गीत के रूप में और रखे। और शांता जी, जैसे कि अभी राजेंद्र जी ने वो कविता के रूप में हम सबको ये संदेश सुनाए ना, तो कविता किस, व्हाट इज कविता, ओके थोड़ा नीदरलैंड्स में तो सुनाओ। तो
1: कविता जैसे मेरे ख्याल से तो हमने तो उसका रिसर्च नहीं की, पर जो रैम होते हैं एक दूसरे से, एक लाइन से दूसरा लाइन पर जो एक जैसे रैम जाके होते हैं वो उसको कविता कहते हैं। और जब हम देखें तो हमारे जो चालीसा भी है तो वो भी जाकर वैसे ही रैम होता है, और चौपाई भी जो है तो वैसे जाके जैसे शुरू होता है वैसे जाकर दूसरा चौपाई में वैसे ही अंत होता है।
0: शांता जी, यानी कि रैम, देखो अब इस पे जब बात हो जाता है ना, जैसे भारत देश में फिल्म बनते कितने और कितने गाना वहाँ लिखा जाता है, कोई कोई ये कोई 6,500 गाना लिख चुके, कितने उससे भी ज्यादा लिख चुके गाना, तो वो सब रैम होना चाहिए।
1: हाँ, तब तो कर वो सुंदरता भी आएगा ना,
0: उसमें सुंदरता आ जाता। बबली जी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आपने कभी कुछ कविता लिखे या नहीं लिखा अभी तक?
2: नहीं नहीं, मैंने कभी कविता नहीं लिखी, सुनी जरूर है, पढ़ी जरूर है, लेकिन लिखी नहीं।
0: पर शांता, शेर शायरी में जो होलांत में और रेडियो स्टेशन से चलता है, तो लोग कहते हैं कि ना सिर्फ आजकल आप गीत और गाते हैं और शेर शायरी में सबसे ज्यादा आप ही गान करते हैं।
2: हाँ जी, मैंने भी सुना है शांता जी बहुत अच्छी शेरो शायरी करते हैं और अपने से लिखते भी हैं।
0: अपने से भी लिखते भी आप?
2: ये चीज हर कोई नहीं कर सकता, ये भगवान की देन है। कोई कोई कविता लिखता है, मेरी हर कोई सिंगर बन जाता, कवि बन जाता, सब नहीं बन पाते।
0: तो शांता जी, इसमें आपके कैसे ये कला है, आपसे कैसे, कुछ बताइए इसके बारे में।
1: अभी तो जैसे बबली जी ने कहा, ये तो भगवान के देन है भी है।
0: और आप ऐसे ही लिखते रहते हैं, हम सबके सभी आकाशवाणी द्वारा लगभग 188 देशों तक ये कार्यक्रम को जो चलाया जाता है ना।
2: हाँ जी,
1: वो तो है। हाँ,
0: और हम सभी सुनते हैं और हम लोग के भी अच्छा लगता है, सुनने वालों भी। और इसमें भी ये बात, अभी एक श्रीमती जी ने टेलीफोन पे आए और उन्होंने कह रहे थे कि जो आपने जिस प्रकार से और कहते हैं संदेश रूप में, तो अच्छा लगता है सुनने को लिए।
1: तो इसी बात पे एक शेर शायरी हो जाए।
2: हाँ जी, जरूर।
0: इसी बात पे एक शेर शायरी हो जाए तो इसमें
2: ये भी कोई पूछने की बात है शांता जी।
0: क्यों, माइक आपका तो ऑन है।
1: कहते ना कि नेकी और पूछ।
2: हाँ, सही बात।
1: हाँ, तो कविता ऐसे सुन दिया कि हो जाती है गलती, हो जाती है गलती क्योंकि इंसान है हम, माफ कर देना, माफ कर देना क्योंकि दिल से बड़े नादान है हम।
2: वाह वाह शांता जी, बहुत अच्छा।
0: क्योंकि दिल से बड़े नादान है हम,
1: तो देखना आप इसमें कैसे रैम होते हैं ना, कि इंसान है हम और नादान है हम।
2: सही बात, इंसान और नादान मिल गया तो।
1: हाँ, तो ये था एक छोटी सी कविता शेर शायरी,
0: एक छोटी सी झलक और
2: शेर शायरी।
0: बबली जी, आप भी कुछ सुनाने वाले थे और मैं देख रहा हूँ कि आपके पास हो गया है।
2: हाँ जी,
0: तो आप भी कुछ सुना ही दीजिए हम सबको, ताकि हम सब के समय पे भी ध्यान देना।
2: हाँ जी, जरूर। मेरी तरफ से प्रेरणा जो मैं सुनाने जा रही हूँ।
0: प्रेरणा?
2: हाँ जी,
0: प्रेरणा
2: मीन्स
0: रोशिन का बेटी का नाम।
2: नहीं नहीं, हाँ वो नाम भी होता है प्रेरणा। प्रेरणा,
0: हाँ जी,
2: ना ना, इसका मतलब है कि सबक, हम हर किसी सीखना।
1: हाँ,
2: हम हर किसी चीज से कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो इंसान हो। हाँ जी, तो संसार में दो प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं शांता जी।
1: जी,
2: पहले अपना फल स्वयं दे देते हैं, जैसे आम, अमरूद, केला, और दूसरे होते हैं जो अपना फल छिपा कर रखते हैं, जैसे आलू। हाँ, अदरक, प्याज,
1: जमीन में जो है।
2: हाँ जी, जो फल अपने आप दे देते हैं उन वृक्षों को मनुष्य व प्रकृति दोनों सुरक्षित रखते हैं, और ऐसे वृक्ष फिर से बारंबार फल देने के लिए तैयार रहते हैं। किंतु जो अपना फल छिपा कर रखते हैं वे जड़ सहित खोद दिए जाते हैं, उनका अस्तित्व फल के साथ ही खत्म हो जाता है। हाँ जी,
0: जैसे आलू और प्याज आदि, वो यही मालक होते हैं ना।
2: हाँ जी, और वो तभी खत्म हो जाते हैं अगर उनको जमीन में से निकाल लो तो।
0: वो जो छुपा के अपना रखता है। हाँ। ये इसमें काफी गहराई वाला संदेश है।
3: बहुत गहराई वाला संदेश बबली जी ने जो दिया है कि कुछ तो अपने फल दिखा के रखते हैं, कुछ छुपा के रखते हैं।
2: हाँ जी,
3: तो जो दिखाने वाले फल है वो तो एकदम कोई भी खा सकता है, लेकिन छुपाने वाला फल तो जो लगाया है वही खा पाएगा, क्योंकि उसको क्या पता चलेगा औरों को कहाँ छुपा रखा है।
2: हाँ जी, ठीक इसी प्रकार मानवता को प्राप्त भी होने वाले फल जैसे धन, विद्या व शक्ति भी कल्याण के कार्य में उपयोग होने से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, तथा वह महान आत्मा इस लोक व परलोक दोनों में सम्मानित होती है। वही दूसरी ओर जो मनुष्य अपनी विद्या, धन व शक्ति को अपने स्वार्थ निहित छिपा कर रखते हैं व उपयोग करते हैं, वह कर्म के फल बीज सहित नष्ट हो जाते हैं।
0: तो राजेंद्र जी, इस बात बबली जी ने ऐसा संदेश सुनाया कि मेरा बस ये हो जाता कि राजेंद्र ये तो बिल्कुल आप पे निर्भय है।
3: हाँ।
0: आप कभी आइंधोवे में लेस देते हो तो कभी अमस्टरडाम में लेस देते हो तो कभी यहाँ मंदिर में देते हो तो कभी लुंडन में देते हो, इस प्रकार से आप लगे रहते हो।
3: कभी तो हाँ, लेकिन अभी जो वर्ल्ड योग इंस्टीट्यूट का जो इंस्टीट्यूट है वो तो पेपनवैक में है, लेकिन अभी बाबा जी से बात हुआ कि हम लोग उसको यहीं जो आर्य समाज मंदिर के बगल में जनवरी के बाद बनेगा तो हम लोगों का ज्वाइंट वेंचर रहेगा और वहाँ भी रहेगा इस प्रकार का कार्यक्रम।
0: तो यहाँ भी बड़ी चीज होने वाला,
3: बड़ी चीज होने वाला,
0: जबकि आप लगातार लगे हुए हैं और हमारे सभी सुनने वालों भी आपका इंतजार में लगे रहते हैं कि ये दिन ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम आएगा और आप हम सबके अपना संदेश सुनाएंगे
3: जी।
0: और बबली जी का जो ये फल वाला संदेश, ये बड़ा इसको क्या कहे, धमाकेदार या मजेदार या स्वादिशदार।
3: हाँ, बहुत मजेदार।
0: हाँ, क्योंकि बड़ा गुप्त वाला बात हुआ ना, जो छुपा छुपा कर रखते तो वो बस एक ही दान के लिए, जो जैसे एप्पल होता वो ऋतु फल होता ना राजेंद्र जी।
3: हाँ,
0: ऋतुओं में जैसे आम आदि, आम फलों का राजा आम, अमरूद आदि, तो ये हर बार और देते रहते खाना, यानी कि हम सबको फल। और इसी प्रकार से हम मनुष्य के लिए ये संदेश भी है, अपना और ज्ञान अपना और जो बांटते रहे एक दूसरे के साथ, और हम इसी प्रकार से और जा कर के पका हुआ फल बन कर के रहेंगे।
3: हाँ।
0: तो राजेंद्र जी, क्यों ना एक दूसरा गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर समय का खेल निराला,
3: भोले बाबा शरण में तुम्हारी, इस तरफ बढ़ते हैं, समय का खेल तो निराला है ही।

भोले बाबा शरण में तुम्हारी। तो जैसे ही हमारा लागी छुटेना का समय होता है तो पता चलता है कि हमारा जो समय है वो बढ़ रहा है आगे, तो क्यों ना सब लोगों को सुना दिया जाए कि लागी छुटेना अब तो सनम।

0: तो बबली जी सबसे पहले इजाजत लेगी सब लोगों से।
1: सत्य सूर्य की तरह होता है, जो अधिक समय के लिए ना तो छुप सकता है और ना ही रुक सकता है। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार।
0: हाँ जी।

0: कहते हैं कि डर से मत डर, डर से मत डर, बल्कि कुछ अलग कर, डर से मत डर कुछ अलग कर। तो हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ सुनने वालों कि आपने ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में हिस्सा दी और साथ देने के लिए हम आपको भी बहुत से धन्यवाद कहती हूँ। स्वीकार कीजिए सभी का शांता के भी प्यार भरीश नमस्कार।
1: दूर हूँ फिर भी दिल के करीब निशाना है तेरा। हम लोग रेडियो में यहाँ बैठते हैं फाउन रेडियो में, और लोग अपने अपने घर पे या गाड़ी में सुनते हैं, दूर रहें लेकिन दिल का निशाना यानी हम लोगों से जुड़े रहते हैं दिल से, तभी तो हमारी बात को वहाँ तक सुनते हैं। तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगली बार फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय कुछ नया कार्यक्रम लेके। तब तक के लिए सबको नमस्कार।

0: जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। ये कार्यक्रम जो हम सब चलाए आज के, जिसमें भाग लिए शांता खेमई जी, बबली आसरा जी, हमारे पैनल के पीछे भाई राजेंद्र सिंह जी, और मैं हूँ आपका सेवक संजय। और यही कहना चाहूँगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। सभी को एक शुभ दिवस। नमस्कार।
1: हाँ सर।

फन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है द प्लस रेडियो पर नतीलक उक्त बिलोस्त्र इंटरनेट के लहरों द्वारा फन FM.NL पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में, और जहां पर भी हो जी साल में हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। अनतिलक वर्क्स बॉयज एंड बडंक बॉयज एंड गर्ल्स, रेडियो का काम हो देंक फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो की फाइट से राम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो, खास फरमाइश हो, जरूरी खबरें हो, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर, या तो आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हो और मन हो या तो ऑर्गा वुमन हो, तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके बारे में जरूर कमर्शियल बनवाकर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो देखना कैसे चमककार पे चमककार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश है आप मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से यही आप सभी से कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा। आप आसमा कर तो देख, सभी जानकारी बेल तेजस कंतोर यूरो ऑफ 070-213-65-98 of op 070-365-2247. जो भी रेडियो का काम हो देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। Bent u nog geen lid van Fahun Hindustani Radio? De Guzar is bent in de binnen kia ja rahai kia bijel zidel Fahun Hindustani Radio ka member bane. Au roko bhi banai aapko to dheer sara fayda hi fayda hai. Sabhi jankari uske bare mein aap tar kare. Op 070-365-2247. Ja to op 070-213-65-98. तो आप भी फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यार, चर्चा करते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, और हमारे फुल टीम की तरफ से इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप है तो हम भी है। वादा के मुताबिक एक दम बढ़ते हैं प्रोग्राम की ओर, और जिसे मैं आप सभी को कह चुका था अब आप सिर्फ नगमे सुनेंगे जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर दिलीप कुमार जी ने काम किए हैं। हम पहुंच गए थे फिल्म जहूदी तक बीते हुए दिनों में, जो रिलीज किया गया था 1958 में, और इस मूवी में दिलीप साहब ने काम किया है मलकाय हुस्न और मलकाय संगीत। वंस कौन ओक हेल खुद सिंह एंड शेर शायरी में बहुत ही आगे थी मीना कुमारी जी, उनके ढेर शेर्स के गाने बने और खुद अपने शेर्स वो गाई है। आप ज़रूर कभी सुनिए, यूट्यूब पे तो ढेर सारे इनके गाने भी आपको मिलेंगे। संगीतकार शंकर जय किशन के साथ पर आप सुनेंगे भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी के मधुर आवाज में एक ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी जाहुदी, मेरी जा मेरी जान, शैलेंद्र के अल्फाज़े।

Mary Jane, beautiful song from the movie Jahoudi 1958. Queen of Melody, Lata Mangesh, Kriji Kimandura Vazme, Kuraj Kesad, music by Shankar Jaikishan, and the song is written by Shailendra. Bekagri Bayan from the film Jahoudi Aap Suringe. और सुनने को जा रहे हैं आप सभी को सुरकलाचार्य किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी शंकर जय किशन की सांच पर शैलेंद्र के अल्फाज़े कोरस के साथ ये दुनिया है हमारी

का।

ये दुनिया हमारी है, अति सुंदर बयान। और साथ ही साथ आखिरी बयान फ्रॉम द मूवी जाहूदी 1958, शंकर जय किशन के साथ पर शैलेंद्र का लिखा हुआ अति सुंदर बयान। और सुनाया आप सभी को सुरों का बादशाह रवि साहब जी कोरस के साथ। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, सभी गाने फिल्म जहूदी का आप सुन चुके। अब लेकर चले हैं आप सभी को हम, चल देखते हैं तो एक मूवी जो रिलीज किया गया था ऑल्सो इन 1958 और जो काफ़ी मशहूर हुआ, खूब चला, फिल्म मधुमती। और इस फिल्म में दिलीप साहब ने काम किया है मलकाए हुस्न श्री विजयंती माला जी के साथ। साथ ही साथ प्राण भी इस फिल्म में अपना अदाकारी को पेश किया है। संगीतकार, महान संगीतकार उस जमाने का द ग्रेट ग्रेट ग्रेट सहील चौधरी के साथ है, शैलेंद्र के अल्फाज है। तो फिल्म मधुमती में से कुछ नगमे आप सुनेंगे। अगला बयान सुनने को जा रहे हैं आप सभी को, लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला द हार्ट ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश जी के मधुर आवाज में ये अति सुंदर सुपरहिट सॉन्ग सलील चौधरी के साज और संगीत पर शैलेंद्र का लिखा हुआ ये सुपरहिट सॉन्ग की सुहाना सफर। और ये मौसम

सुहाना सफर और ये मौसम हसी, दमाईटी मुकेश जी के मधुर आवाज में फ्रॉम द मूवी मधुमती, द ग्रेट सलील चौधरी के साथ पर अगला बयान फ्रॉम द सेम मूवी, और इस बार भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में, कॉम्पोज बाय सलील चौधरी की जुल्मी संग आंख लड़ी।

Green song, beautiful song from the movie Madhumati. Queen of Melody, Lata Mangeshkar ji, aur the mighty Mukesh ji ke beautiful awaaz mein ye tee sundar bayan aap shrotaon ne suna, composed by Maestro Salil Chaudhary. Agla bayan ek aur evergreen superhit song hai jo kafi baar hum log bhi live ye nagma ko बजाए हैं. लता जी के मधुर आवाज में सलिल चौधरी का मास्टरपीस ऑफ कंपोजिंग और शैलेंद्र का ब्यूटीफुल अल्फाजे की आजारे परदेसी.

Masterpiece of composing by maestro Salil Chaudhary, उस जमाने के महान संगीतकार, from the movie मधुमती 1958, भारत रत्न लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में, और ये अल्फाजे थे शैलेंद्र जी का। एक और अति सुंदर बयान आप सुनेंगे हमारे प्रिय श्रोताओं, फ्रॉम द मूवी मधुमती कंपोज बाय मास्टरो सलील चौधरी, और एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता जी के ब्यूटीफुल आवाज में, की घड़ी घड़ी मोड़ा दिल धड़के। स्पेशल आप सभी प्रिय

अति सुंदर बयान From the movie Madhumati 1958, Salil Chaudhary के साथ पर सुना दिया आप सभी को भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी। तुम्हारे प्रिय श्रोताओं, वक्त हो गया ना कुछ शेर शायरी हो जाए हमारे शेर के चाहने वालों के लिए, तो जरा गौर फरमाएं। अर्ज किया है भाई भूपेंद्र जी ने कुछ ताजे ताजे शेर्स कुछ दोस्ती के बारे में, कि जिंदगी ने आज खुशियों को फिर पुकारा है, जिंदगी ने आज तो खुशियों को फिर पुकारा है, सदा मुस्कुराओ आपका हर गम हमारा है, फूल खिले आपके जीवन में कांटों के लिए तो बस मैं आपके आगे सहारा हूं। बड़े अजीब है ये जिंदगी के रास्ते, अनजाने मोड़ पर कुछ लोग दोस्त बन जाते हैं, मिलने की खुशी दे या ना दे, बिछड़ने का गम जरूर दे जाते हैं। दोस्ती खूबसूरत है तुम ना मानो ये हकीकत है, दोस्ती हमारा कितनी खूबसूरत है तुम ना मानो ये तो हकीकत है, दोस्ती तो इंसान की जरूरत है, किसी दिन आओ हमारी महफिल में, जान जाओगे जिंदगी कितनी खूबसूरत है। कलम थी हाथ में लिखना सिखाया आपने, ताकत थी हाथ में हौसला दिलाया आपने, मंजिल थी सामने रास्ता भी दिखाया आपने, हम तो सिर्फ दोस्त थे आशिक बनाया आपने। वैसे तो माय इंग्लिश इज नॉट वेरी वेल, बट आई गोन ट्राई बिकॉज आई लाफ इन इंग्लिश, आई वॉक इन इंग्लिश, आई टॉक इन इंग्लिश, आई डांस इन इंग्लिश, बट इट्स नॉट वेरी वेल, बट आई गोन ट्राई। टू हैव अ गुड फ्रेंड यू हैव टू बी वन, टू हैव अ गुड फ्रेंड यू हैव टू बी वन, सो बी नाइस टू वन अनदर, So you can be friends forever, and that's how to be the best friend you can be always forever. Friendship beautiful hai. Friendship to hamesha beautiful, yani beautiful hai. Tum na mano par ye hakikat hai. Friendship insaan ki zarurat hai. Kisi din aao. तो जान जाओगे। फ्रेंडशिप का पहला सलाम आपके नाम, फ्रेंडशिप का पहला सलाम आपके नाम, हमारी जिंदगी की आखिरी शाम भी आपके नाम, इस सफर में हम सफर हम दोनों, जिंदगी भर इस फ्रेंडशिप को निभाना है मेरा ये प्यारा दोस्त। तो आगे के प्रोग्राम में कोशिश करूंगा कुछ और सुनाने के। अगला बयान एक अति सुंदर क्लासिकल सॉन्ग है, और आप श्रोताओं को तो मालूम है कि विजयंती माला का जो क्लासिकल डांस थी पर्दों पे, वो भी बहुत ही जबरदस्त का एक क्लासिकल भारत नृत्य का माहिर थी, यानी कि कथक और क्लासिकल डांस तो आप लोग जानते हैं, तो उसी के लिए ये क्लासिकल सुपरहिट सॉन्ग इस फिल्म में तैयार की गई, दो मैस्त्रो सलील चौधरी जी।
मिलके सुनते हैं महान गायक पद्म भूषण मन्ना डे जी के मधुर आवाज में, साथ दे रही है लता जीवित कोरिस की चढ़ गयो पापी बिछुआ, ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल।

चढ़ गयो पापी बिछुआ, ब्यूटीफुल कथक सॉन्ग आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया। पद्म भूषण मन्ना डे जी के मधुर आवाज में साथ दे रही थी भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर विद कोरस कंपोज बाय मैस्ट्रो सलील चौधरी। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, अब जरा दिल थाम कर बैठिए, आप लोग एक ऐसा बयान को सुनेंगे, एवर ग्रीन सॉन्ग, जो रोजाना लोग खास करके टूटे हुए दिलों को जब लोग कोशिश करते हैं जोड़ने के लिए तो ये नगमा ज़रूर सुनते हैं। वन ऑफ माई फेवरेट रफ़ी साहब जी का, फ्रॉम द मूवी मधुमती 1958, कंपोज बाय माएस्ट्रो सलील चौधरी, की टूटे हुए ख्वाबों ने।

of composing by maestro Salil Chaudhary from the movie Madhumati 1958 Surugapacha Ravi Sahib ji ke Madhura Vans mein aur ye sundar bayan ko likha hai mahan lekhak Shailendra ji ne. To film Madhumati ka ek aakhri bayan aap sunenge hamare priye priye shrotaon aur ek ati sundar mazedar song hai picturized kiya gaya hai कॉमेडियन जॉनी वॉकर जी के ऊपर राइट निकली 58 कंपोज बाय मास्टरो सलील चौधरी और सुनन को जा रहे हैं आप सभी को सुर का बादशाह रवि साहब जी की जंगल में मोर नाचा किसने ना देखा थोड़ा से हम लगा ले ली तब सब कोई देखी।

अजी सुंदर मजेदार सॉन्ग आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया फ्रॉम द मूवी मधुमति 1958 कंपोज बाय माएस्ट्रो सलील चौधरी जी और सुना दिया आप सभी को सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी। प्रिय श्रोताओं अभी आप विज्ञापन सुनेंगे देश

फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है द प्रेस रेडियो पर नतीलक उक्त बलस्त्र फिया इंटरनेट के लहर द्वारा फाहुन FM.NL पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को भी फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। नतीलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स नतीलक बतांते हैं, जहां पर भी हो, जिस साल में हो, घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो, दुनिया के जो भी कोने में कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो लव्स यू ऑल। तो जो भी रेडियो का काम हो, देंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो की फाइव सस्ते दाम सर्विस और गारंटी के साथ आपके जो भी रेडियो का संदेश हो, जरूरी खबर हो या तो खास फरमाई से हो या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवाकर, या तो आप एक ऑर्गामान हो, ऑर्गा वुमन हो, इवेंट ऑर्गेनाइजर हो तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवाकर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो देखना कैसे चमककार पे चमककार हो जाएगा। ये बात मैं श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो अपमात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से यही आप सभी से कहते आ रहा हूँ कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेलटेन्स कांतोर यूरो ऑफ 07-2-13-65-98 of op 070-365-22-47 per. तो जो भी रेडियो का काम हो, देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। बेंट यू नो खे लिट फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन प्रार्थना भी किया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रोको भी बनाए। आपको तो ढेर सारा फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें तैरेंस कंट्रोल यूरो ऑप 07-2-13-65-98 या तो op 070-365-22-47 per. जो भी रेडियो का काम हो, देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना है यारो, रिक्लाम बनाते रहना। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, और हमारे फुल टीम की तरफ से इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। वादा के मुताबिक एक ही दम बढ़ते हैं कार्यक्रम की तरफ, और देखा जाए तो बीते सप्ते हम लोग पहुंच चुके थे एक मूवी जो रिलीज किया गया था 1995 में, फिल्म पैगाम, और उसी मूवी में से कुछ नगमे रह गया था सुनाने को, जो मैं आप सभी को एक ही दम लेकर चलते हैं नगमे की तरफ। एड फिल्म पैगाम 1995, इस मूवी में दिलीप साहब ने काम किया है महान और मशहूर अभिनेत्री मलकाय हुस्न द ग्रेट विजयंती माला जी के साथ। महान एक्टर राजकुमार जी इस फिल्म में भी काम किए हैं, और संगीतकार इस मूवी का है महान गायक और म्यूजिक डायरेक्टर चितलकर राम।

चंद्र जी। तो उसी फिल्म में से कुछ नगमे आप सुनेंगे। एक ब्यूटीफुल सॉन्ग है क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले जी के मधुर आवाज में, कवि प्रदीप जी का लिखा हुआ ये सुपरहिट सॉन्ग कंपोज बाय मैस्त्रो चितलकर रामचंद्र जी। मेरे ख्याल में अभी तक सुरिनाम देश हॉलैंडेज के ढेर सारे नचनिया इस गाने पे भी नाचते रहते हैं। मैं क्यों ना नाचूं।

ब्यूटीफुल सॉन्ग कंपोज बाय मैस्ट्रो चीतलकर रामचंद्र जी, क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले जी के आवाज में, और ये अति सुंदर बयान को लिखा है महान लेखक कवि प्रदीप जी। अगला बयान फ्रॉम द सेम मूवी पैगाम, एक बार फिर आशा भोसले जी के मधुर आवाज में, और एक अति सुंदर मीठा धुन है, ये भक्ति सॉन्ग भी है। ओ अमेरिका परमेश्वर, पहला भाग आप सुनेंगे।

A masterpiece of composing by Maestro Chitalkar Ramchandra from the movie Paigham. तो पहला भाग इस नगमा का आप सुने, अब दूसरा भाग भी सुनिए।

0: Kwam hier ook per Meeshwar, die Sundar Bayan uit de film Paigam Part 2 aapne sune, composed by maestro Chitalkar Ramchandra aur sunaya aap sabhi ko, Queen of Rock and Roll Asha Bhosle ji. अगला बयान सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी और ये भी साथ साथ आखिरी बयान होगा फिल्म पैगाम का कंपोज बाय चितलकर रामचंद्र और लिखा है ये अति सुंदर बयान को कवि प्रदीप जी ने मजेदार सॉन्ग है सुनो सुनो रे भैया फिल्माया गया है मशहूर कॉमेडियन जॉनी वॉकर जी के ऊपर
1: सुना

Het is een mazedar song uit de film Pegama, vertaald in Suna. Het machinima met Rafi. Oude satio ke awazume, composed by maestro Chitalkar Ramchandra. Tomari pri shrutaon. Sabhi gane aap film Pegam ka sun chuke hain. To lekar chalte hain aap sabhi ko ek dusra film ke or jo रिलीज किया गया था इन 1960 में, यानी 1960 में ये फिल्म रिलीज किया गया था, जो हलचल मचा दिया था पूरी दुनिया में. फिल्म कोहिनूर के सभी गाने बहुत ही सुपरहिट साबित हुए, और फिल्म कोहिनूर में दिलीप साहब ने काम किया है मलकाए हुस्न, मलकाए संगीत, वंश कौन ओक हिल खुद सिंह एंड उनकी शायरी के तो सभी दीवाने थे. और फेलियन का रोल अदा किया था जीवन जी ने इस मशहूर फिल्म में. कितने बार मैंने इस फिल्म को देखा है, आप भी देखिए. सिर्फ गाने नहीं इस फिल्म के सभी सुपरहिट है, लेकिन ये मूवी भी देखने में बहुत ही मज़ेदार मूवी साबित हुआ है. तो ज़रूर अगर आपको कभी फुर्सत मिले तो ये मूवी ज़रूर देखना. दिलीप कुमार का ये सुपरहिट मूवी, म्यूजिक डायरेक्टर महान संगीतकार नौशाद अली के सांच पर, और महान लेखक शाकिर बदायूनी ने जबरदस्त काम किए है इस फिल्म में. तो उसी फिल्म में से आप गाने आप सुनेंगे. मिल्क सुनते हैं तन रंग ले जो है और मन भी रंग लो. Het is ook toevallig hè, dat twee dagen geleden hem ook bij de dhoomdham samaro ke saath holi tewhaar manaye na. Aur ye gana bhi aaj mujhe chalane ko mil rahe hai. To enjoy kijiye, kuch yaade taze kijiye naye naye holi tewhaar ke upaksh mein. Lata ji aur Rafi saab ji ke madhur awaazon mein maestro Naushad Ali ke saath.

A great composing by maestro Naushad Ali. Shakir Bada Uni ka likha hua ati sundar bayan suna diya aap sabhi ko. Sur ka badshah mahan gayak the great great great Padma Shri Mohammad Rafi Sahib ji from the movie Kohinoor 1960. To yaar waqt ho gaya hai na kuch sher shayari ho jaye na hamare shairs ki chahne walon ke liye. तो जरा गौर फरमाए कुछ ताजे ताजे शेर से लिखा है भाई भूपेंद्र जी ने और ये भी दोस्तों के याद में अर्ज किया है यार की जान है मुझको जिंदगी से प्यारी जान है मुझको जिंदगी से प्यारी जान के लिए कर दूं कुर्बान यारी जान के लिए तोड़ दूं दोस्ती तुम्हारी अब तुमसे क्या छुपाना तुम ही तो हो वो ही दोस्त हमारा चले जाएंगे मगर यादें सुहानी छोड़ जाएंगे आपके दिल में अपनी निशानी भी छोड़ जाएंगे कभी रोओगे तो कभी मुस्कुराओगे कभी रोएगे और तो कभी मुस्कुराओगे हम दोस्ती को वो कहानी संग लिख कर सजाएंगे कुछ मीठे पल याद आती है पलकों पर आंसू छोड़ जाते हैं कल कोई और मिल जाए तो हमें ना भूल जाना फ्रेंडशिप के रिलेशन जिंदगी भर काम आते हैं दुश्मनों में भी दोस्त मिला करते हैं यारो दुश्मनों में भी दोस्त मिला करते हैं कांटों में भी फूल खिला करते हैं हमको कांटा समझकर छोड़ ना देना हमको कांटा समझकर छोड़ ना देना कांटे ही फूलों की हिफाजत किया करते हैं हसरतों की निगाहों पे शक्त फेहरा है हसरतों की निगाहों पे शक्त पहरा है ना जाने किस उम्मीद पर दिल ठहरा है तेरी चाहतों की कसम ऐ दोस्त तेरी चाहतों की कसम ऐ दोस्त अपनी दोस्ती का रिश्ता तो प्यार से भी बड़ा होता है रिश्तों की दूरी कमजोर होती है रिश्तों की डोरी तो हमेशा कमजोर होती है यारो आंखों की बातें दिल की चोर होती है खुदा ने जब भी पूछा दोस्ती का मतलब खुदा ने जब भी मुझसे पूछा दोस्ती का मतलब हमारी उंगली आपके ओर होती है यही मैं कहता हूं यारो हैप्पी हैप्पी दोस्ती फ्रेंडशिप डे ये था कुछ शेयर्स आगे के प्रोग्राम में कुछ और कोशिश करूंगा सुनाने के लिए एक ब्यूटीफुल सॉन्ग रख चुका हूं श्रोताओं के सेवा में प्लेयर पर और सुनने को जा रहे हैं आप सभी को एक बार फिर क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले जी फ्रॉम द मूवी कोहिनूर 1980 कंपोज बाय माएस्ट्रो नौशाद अली जादूगर कातिल

कोई प्यार सी देखे जादू भरी क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी कोहिनूर 1963, कंपोज बाय मैस्ट्रो नौशाद अली शाकिल बदायूनी का लिखा हुआ इतनी सुंदर बयान सुनाया आप सभी को सुर का बादशाह रफी साहब और क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी। तो मैं पीपली श्रोताओं अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो आप भी जाइए, कुछ इस्तेमाल कीजिए, चाय या कॉफी जो आप पी रहे थे, या तो आप जाइए एक नया नया बकिया कॉफी तैयार कीजिए, या जो आप इस्तेमाल कर रहे थे उसको बैग फिल कीजिए और ज़रूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेने रहना यार। ब्रेक के बाद मिलता हूँ, कहीं जाना मत।

मित्रों, शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से। और आगे मित्रों, किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वो भगवान के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल से निकली आह ईश्वर के दिल तक जाती है, ये मत भूलिए।

मित्रों, हम लोग जब किसी शादी की रिसेप्शन में जाते हैं तो पैसों का एक लिफाफा जरूर देते हैं। अगर कार्ड पे नो गिफ्ट प्लीज या खेन एम्फलोपन नास्तुग्रिफ लिखा भी हो तो भी हम लिफाफा देने जरूरी समझते हैं। पर जब, ध्यान करना मित्रों, पर जब अपना कोई अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता है और उस वक्त जब हम उसे देखने जाते हैं तो कोई लिफाफा हम नहीं ले जाते हैं, जबकि उस वक्त मरीज के घर वालों को पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। साथियों, क्या हम सब मिलकर ये नया रिवाज, नया प्रथा नहीं शुरू कर सकते हैं? अगर आप भी इस बात से सहमत है तो ये संदेश को आप जरूर औरों तक पहुंचाइए। प्लीज जरूर औरों तक पहुंचाइए।

साथियों, इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूं? वक्त ने कहा, धूप हो या छांव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूं, इसीलिए मैं जीत जाता हूं। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। मित्रों, इस बात को ठीक से समझना और कोशिश करो अपने जीवन में उतारने के लिए।

हे जगत जननी, मैं ना मंत्र जानता हूँ ना तंत्र जानता हूँ, आह्वान ध्यान और स्तुति कथा से भी मैं अज्ञान हूँ। तेरा स्वरूप, तेरी मुद्रा और विविध पाठों को भी मैं नहीं जानता। केवल मैं इतना जानता हूँ कि तेरा शरण

भक्त जनों के लिए भक्ति ही धन है, योगियों के लिए योग ही धन है, पंडितों के लिए विद्या धन है और स्त्रियों के लिए शील ही सच्चा धन है।

जिस मनुष्य में विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म नहीं, वो मनुष्य इस मृत्यु लोक पर भार रूप होकर मनुष्य के रूप में पशु है।

दृश्य का सही स्वरूप है, वो अदृश्य गुप्त धन है। विद्या सुखदायी है, यशदायी है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेश में विद्या बंधु जन समान है। विद्या परम दिव्य तत्व है। राजाओं में धन का नहीं बल्कि विद्या का आदर होता है। अतः विद्यावहीन मनुष्य पशु समान

स्वर अर्थात कूक कोकिला की शोभा है, सतित्व अर्थात पाति व्रत्य नारी की शोभा है, कुरूप जनों के लिए विद्या ही शोभा है और तपस्वियों के लिए क्षमा ही शोभा है।

क्रोध, लोभ और मोह ये तन में प्रवेश तस्कर है, ये हमारे ज्ञान रूपी रत्नों का हरण करते हैं, अतः इनसे जागृत रहिए।

जगत में आयुष्य, धन, यौवन, पुत्र और स्त्री सभी अस्थिर है, केवल धर्म ही स्थिर है।

गंगा पाप को नाश करती है, चंद्रमा ताप का हरण करता है, कल्पतरु दरिद्रता का नाश करता है, किंतु साधु समागम पाप ताप और दरिद्रता तीनों का हरण करता है।

जिनकी लक्ष्मी दान के लिए है, विद्या सत्कार्यों के लिए है, जिनका चिंतन परम तत्व के अनुभव के लिए है और वाणी अन्न के उपकार के लिए है, वैसे मनुष्य त्रिलोक के तिलक स्वरूप है और सदा वंदे।

मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु प्रमाद है, यानी भ्रम है, जो उसके भीतर सन्निहित है। पुरुषार्थ के समान यानी मेहनत के समान दूसरा कोई बंधु नहीं है जो मनुष्य को दुखी नहीं करता।

धैर्य जिसका पिता है, क्षमा माता है, स्थिर शांति जिसकी नित्य गृहिणी है, सत्य जिसका पुत्र है, दया भागनी है, मन का संयम बंधु है, जिसकी सैया भूमि तल है, दिशाएं ही जिसका वस्त्र है, और ज्ञान रूप अमृत ही जिसका भोजन है, इस तरह का जिसका परिवार है, ऐसे योगी जनों को किसी का भी डर नहीं होता।

हे जगन माता, मैंने कभी तेरे चरणों की सेवा नहीं की, कभी दान नहीं दिया, मेरे मन में कभी भी प्रभु प्रीत नहीं जागी, फिर भी हे अम्बा मैया, तुम मुझ पर अपना स्नेह बरसाती हो। सत्य है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती।

हे जगत जननी, मैं ना मंत्र जानता हूँ ना तंत्र जानता हूँ, आह्वान ध्यान और स्तुति कथा से भी मैं अज्ञान हूँ। तेरा स्वरूप, तेरी मुद्रा और विविध पाठों को भी मैं नहीं जानता। केवल मैं इतना जानता हूँ कि तेरा शरण क्लेश हरण है।

शरटुंडा महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा।

गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

माता पिता चरणम नमः विद्या प्रदायकम तीक्ष्म मंत्रम गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

फाहुन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करता हूँ और ये कहना चाहूँगा कि मैं आपके साथ जुड़ गए हूँ। मेरा नाम संजय है।

सभी जो बीमार है पीड़ित है उनके लिए प्रार्थना किया जाता है कि भगवान शक्ति दे और स्वास्थ्य में परिवर्तन आए। जिनका आज सालगिरह है उन्हें बहुत सा बधाई दिया जाता है और जो अभी तैयारी कर रहे हैं अपने नौकरी के ओर के लिए तो उनको ये कहना चाहूँगा कि ये मत भूलना जो महात्मा गांधी जी ने हमें सुनाए थे कि ये मत समझ कि हमारा जो देश है वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। ये सिद्धांत जो छोटा शब्दों में महात्मा गांधी जी का लिखा हुआ जो इस समय तैयार कर रहे स्कूल जाने के लिए, तो उनसे कहूँगा कि माँ सरस्वती को भूलना नहीं, क्योंकि वही बुद्धि और ज्ञान का भंडार देने वाले हैं। जो अभी सफ़र पे निकलने वाले हैं तो जरूर ये कहना चाहूँगा कि सफ़र के लिए समय पे उपस्थित हो जाना। जो हमारे देश में सफ़र से आए हैं उनको हार्दिक से स्वागत किया जाता है और ये कहना चाहूँगा कि देशों में एक देश ऐसा है हॉलैंड जिसे हम स्वर्ग को भी कह सकते हैं।

आप सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत है और यहाँ कहा जाता है कि हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा यही जीवन की सच्ची संपत्ति कहलाते हैं। एक ऐसा दिन बनाइए जहां आप कम से कम कुछ थोड़ा से हंसते रहे। क्योंकि हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा यही जीवन का सच्ची संपत्ति कहलाए है।

0: कहाँ जा रहे हो?
1: खाटू श्याम जी जा रहे।
0: चलो रास्ते में छोड़ देता हूँ, मैं भी जा रहा हूँ।
2: आ जाओ भाई आ जाओ, मैं छोड़ दूंगा रास्ते में, मैं भी जा रहा हूँ। आ जाओ

0: भाई जी देखो दर्शन भी हो गए बाबा जी के, अब चलो घर छोड़ देता हूँ तुम्हें।
1: बाबा जी अब तो मेरा घर भी यही है, सब कुछ यही है।
0: चलो अब क्या बोल सकता हूँ तुम्हें, जैसे श्याम जी की मर्जी। ठीक है फिर मैं चलता हूँ।
2: हंसराज रघुवंशी जी की आवाज में खाटू श्याम के सुंदर सा भजन।

सुनने वालों, सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूं। शुभ प्रभात कहा जाता है। और ये कहना चाहूंगा कि जीवन में हर तूफान नुकसान करने नहीं आता है, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। आज आपका एक दिन शुभ होए। एन हेल गुई दाग टूगेवेंस। और इन बातों पे ध्यान देना, क्योंकि लेखक जो लिखते हैं बड़ा सोच समझ के संदेश रखते हैं कि जीवन में हर तूफान नुकसान करने ही नहीं आता है, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं।

मैंने मेहंदी सजाए रहे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाए रहे कृष्ण नाम की, मेरी चुनरियों में कृष्ण, मैंने नथनी सजाई रहे कृष्ण नाम की, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मैं ज्योति जलाई रहे कृष्ण नाम की, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, मेरा तन मन रंग है उसी के रंग में, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मैंने माला बनाई रहे कृष्ण नाम की।

पना बना ले हो मेरे शाम, ये सुंदर सा भजन जो खाटू श्याम जी के अंतर्गत हम सब रखे। हम अगला भजन की ओर बढ़ेंगे। कहा जाता है जब अकेले हो तो परमात्मा से बात किया करो, और जब किसी के साथ हो तो परमात्मा की बात किया करो।

लेखक ने अच्छा ही लिखा है कि जब अकेला हो तो परमात्मा से बात किया करो, और जब किसी के साथ हो तो परमात्मा की बात किया करो।

जो अभी चून किए हैं फाहुन रेडियो पर, तो उन्हें शुभ दिवस और गुड मॉर्निंग कहा जाता है, शुभ प्रभात।

कहते हैं कि बीते हुए कल कभी वापस नहीं आता है, पर बीते हुए कल में लोगों का वर्ताव हर वक्त याद जरूर आता है।

कैसा हूँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मिले हुए हर व्यक्ति बहुत ही अच्छा है। मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूँ।

आप चुन हैं फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से। सवेर हो चुका, सूर्य का किरण धीरे धीरे निकलने वाले हैं। सुनो वालों, इस बात को भी हम ध्यान देते हैं कि हमारे जगत गुरु ने क्या कहे हैं कि 6 महीने रात जल्दी सो जाओ और सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर और देखो, यदि तुम्हारी जिंदगी में बदलाव ना आए तो मेरे खिलाफ मुकदमा चला देना। ये हमारे जगत गुरु का संदेश है कि सुबह और सूर्य उदय से पहले उठ करके सूर्य अर्घ को अर्पण करो तो 6 महीना के अंदर अंदर में आपको और उसमें आपके जीवन में तरक्की होते हैं।

सुनने वालों, मैं हूं आपका सेवक संजय और मैं आपके साथ जुड़ा हूं कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ। मैं आपके साथ जुड़े रहेंगे कुछ समय तक।

लगता है कि बिना स्वार्थ और बिना मुलाकात के प्रतिदिन याद करने वाला भी सौभाग्य से मिलते हैं। क्या आज किसी को आप याद और करेंगे या करने वाले हैं? जैसे कि हर बार की तरह हम अपने दोस्तों का याद में भी रहते हैं या हम अपने परिवार को याद करते हैं,

कुमार और लता मंगेशकर के आवाज़ में हम सब ये सुंदर सा गीत को सुने। फिल्म जो लव स्टोरी से निकाला गया 1981 और जिसमें काम किए कुमार गौरव और विजयता पंडित जी ने। कहने के तात्पर्य ये है कि कोई के याद आ रहे हैं, किसी का याद आ रहे हैं, तो हमारे पास तो अब व्हाट्सएप भी है, हमारे पास अब टेलीफोन भी है और बाकी के आप खुद समझदार हैं। हम अगला फिल्म का गीत जो आपके लिए रखने वाले हैं

फिल्म का नाम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सुनने वालों, एक फिल्म है जो आज कुछ 30 साल से लगातार भारत बम्बई मराठा मंदिर में जो 11 AM पे चलाया जाता है, अभी तक रोज हफ्ता में 7 दिन द लॉन्गेस्ट रनिंग फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। तो दोस्तों, ये फिल्म को देखने के लिए दुनिया के हर एक प्रांतों से जा करके और बॉम्बे शहर में और देखते हैं लोग। और मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको अगर ये फिल्म देखने का इच्छा है तो ज़रूर बॉम्बे जाइए और वहाँ पर ये फिल्म का कुछ 30 साल से चल रहा है, वहाँ का मज़ा कुछ और है। हम याद करते हैं अपने दोस्तों के और अपने संबंधियों के, कोई किसी को भी याद करते हैं। उस अंतर्गत में कुछ सुंदर सुंदर सा गीत और हम रखने वाले हैं आपके साथ।

दिल और फूल दोनों ही खूबसूरत होते हैं। दिल और फूल दोनों ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन कुछ लोग दिल और फूल से भी खूबसूरत होते हैं, और वो कौन है? वो कौन है? कहे जाते हैं कि वो है आप।

सुनो लो, आज के गीतों से जरूर किसी किसी को याद और आते होंगे। और आज जो सुंदर सुंदर गीतों से हम आपके साथ जुड़े हैं, अच्छे दिन के चक्कर में उम्र गुजर जाती है, फिर पता चलता है कि जो गुजर गया वही अच्छे दिन थे। दोस्तों, इस बात पे ध्यान देते हुए हम एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे।

सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत को हम सब सुने। और यहाँ जो कहा जाता है कि खुद को एक सोने के सिक्के के जैसा बनाइए, जो कि अगर नली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती है। हम एक और भी सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे और आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत किया जाता है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के ओर से।

सुनो लो, यहाँ तक था मेरा हिस्सा का कार्यक्रम। आशा ये रखता हूँ कि कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ जो जुड़े रहे आपके साथ, आपके जरूर अच्छा लगे होंगे। मैं हूँ आपका सेवक संजय, और ये जरूर कहना चाहूँगा, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

सोनू निगम जी की आवाज़ में हमने सुने सुने वालों सुंदर सा गीत है। जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा होता है, जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा होता है, वैसे वैसे शांत रहना सीखिए, क्योंकि आवाज़ हमेशा सिक्के के करते हैं, आवाज़ हमेशा सिक्के ही करते हैं, सिक्के यानी कि मंद खल्त, आवाज़ हमेशा सिक्के ही करते हैं, नोटों को कभी बचते नहीं, सुना हमने और ना ही देखा।

प्रिया घोषाल और उदित नारायण जी की आवाज में हमने यहाँ से सुने सुंदर सा गीत। सुने वालों, एक उम्र होती है जब सिर्फ रूप रंग महत्वपूर्ण होता है, और फिर एक उम्र होती है जब विचार महत्वपूर्ण होते हैं, और आगे में सुनने वालों, एक उम्र के बाद सिर्फ सात महत्वपूर्ण होता है। एक उम्र होती है जहां पर रंग और रूप महत्वपूर्ण होता है, और फिर एक उम्र होती है जहां पर विचार महत्वपूर्ण होता है, फिर आगे में एक उम्र आता है ऐसे कि जहाँ पर सिर्फ सात रहने के सात महत्वपूर्ण देता है।

मोहम्मद अजीज अलका यज्ञिक जी और साथ दे रहे थे विनोद राठौड़। ये सब मिलकर हमके सुनाए कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे।

कहते कि अच्छे कर्म अच्छे काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि जैसे सूरज उदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। आपको हम यहाँ से साथ लेकर चलते हैं आपके ज़्यादा ना वक्त लेते हुए।

लक्ष्मीकंद और आनंद बख्शी के साथ संगीत पर जो हमने सुने कविता कृष्णमूर्ति जी, अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज जी से। अंधेरे में छाया, अंधेरे में साया, यानी कि हचखादियो, अंधेरे में साया और बुढ़ापा में काया हतलेखा, और अंतिम समय में माया हत मतरियल, किसी का साथ नहीं देता। एक बार फिर, अंधेरे में छाया, बुढ़ापा में काया और अंतिम समय में माया किसी का साथ नहीं देता।

उदास ना हो ऐ जिंदगी, उदास ना हो ऐ जिंदगी, हम तो हर हाल में तुमसे खुश रहते हैं। जी हाँ, उदास ना हो ऐ जिंदगी, हम तो हर हाल में तुमसे खुश रहते हैं। कभी धूप अंधेरे में भी, कभी धूप अंधेरे में भी, जुगनों की तरह पल भर की रोशनी में जीने के जुनून रखते हैं।

लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ज़रा सुनिए जी। पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन बस भूल जाएंगे। इसलिए, जी हाँ, इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वो जो उचित है, जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जी हाँ, याद रखना कि ये ज़िंदगी हमारी है, लोगों की नहीं।

ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। मोहब्बत तो बस एक एहसास है, जिसे हो जाए बस वही खास है। आज कहते हैं जिनके मन का भाव सच्चे होते हैं, उनके हर काम अच्छे होते हैं।

0: चाहे बाबूजी।
1: जय सिंह, ये आवाज किसकी है?
0: इसी गांव की लड़की है, रोज सुबह गाना गाकर गांव को जगाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है अगर ये गाना ना गाए तो
1: शायद सूरज उदय नहीं होगा। नाम क्या है इसका?
0: रूपा।
1: रूपा, जिसकी आवाज इतनी सुंदर है, उसका रूप कितना सुंदर होगा।

कहते कि हर पल में प्यार है, हर पल में प्यार है, हर पल में खुशी है, जी लो तो जिंदगी खो दो, बस या तो यादें हैं। मोहब्बत तो बस एक एहसास है, मोहब्बत तो बस एक एहसास है, जिनके हो जाए बस वही खास है। हम आपको बहुत प्यार के साथ आपको हम यहाँ से स्वागत कर रही हैं सुनने वालों। स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम अदाबर सो नमस्कार हो जी। आप सब कैसे हो? इस खूबसूरत दिवस में आप सब कैसे हो? बस यही आशा उम्मीद है कि आप जहां हो जैसे भी हो खुशहाल में हैं। आपको फाहन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से बहुत सारे प्यार मिले, बहुत सारे प्यार मिले, खुशियां मिले,

एक प्यार भरे दिन आप सबको पेश किया जाता है और ये सुंदर गीत से जो हम मिलकर सुनेंगे मुख्तार शाह जी की आवाज़ में।

कितनी सुंदर से फरमाए हैं मुख्तार शाह और उनके साथ भी दे रहे थे उनके साथी। और कहते हैं कि वो दरिया ही क्या, वो दरिया ही क्या जिसमें रवानी ना हो, वो दरिया ही क्या जिसमें रवानी ना हो, जब होश ही नहीं, जब होश ही नहीं, जब जोश ही नहीं, किस काम की जवानी।

की पुकार कर रहे हैं, मोहम्मद रफी जी साथ दे रही है लता जी के आन मिलो सजना। टाइटल सॉन्ग जो हमने आपने सुने आपिका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से सुने वालों, जो देनहाग शहर में है, हाँ देनहाग शहर में न्यू टाउन स्ट्रीट नंबर 25 पे है। दिल और फूल, दिल और फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। जी हाँ, दिल और फूल बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन लोगों के दिल और फूल से ज़्यादा, लोगों के दिल फूलों से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, जैसे कि आपके। जी हाँ, जैसे आपके दिल भी खूबसूरत है, तो आपके दिन हमेशा, आपका दिन हमेशा फूलों की तरह भी बस खिलते रहें।

इस बार यहाँ से हम आपको लेकर चलते हैं अराउंड द वर्ल्ड। जी हाँ, दुनिया के शहर करेंगे हम, और मुख्तार शाह जी की आवाज़ में हम सुनेंगे जोश जवानी हाय रे हाय।

जी हाँ, जोश जवानी और हाय रे हाय, हम यहाँ से दुनिया के शेयर करें अराउंड वर्ल्ड जो हमने उस फिल्म से सुने हैं। और ये गाने वाला है मुख्तार शाह।

और यहाँ से हम साथ में मिलकर सुनेंगे रफ़ी जी की आवाज़ में कि तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है।

कितनी प्यार भरी आवाज है कि फिरता हूँ बेकरार, और कहीं करती होगी वो आपका इंतजार। सुन वालों, आपने सुने जाने पहचाने आवाज। फिल्म अभिमान के एक सुंदर सा गीत यहाँ से आपके लिए चला रही हूँ, और वो भी कोफर हुआ।

फिल्म अभिमान से निकाला गया है। सुन वालो ये सुंदर सा गीत जो कफर किया जन यानी कि नाख सॉन्ग है। लाट जो लिख वंदाग स्ट्रालन लाट जो लिख वंदाग स्ट्रालन ओन बोविस हेल्प ये एर फेलन में फाहन हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से आपको एक शुभ दिन। En we mogen weer genieten van een mooie dag.

जी हाँ सुनने वालों, हमने मिलकर सुने और वो भी रजिस पनवर और पल्लवी जी की आवाज में। कहते हैं कि नेवर वेट फॉर अ परफेक्ट मोमेंट, जस्ट जस्ट टेक अ मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट।

प्यारे प्यारे सुनने वालों, आपको हार्दिक से स्वागत है। आपको हार्दिक से स्वागत है। बड़े प्यार के साथ हम यहाँ से आपको स्वागत कह रही हूँ। कहती हूँ कि हर पल में प्यार है, हर पल में प्यार है, हर पल में खुशियाँ हैं। जी लो तो जिंदगी है, खो दो तो यादें हैं। आप सभी को सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम आदाब हुए।

और यहाँ से आप और हम मिलकर यहाँ से एक खूबसूरत प्रोग्राम बनाएंगे और सजाएंगे। मोहब्बत तो बस एक एहसास है, मोहब्बत तो बस एक एहसास है, जिससे हो जाए और वही खास है। सोच रही हूँ कि आज आपके लिए कुछ लाइव रिकॉर्डिंग प्रोग्राम, जो हमारे कलाकार जो गाकर और चले गए हैं और कितने भी अभी हैं, तो उन सभी के लाइव रिकॉर्डिंग आपके लिए यहाँ से प्रस्तुत कर रही हूँ। आपने अभी पहले सुने हैं सत्यम शिवम सुंदरम, ये भी एक लाइव रिकॉर्डिंग लता जी के थी है। और यहाँ से एक बार फिर हम सुनेंगे लता जी की आवाज़ में अजीब दास्ता है

कितने अच्छे से फरमाए लता जी कि अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू और कहाँ ख़त्म ये मेरे को भी नहीं पता है। इतने तो पता है कि हम कहीं से भी आकर माता के गर्भ में आकर और इस धरती पे आए हैं और यहाँ पे अपना किरदार निभा रहे हैं। ऐसे उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने किरदार भी निभा रहे हैं सोच समझ कर।

जिंदगी वही है जो हम आज जी ले, कल जो जिएगा वो उम्मीद होगा। डर से मत डर, डर से मत डर, बस कुछ अलग कर। और इस बार हमने आपके लिए खोज कर और सेलेक्ट करके, यानी कि यहाँ पर रखी है कि मधुबन में राधिका नाचे, ये भी एक लाइव रिकॉर्डिंग है, लाइव अपनाम है, लाइव अपत्रेद है मोहम्मद रफ़ी जी की।

रफी जी के आवाज़ पे हमने यहाँ से सुने मधुबन में राधिका नाचे, क्या खूबसूरत बयान की है। सुने वालों, यहाँ से आपके लिए इस बार है, हम देखे तो फिल्म अपना देश से लता जी नहीं बल्कि लता जी के बहन आशा भोसले जी की आवाज़ में सुनेंगी कि दुनिया में लोगों को धोखा जरूर से हो जाते हैं। और सुनने वालों, आपको ये भी बता दे कि हम दुनिया में जीवन में कभी कभी हमसे भी गलती हो जाता है, और ये बात है

और ये बात है कि जीवन के सबसे बड़ा गलती सबसे जीवन के सबसे बड़ी गलती क्या होती है, तो आप सोचते होंगे कई ऐसे विचार आपके मन में तो आ गए होंगे कि जीवन के सबसे बड़ी गलती वही है। हाँ जी, आप सुनिए, जीवन के सबसे बड़ी गलती वही है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। आपसे एक गलती हो गई तो आप माफी मांगकर कुछ अच्छे करो, और फिर से वही गलती आप दोहराएंगे तो आप गलती से कुछ नहीं सीखे हैं। तो वही सबसे बड़ी गलती है कि जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तो वादा के मुताबिक हम यहाँ सुनेंगे, दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाते हैं तभी हो जाते हैं, आशा भोसले जी की आवाज़ में।

शाबाश शाबाश शाबाश, ये लाइव रिकॉर्डिंग है, लाइव परफॉर्मेंस है, जो है आशा भोसले जी और आर डे बर्मन जी जो इसमें अपने साज और कला पेश की है। सुनने वालों, कितने खूबसूरत से ये सब भी लाइव परफॉर्मेंस की है। सब्र करना, इतना सब्र करना सीख जाओ मेरे प्यारे, इतना सब्र करना सीख जाओ मेरे प्यारे कि कुछ बुरा हो तो भी बुरा ना लगे। हालांकि अभी रात नहीं, अभी तो रात आने वाले है, फिर भी आपको सुनाएंगे एक लाइव रिकॉर्डिंग जो है मोहम्मद रफ़ी जी की, कि सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे, आपका इंतज़ार है।

जाने तुम कब आओगे, कितने मधुर आवाज में हमको सुनाए हैं कि सुहानी रात ढल चुकी है। ये दो लाइन जो मेरी को हाथ लग गए तो मैं सोच रही कि आपको भी सुना दूं कि जीवन की

बिना कुछ किए, बिना कुछ किए सोचते होंगे आप, बिना कुछ किए सिर्फ एक ही चीज आगे बढ़ती है, बिना कुछ किए सिर्फ एक ही चीज आगे बढ़ती है, और वो है आपका, मेरी उम्र। जी हाँ दोस्तों, उम्र, अगर हम बैठे रहे कुछ नहीं करे फिर भी हमारा उम्र आगे बढ़ते है। तो रफी जी के बाद हम लाएंगे आकाश में जगजीत सिंह जी की आवाज में, हम यहाँ से और मिलकर सुनेंगे।

के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, महेंद्र जी से हमने सुने और यहाँ पे हमने आपके लिए चुन कर रखी हूँ और ये आपसे हमने सुने हैं सुनने वालों की आप इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं ये भी जानकर कि आप जुड़े हैं मेरे साथ। आपको हम दिल से धन्यवाद कर रही हूँ। यहाँ है लता जी के साथ और दे रहे हैं हमारे द बिग बी अमिताभ बच्चन जी।

मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी आंखों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम, जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूरी हालात इधर भी हैं उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म भुला दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हाँ हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर।

यस यस यस यस यस आपके लिए लाइव एंड डायरेक्ट जो पेश किया जाता है सुनने वालों की ला, ये कहाँ आ गए हम। हाँ, आपसे मोहब्बत है। जी हाँ, मोहब्बत है। ये अमिताभ बच्चन जी कहते हैं और मैं भी कहती हूँ कि आपसे मेरे को मोहब्बत है, क्योंकि आप जो इतने प्यारे प्यारे सुनने वालों हैं। एक ना एक रोज तो होना है, तो आप सोचते हैं क्या होना है। हाँ जी, एक ना एक रोज, एक ना एक रोज तो होना है। ये कब हो जाए ये मेरी को नहीं पता। ये इश्क का कोई भरोसा नहीं, इश्क का कोई भरोसा नहीं, ये कि ये कब हो जाए। इश्क का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब किससे हो जाए। लता जी की आवाज़ में कि जो वादा किया है निभाना पड़ेगा।

सच कहूँ तो मैं बेशब्द हो जाती हूँ आपके लिए ये सब जो इतने चुन चुन के गीत आपके लिए जो चलाई है, और साथ ही साथ भी हम वीडियो भी देखते हैं तो अच्छा लगता है, और जैसे मैंने कहा कि बेशब्द हो जाते हैं आप, यकीन वर्ड फॉर इतने अच्छे से इतने सरल से ये सब इतने आसानी से गात लेती है। हाँ ये तो बात सही है कि ऐसे वैसे नहीं गा लेती है, ये तो बहुत रिहर्सल बहुत उपनिंग इसमें है गा, जो प्रतिदिन इस सब इसमें लग अपने लगन रहते हैं। कि बिना तेरे मेरी हर खुशी अधूरी है, बिना तेरे मेरी हर खुशी अधूरी है, फिर सोच ऐ बंदे मेरे लिए तू कितनी ज़रूरी है।

0: वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विधिनम कुरुमे देवा सर्वकार्यशु सर्वदा रूबरू मिलने का मौका नहीं पा रहा अथ शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ।
1: फाहोन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए मैं हम सब यहाँ उपस्थित हो गए स्टूडियो में और कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर। आज का विषय जो अभी हमारे मास्टर जी जुड़ने वाले हैं भारत से, और हमारे साथ शांता खेमाई जी, अनुराधा जी और बबली जी भी उपस्थित है स्टूडियो में। तो हम पहले अपने मास्टर जी को और जो भारत से जुड़ा हुआ है उनसे और अनुरोध करेंगे कि मास्टर जी अपना संदेश रखिए।
2: नमस्कार, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। इस बार भी हम उपस्थित हुए अपना कार्यक्रम लेके, इसके बाद बातचीत करते हैं, सब लोग अपना एंट्री डालेंगे।
1: तो मैं देख रहा हूँ बबली जी भी तैयार हो चुके हैं। बबली जी, आपका माइक ऑन है।
3: भावना ही तो है जो दूर रहकर भी अपनों की नज़दीकियों का एहसास कराती हैं, वरना दूरी तो दोनों आँखों के बीच में भी है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।
1: और अनुराधा जी, आपका माइक इस समय भी ऑन हो चुके हैं, तो आप भी अपना संदेश रखिए।
4: नमस्कार, और मैं तो ये कहना चाहूंगी, हे परमात्मा, तुमने ही मुझे दरिया जैसा विशाल दिल दिया है। कोई मुझे नाराज करेगा तो चलेगा, लेकिन मेरी वजह से कोई दुखी ना हो, यही आपसे प्रार्थना है।

0: मेहनत करे तो धन बने, सब्र करे तो काम, मीठा बोले तो पहचान बने, और इज्जत करे तो नाम। आपको शांता की भी स्वीकार है यहाँ ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में।
1: उदास बैठे उनके लिए कुछ उदासी का चलाया जाए।
2: जैसे आप कहिए राजेंद्र जी, मास्टर जी तो आप ही हो, और जैसे आप कह ही चुके हैं कि जो उदास बैठे हुए हैं अभी, क्योंकि अभी संदेश तो हम सब रखने वाले हैं, और आज का कार्यक्रम में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, और भी लोग भी सहयोग दे रहे हैं। तो मास्टर जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हरिओम सरन जी ने, और ये तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डड़े, तो हम उस गीत की ओर बढ़ेंगे, फिर कार्यक्रम में हम सभी जुड़ जाएंगे।

ज्योति का प्रकाश में, जैसे कि हर बार कुछ ना कुछ नई शिक्षा ज्योति के प्रकाश के माध्यम से सब लोगों को मिलती है, उसी के अनुसार हम आज बात करेंगे गीता प्रेस गोरखपुर की एक किताब की। गीता प्रेस गोरखपुर जो धार्मिक ग्रंथ है, भारत में बहुत बड़ा धार्मिक ग्रंथ है, जिन्होंने अभी तक कई करोड़ किताबें वितरित कर दी और छप गई उसमें और लोगों ने ले ली, हर हिंदू के हर किसी उसमें गीता प्रेस का किताब घर में ज़रूर मिलता है, उसी के विषय में एक बातचीत है। गीता प्रेस गोरखपुर की एक किताब है, उसका नाम है एक लोटा पानी, उसमें एक कहानी है। कहानी का शीर्षक है हिंदू राज्य कैसे गया, यानी जो हिंदू के राज्य थे पहले वो कैसे गए। ये कहानी अमर सिंह की है। अमर सिंह मारवाड़ राजा के, जो मारवाड़ राज्य है उसके प्रसिद्ध राजपूत थे। वो 17वीं सदी में शाहजहाँ के राज दरबारी थे। अपने परिवार द्वारा निर्वासित करने के बाद वो मुगलों की सेवा में आए। उनकी प्रसिद्ध बहादुरी और युद्ध क्षमता के परिणाम स्वरूप उन्हें शाहजहाँ द्वारा शाही सम्मान और व्यक्तिगत पहचान मिली, जिसके बाद उन्हें नागौर का सूबेदार बनाया गया और बाद में उन्होंने ही यहाँ शासन किया। सन 1644 में, यानी 1644 में बादशाह शाहजहाँ का दरबार लगा था। 30 करोड़ के जवाहरातों से बने तख्ते ताऊस पर शाहजहाँ बैठे थे। दाहिनी तरफ वजीर दिलावर खान की गद्दी थी और बाईं तरफ प्रधान सेनापति सलावत खान की गद्दी थी। राजा अमर सिंह दरबार में आए और उन्होंने बादशाह को सलाम किया। इसके बाद न तो वजीर को सलाम किया न सेनापति को सलाम किया। वजीर दिलावर खान सूफी आदमी था, उसे किसने सलाम किया किसने नहीं किया इससे फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन सेनापति सलावत खान घमंडी कट्टर था, उसको यह एक काफिर द्वारा उसका अपमान लगा। सेनापति, राजा साहब आप 8 रोज की छुट्टी पर गए थे मगर 16वें रोज आप तशरीफ़ लाए हैं। अमर सिंह ने कहा, मैं राजा हूँ जी, मैं जब आया आया, नहीं तो नहीं आया। सेनापति, आप राजा पहले थे, आज आप राजपूत लश्कर के सेनापति हैं, आप मेरे महत हैं, मातहत हैं, मैं जवाब चाहता हूँ। फिर अमर सिंह जी कहते हैं कि जवाब? सेनापति कहता, हाँ जवाब। अमर सिंह कहते हैं, काम पड़ गया था। सेनापति कहते हैं, जहाँपना के पास रुख खती दरख्वास्त भेजना था या नहीं, मगर वहाँ तो बादशाही इस्लामी से इनकार है, गुस्ताखी इसी को कहते हैं, क्यों वजीर साहब? वजीर दिलावर खान अमर सिंह का पक्ष लेते थे। वजीर ने प्रधान सेनापति सलावत खान से बात को जाने को देने को कहा कि चलो जाने दो, छोड़ो। सेनापति ने माफ़ करने की जगह राजा अमर सिंह पर 7 दिन के लिए 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और शाम तक रुपया खजाने में जमा कराने को कहा और तब तक दरबार में नज़रबंद रहने का फरमान सुना दिया। अमर सिंह ने कहा कि अगर मैं जुर्माना न दूं तो? वजीर ने भी अमर सिंह का पक्ष लेते हुए अमर सिंह से कहा कि आपके पास पैसा नहीं है तो एक पैसा मत दो, मैंने आपको माफ़ किया। सेनापति कहता है, आप माफ़ करने वाले कौन होते हैं? सेनापति का सेनापति में सेनापतियों का सेनापति मैं हूँ, ये मेरे महकमे की बात है। तो क्यों ना एक संजय जी सुंदर सा नगमा हो जाए और आगे की कहानी इसके बाद चला दी जाए।

उनके बाद बहुत ही सुंदर सा नगमा जो प्रस्तुत किया अभी संजय जी ने, उसके बाद हम लौटे और अपनी कहानी के आगे की तरफ बढ़े। अमर सिंह ने पूछा कि नज़रबंदी के क्या मायने हैं, तो सेनापति ने कहा जब तक पैसे नहीं जमा करोगे तब तक यहाँ से नहीं जा सकते और रात आपको जेल में बितानी होगी। जब ये सब हो रहा था तो बादशाह शाहजहाँ चुप था और ताजमहल के ख्याल में खोया था। अमर सिंह ने बादशाह से दखल देने को आग्रह किया। अमर सिंह ने बताया कि 7 दिन तक वह अपने गुरुजी के पास कजरी वन में थे, इसलिए वहाँ से खत नहीं भेज सके। सलावत खान तो पहले से अमर सिंह को दंड देने के लिए सोच कर बैठा ही था, क्योंकि अमर सिंह ने दरबार में उसे सलाम नहीं किया था। उसने कोई भी सफाई सुनने से इनकार कर दिया और शाम तक 7 लाख रुपए जमा करने का फरमान सुनाया। अमर सिंह ठहरे राजपूत शेर, भरे दरबार में बादशाह के सामने कह दिया, न तो मैं जुर्माना दूंगा और न ही मैं नज़रबंद हूँ। वजीर दिलावर खान अमर सिंह का पक्ष ले रहा था तो सेनापति ने एक ऐसी बात कह दी जो उसकी मृत्यु का कारण बनी। सेनापति ने वजीर से कहा, आपके लापरवाही से ये काफिर लोग हमारी बराबरी करने लगे हैं। काफिर शब्द सुनते ही अमर सिंह ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और प्रधान सेनापति सलावत खान का सिर धड़ से अलग कर दिया। एकदम बाहुबली स्टाइल में काफिर कहने वाले का काटते हैं गला। यह देखकर दरबार रक्षक सेना अमर सिंह की तरफ बढ़ी और अमर सिंह बादशाह की तरफ बढ़ा। वजीर ने बादशाह का हाथ पकड़कर महल में ले गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। बादशाह ने वजीर से पूछा, अमर सिंह ने सलावत को मार डाला मगर वो मेरी ओर क्यों झपटा? जब वजीर ने कहा, वो आपको मारने के लिए नहीं, आपके चरण छूने के लिए आपकी तरफ बढ़ा था। बादशाह ने कहा, दरबार में लड़ाई हो रही है। वजीर ने कहा, जब तक दरबार के 300 सिपाही साफ ना हो जाएंगे तब तक लड़ाई होती रहेगी। बादशाह ने कहा, वह सबको काट डालेगा। वजीर ने कहा, बेशक अमर सिंह एक शेर का बच्चा है, 1000 भेड़ियों के लिए अकेला ही काफ़ी है। बादशाह ने कहा, वह बड़ा बहादुर है। वजीर ने कहा, बहादुरी की किताब में अमर सिंह का नाम सोने की स्याही से लिखा जाना चाहिए। यानी बादशाह की जो बहादुरी जो है वो एक सोने की उसकी तरह लिखी जानी चाहिए। तो बहुत ही सुंदर जो कहानी चल रही है उसके लिए क्यों ना एक सुंदर सा नगमा की ओर बढ़ा जाए और फिर कहानी का मूड आगे चलता रहे। तो संजय जी सुना देते हैं एक नगमा और फिर बढ़ते हैं कहानी की ओर।

तो लौटते हम अपनी कहानी की ओर, फिर आगे की कहानी जारी रहेगी। बात कर रहे थे अमर सिंह की और बहादुरी की। वजीर ने बादशाह से पूछा, जब ऐसे बहादुर हिंदू मौजूद हैं तब हिंदू शाही कैसे ख़त्म हुई? फिर वजीर दिलावर खान बादशाह को समझाता है कि सेनापति सलावत खान ने अमर सिंह को काफिर कहा था। हिंदू काफिर नहीं हो सकता, काफिर वो होता है जो खुदा को नहीं मानता। इस्लाम कहता है खुदा निराकार है, हिंदू कहता है खुदा निराकार साकार दोनों रूप में है। मगर हिंदू जो कहता है खुदा निराकार और साकार दोनों रूप में है, मगर ऐसा जो हिंदू कहते हैं उनके अनुसार अलग अलग सबकी वो है विशेषता है कि खुदा निराकार है साकार है। कुछ लोग अपने अलग अलग स्टाइल से बात करते हैं कि खुदा निराकार है कि साकार है। फिर सलावत खान, फिर सेनापति ने कहा कि आपकी लापरवाही से ये काफिर लोग हमारी बराबरी करने लगे हैं। काफिर शब्द सुनते ही उन्होंने अपनी तलवार म्यान से निकाली और प्रधान सेनापति सलावत खान का सिर से धड़ अलग कर दिया था। तो फिर वजीर खान, जो वजीर दिलावर खान थे, बादशाह को समझाता है कि सेनापति सलावत खान ने अमर सिंह को काफिर कहा था इसलिए मारा गया। बादशाह वजीर से कहता है कि मैं अमर सिंह को माफ़ करता हूँ, जाओ उसे बुला लाओ और मेरे सामने प्रस्तुत कर दो। वजीर कहता है कि क्या कोई ऐसा है जो सम्मान के साथ अमर सिंह को लिवा लाए? अर्जुन सिंह, मैं अमर सिंह का साला हूँ। अर्जुन सिंह कहता है कि मैं अमर सिंह का साला हूँ। वजीर कहता है कि जाओ अर्जुन अमर सिंह को ले आओ और कहना बादशाह ने बुलाया है, तुमको 1,00,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। अर्जुन सिंह गया और अपनी बहन को अपने पक्ष में करके अमर सिंह को लिवा लाया। क्योंकि फाटक बंद था तो ज्यों ही अमर सिंह ने खिड़की में अपना सिर डाला त्यों ही अर्जुन सिंह ने उसका सिर काट दिया और अमर सिंह का कटा हुआ सिर लेकर बादशाह के पास गया। सोचा बादशाह खुश होगा। वजीर बहुत क्रोधित हुआ और उसने अर्जुन सिंह को मारने के लिए तलवार निकाली ही थी कि बादशाह ने ये कहकर वजीर का हाथ पकड़ लिया कि अपनी तलवार एक हथियार पर चलाओगे। बादशाह वजीर से कहता है एक हिंदू अमर सिंह का ही अर्जुन सिंह, अमर सिंह एक हिंदू अर्जुन सिंह। आपने पूछा था न कि हिंदू शाही कैसे गई? वजीर कहता है कि हाँ पूछा था, हिंदू राजा क्यों गया? बादशाह कहता अब समझ गए कि हिंदू शाही का पतन हुआ, अब जान लिया हिंदू राज्य कैसे गया। वजीर कहता कि हाँ जहाँपना समझ गया। तो अब समझ में आया अफगानिस्तान पाकिस्तान बर्मा बांग्लादेश जावा सुमात्रा आदि देश को जो भारत का हिस्सा होते थे वो भारत से क्यों कटे, इसी कारण से ये भारत से कटे। और इसी प्रकार जो कहानी से सीख मिलती है बहुत ही इसमें शिक्षा मिलती है, तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमारा जो साम्राज्य था या बहुत बड़ा विस्तार था उसको किस कैसे चले गया। इसको हम अपनी जो किताब छपी है उसकी कहानी गीता प्रेस गोरखपुर से उसी के शीर्षक से लिया गया था और हमको बड़ी शिक्षाप्रद मिलता है। क्यों ना संजय जी एक सुंदर सा नगमा की ओर बढ़ते हैं और फिर मिलते हैं आगे की तरफ। कहानी यहीं पे समाप्त होती है और इस कहानी से हमको बहुत सी शिक्षा मिलती है।

0: वालों, जैसे कि आपको पता है कि अनुराधा जी और बबली जी भी कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं और अभी शायद कुछ समय बाद स्टूडियो में शांता भी उपस्थित हो जाएंगे। पर अनुराधा जी, ये तो बताइए कि हमारे बुजुर्गों जो होते हैं और जा कर के अपने सेहत के लिए क्या से क्या चीज़ और क्या किस प्रकार से उस पर ध्यान दे सकते हैं, तो हम सब के लिए जैसे कि भैया राजेंद्र जी भी संदेश सुनाए, तो अब इस समय जो अनुराधा जी हम सबको अपना संदेश रखने वाले हैं, तो अनुराधा जी
1: नमस्कार। सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और मैं आशा करती हूँ कि आप सबका दिन बहुत मंगलमय हो। आज ये हम बात करना चाहेंगे कि बुढ़ापे में ये सोचिए जो 60 साल के ऊपर लोग हैं उनको क्या खाना ऐसा खाना चाहिए जिससे कि वो अच्छी हेल्थ उनकी रह सके, वो क्या कैसा खाना खाएं कि जिससे वो उनको स्वास्थ्य की कोई समस्याएं ना हो, तो इस बात पर संजय जी हम चर्चा करेंगे।
0: बिल्कुल एकदम अनुराधा जी, बस उसी का इंतजार में हम सब है, जरूर अपना और संदेश को आगे रखिए।
1: हर इंसान के माँ बाप का साथ जिंदगी भर बना रहना इस संसार का सबसे बड़ा वरदान है, लेकिन इंसान की संभावित आयु घटने के कारण आजकल मनुष्य का बहुत लंबे समय तक जीना मुश्किल हो जा रहा है। मगर क्या हम अपने बूढ़े माँ बाप की संभावित आयु को बढ़ा सकते हैं, या हम जो लोग 60 साल के ऊपर हैं वो अपना लंबे जीवन की आशा कर सकते हैं? इन सवालों का जवाब देना मुश्किल है, लेकिन कुछ खाने पीने की चीजें ऐसी हैं, कुछ फूड्स खिलाकर हम उनके हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं। तो आइए आज हम इसी बारे में चर्चा करते हैं कि क्या ऐसा खाएं जो जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम लंबी आयु जी सकें। तो ये बातें सभी पर लागू होती हैं, परंतु जो 60 साल की उम्र से ज्यादा लोग हैं उन्हें ये 7 चीजें जरूर खानी चाहिए। तो संजय जी, आप इससे सहमत हैं?
0: मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि हमारा तो अवस्था भी 60 के ओर जा रहे हैं और क्यों ना हमें कुछ जानकारी मिल सके तो ज़रूर उसे और जानकारी से शायद हम अपना लाभ भी उठा सकेंगे। पर अभी तो दूर है और ज़रूर आपके जो संदेश है उन संदेश को सुनने के लिए बहुत बेचैन हूँ। ना कि सिर्फ मैं ही बेचैन हूँ पर हमारे सभी सुनने वालों, जो इस 188 देशों तक के कार्यक्रम को सुना जा सकता है, जो जाकर के इंटरनेट द्वारा और ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जो दप दयाबे प्लस से और सुन रहे हैं, और ख़ास करके जिनके लिए स्पेशल जो बनाया गया आएम जो निकाल दिया गया था और AM 15 सेशन सस्तक के फिर और दोबारा जो इस समय मस्त को और बनवाया गया और उसे और रखा जा रहा है, तो हमारे सभी सुनने वालों इस बात के सुनने के लिए ज़रूर बेचैन हैं। और पर अनुराधा जी, क्यों ना ऐसा एक गीत रख देते हैं फिर, और गीत के बाद में आप अपना संदेश जो हम सब के लिए रखते हैं।
1: जी जरूर, ये संजय जी बहुत अच्छी बात है। चलिए गाना सुनते हैं, आप क्या सुनाने वाले हैं?
0: तो गाना तो शांता जी का पिटारा से निकाला जाता है यहाँ स्टूडियो में, जो हर बार वही भर करके ला कर रख देते हैं, तो रखते हैं और सुनते हैं कि क्या उन्होंने अव लेकर आए हैं।

0: सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने सुंदर सा गीत सुने और सुंदर सा गीत के बाद में हमारे साथ और जो स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं और अनुराधा जी जो संदेश रखने वाले हैं कि जब हमारा बुढ़ापा आ गया तो क्या कर सकते हैं, कौन सा और खाना पदार्थ आदि हम सबको खाना है ताकि हमारा जीवन और जो कि कोई तकलीफ ना आए, तो अनुराधा जी क्या संदेश आप रखने वाले हैं हम सब के लिए?
1: जी तो संजय जी, ये मैं बताना चाहूंगी कि जो 60 साल के उम्र से सीनियर सिटीजन जो हैं, वो अपनी उम्र को लंबा बनाने के लिए हम सिर्फ हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, और हेल्थ के खराब और सही होने का सबसे शुरुआती कारण पाचन तंत्र होता है। अगर आप हेल्दी फूड्स खा रहे हैं तो पाचन तंत्र उन फूड से न्यूट्रिशन निकालकर बॉडी को देता है, और बुढ़ापे में होने वाली अधिकतर स्वास्थ्य समस्याओं से दूर रहा जा सकता है। वहीं बुढ़ापे में पाचन तंत्र कमजोर भी हो जाता है, जिस कारण हमें डाइजेशन को धीमा बनाने वाले फूड से भी दूरी बनाए रखनी चाहिए। तो सवाल यह पैदा होता है कि बुजुर्गों की डाइट कैसी हो और उन्हें बुढ़ापे में कौन से हेल्दी फूड्स खाने चाहिए। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि हम क्या अपने रोजमर्रा की डाइट में क्या खाना खाएं जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य की एक सरकारी हेल्थ वेबसाइट के मुताबिक बुजुर्गों की डाइट में रंग बिरंगी सब्जियां, फलियां, ताजे फल, साबुत अनाज, फाइबर वाले फूड और कम फैट वाले फूड्स होने चाहिए। इसके अलावा इन्हें पूरे दिन में पर्याप्त पानी पीना चाहिए और हल्का फुल्का व्यायाम मतलब एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। इन सीनियर सिटीजन डाइट टिप्स, इनको हम सीनियर सिटीजन डाइट टिप्स कहते हैं, वैसे तो ये सभी लोग के लिए बनता है, पर ये हम आज सीनियर सिटीजन वालों के लिए बात कर रहे हैं कि ये डाइट अगर वो करें तो इसकी मदद से सीनियर सिटीजन्स की हेल्थ सही रखी जा सकती है, और बुढ़ापे में होने वाली जितनी स्वास्थ्य की दिक्कतें हैं वो दूर रखा जा सकता है। तो चलिए, ये तो हो गई कैसे कि क्या खाना चाहिए, और हम आगे बताएंगे कि हम क्या खाएं जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो संजय जी, चलिए कोई गाना सुने।
0: जरूर अनुराधा जी, एक गीत जो हम प्लेयर पे रख चुके हैं उसे चलाते हैं और फिर उसके बाद में हम सब आपका जो संदेश है बेचैनी से इंतज़ार में हूँ और उसे हम सुनेंगे।

0: VAHON Hindustani Radio.
1: Dit is het VAHON Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De school van het meisje dat in Stadskanaal ernstig werd mishandeld deed een half jaar geleden al een melding bij Veilig Thuis. Het kind had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Hoewel hulpverleners en leerkrachten deze signalen opmerkten, werden ze niet tijdig samengevoegd tot één volledig beeld van de situatie. Het meisje en een mishandeld jongetje van 7 zijn inmiddels uit huis geplaatst. Twee moeders zijn aangehouden. In het Limburgse Nederweert is woensdag een jongen van 15 om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. Volgens lokale nieuwssite Nederweert 24 was het slachtoffer bezig met het verwijderen van golfplaten van stallen die gesloopt zouden worden, toen hij door het dak zakte en op een betonnen vloer viel. Het is niet bekend uit welke gemeente de jongen komt. In een park aan de Parklaan in Vaals is vannacht een 27-jarige inwoner van deze gemeente om het leven gekomen bij een schietpartij. Agenten troffen de man zwaar gewond aan, waarna hij ondanks medische hulp ter plaatse aan zijn verwondingen bezweek. De recherche doet momenteel onderzoek naar de toedracht. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht en roept getuigen of mensen met camerabeelden op om zich te melden. En voor de kust van het Deense eiland Anholt is een dode walvis aangespoeld, vermoedelijk een bultrug. Het dier bevindt zich op ongeveer 75 meter van de kust. Er wordt nu gespeculeerd of het om de bultrug Timmy gaat, die eerder wekenlang vastlag voor de Duitse kust. Hoewel Timmy naar open zee werd gebracht, stuurde zijn tracker al snel geen gegevens meer door. Het weer nog. Vandaag trekken buien over het land en het is fris met maximaal 12 graden. Ook in het weekend houden de buien aan, al stijgt de temperatuur langzaam naar 13 graden morgen en 15 graden op zondag. Na het weekend loopt de temperatuur verder omhoog. En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.
2: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07-36522-47. मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
3: Karikram Jyotika Prakash, jo live broadcast kiya jata hai, Den Haag shahar se, Hollandese se, aur jisme अनुराधा जी अपने ओर से संदेश रख रहे हैं. हमारा आज के खास करके जो 60 ईयर्स से ओल्डर के लिए और जो आज उसके अंतर्गत में उन्होंने और संदेश रख रहे हैं. अनुराधा जी, आप अपना संदेश को आगे जारी कीजिए.
4: प्यारे सुनने वालों, मैं आपको बता रही थी कि हम क्या खाएं जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे. तो इसके लिए ये 7 फूड आइटम्स ऐसे हैं जो हमें अपने रोजमर्रा की जीवन में ये रोज यूज करने चाहिए जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे. तो सबसे पहले जो चाहिए है वो है प्रोटीन. तो सीनियर सिटीजंस को प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है. तो प्रोटीन शरीर में कैसे आए, क्या खाएं जिससे कि प्रोटीन हमारे शरीर में आए. तो सबसे अच्छा जो खाने का आइटम है जिससे जो भरपूर प्रोटीन से भरा है वो है अंडा. अगर आप अंडा खाते हैं तो उसमें बहुत शरीर को ताकत और मसल्स बनाने में अंडा आपकी मदद करता है. पर जो जो अंडा खाते हैं उनके लिए यह प्रोटीन का बहुत अच्छा एक फूड आइटम है. पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जो अंडा नहीं खाते तो वो क्या खाएं. तो प्रोटीन, अगर आप अंडा नहीं खाते हो तो उसके बदले आप पनीर खा सकते हैं. पनीर, पनीर में भी आप जो दूध फाड़ कर पनीर बनाते हैं, पनीर में बहुत प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन आप पनीर से भी ले सकते हैं। तो जो लोग अंडा नहीं खाते उनके लिए सबसे अच्छा प्रोटीन पनीर से ही उनको प्राप्त हो सकता है। तो पनीर अगर वो अपनी डाइट में डालें तो वो उनको बहुत उनके लिए उनके स्वास्थ्य के लिए वो ये बहुत अच्छा आइटम है जो उन्हें अपने डाइट में रोज खाना चाहिए। तो अंडा या तो खाएं, जो अंडे खाने वाले हैं तो अंडा खाएं, और जो अंडा नहीं खाते वो पनीर खाएं। तो ये तो हुआ प्रोटीन। अब आप दिन में तो ये आप सोच लें कि आप में बुढ़ापे में अंडा खाने या पनीर खाने से 13 जरूरी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और ये आपके शरीर में जरूर शामिल होने चाहिए। तो अभी तो बात करी प्रोटीन की, और ऐसे अन्य खान पदार्थ है जो हमें अपने डाइट में शामिल करने चाहिए। तो ये हम करेंगे, एक गाना सुनेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि और कौन से खाने के आइटम है जो हमें खाने चाहिए।
3: सुनने वालों, हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ रहे हैं, फिर आप सुनते रहना, अभी और भी संदेश बाकी है। और जैसे कि आप प्रोटीन के बारे में अभी सुने, तो क्या उसका अगर आप फरफांगन जो उसे फरफांग कर सकते हैं, तो पनीर से आप जरूर और उसे फरफांग किया जा सकता है, किससे, क्योंकि हमारा शरीर में कुछ और बुढ़ापा जब आने लगता है ना, तो कुछ शायद कमजोरी भी हो सकता है ना अनुराधा जी।
4: जी,
3: और उसे संभालने के लिए कुछ चीजें को और प्रयोग करना पड़ता है ना।
4: जी, ये आपने संजय जी सही कहा कि जैसे उम्र ढलती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है, तो हमें अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना चाहिए, अपना खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो हम खाएंगे वो हमारे शरीर में जाएगा, और जो जाएगा उससे हमें ताकत मिलेगी, और ताकत मिलेगी तो हम

0: पानी पूरी का नाम आपने नहीं
1: जी,
0: लिया।
1: पानी पूरी जरूर चाट खाते, पानी पूरी और जलेबी, गुलाब जामुन, ये खाने में तो और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और मन भी ललचाता है, पर क्या है कि ये कभी कभार तो आप खा लें, पर ये रोज रोज खाने से इनमें तेल इत्यादि होता है और ये बहुत तली हुई चीजें और बहुत ज्यादा चीनी वाली मीठी चीजें, ये एक उम्र के बाद हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इनको कभी कभार तो ठीक है, पर ज्यादातर हमें ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, तो कौन सी जो चीजें खानी चाहिए जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे?
0: अनुराधा जी,
1: जी
0: हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम सब अनाउंस कर दिया था कि ये गीत को रखने वाले हैं और गीत तो अभी चला ही नहीं, तो पहले गीत चला देते हैं।
1: जी जरूर।

0: वालों, जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं कि प्रभु तीन के बारे में, और अनुराधा जी भी हम सबको और भी संदेश रखने वाले हैं। तो अनुराधा जी, इस समय आपका माइक ऑन किया गया है और आप संदेश को आगे रखिए।
1: जी, तो अभी बात कर रहे थे प्रोटीन। तो प्रोटीन तो सबको पता चल गया है, तो हम क्या, तो पनीर या जो अंडे

0: खाने वाले वो खा सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि हमें और क्या खाएं जिससे कि हम अच्छे सेहत हमारी बनी रहे। तो सीनियर सिटीजन की प्लेट में जो सबको, चाहे दिन का समय हो या शाम का, वो है एक आइटम जो शामिल करना चाहिए, वो है दही। दही बहुत ही जरूरी होती है क्योंकि दही खाने से कैल्शियम मिलता है। आपको पता है दही इतना उसमें कैल्शियम होता है कि जो बुढ़ापे में कमजोर हो रही हड्डियों में को मजबूती प्रदान करता है। तो ये दही सबसे लाभदायक एक आइटम है जो हमें अपने रोज खाने पीने में, हमें दही को हमेशा आप उसको खाइए। वही यह जो बेहतरीन फूड है दही, क्यों, दही में पाचन के लिए फायदेमंद हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। आपको पता है आप दूध और दूध से ही दही बनता है, पर दूध और दही में बहुत अंतर होता है। दूध हो सकता है कि थोड़ा आप एक उम्र के बाद आपको सूट ना करे, आपके स्वास्थ्य के लिए आपको इतना फायदा ना करे जितना कि दही करती है, क्योंकि उसमें हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। और ये हेल्दी बैक्टीरिया होने के कारण दही बहुत ही लाभदायक होती है, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हेल्दी फूड होता है। तो 60 साल की उम्र के ऊपर वाले लोग, प्लीज आप लोग दही का खाने पीने में रोज इस्तेमाल करें। दही का अलग अलग आप तरीके से खा सकते हैं, दही को स्मूदी की तौर से पी सकते हैं, दही का आप लस्सी बना सकते हैं, मीठी लस्सी बना सकते हैं, या आप उसमें नमक और जीरा डालकर उसका छाछ बना सकते हैं जो बहुत लाभदायक होती है। और आप चाहें वो आप सुबह नाश्ते में दही का प्रयोग करें, या दिन के समय दही खाना चाहें, या शाम के समय दही की लस्सी, छाछ, स्मूदी, ये कोई भी, या प्लेन कोई भी, बस आप प्लेन दही भी खा सकते हैं। ये दही तो एक ऐसा खान पान है जो कभी भी दिन भर कभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं, और ये कैल्शियम से भरपूर है। और कैल्शियम से भरपूर होने के कारण इसके खाने से आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपके हड्डियों में दर्द कम होएगा, आपके हड्डियां मजबूत रहेंगी, तो आप चलने फिरने में आपको तकलीफ नहीं होगी। तो कैल्शियम ये सबसे जरूरी हमारे शरीर में जो हड्डियों के लिए चाहिए होता है ओल्ड एज में, और सीनियर सिटीजन्स को दही सबसे लाभदायक फूड आइटम है जो आपको खाना चाहिए। और आप अगर दही को स्मूदी के तौर से सुबह पीना चाहें नाश्ते में, तो दही में आप ब्लूबेरी मिलाकर पिए, स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं, या आप दही में सीरियल डालकर उसको खा सकते हैं। तो दही को आप किसी भी रूप में किसी के साथ भी खा सकते हैं। दिन में आप खाना खाते समय खाली दही चावल खा सकते हैं, दाल चावल के साथ दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कैसे भी आप रोटी के साथ जब खाना खाएं तो आप सब्जी, दाल, सब्जी और दही, तो बहुत आपको उसमें हल्का महसूस होता है। और सबसे अच्छी बात कि ये कैल्शियम से भरपूर है। तो संजय जी, आपने देखा कि हम प्रोटीन की बात कर रहे थे, और अब कैल्शियम कैसे हमें फायदा मंद कर है, और हम दही से इसको पूरा कमी कर सकते हैं कैल्शियम की।
1: जरूर, हमारे सुनने वालों भी इस बात को जानते हैं कि ज्योति का प्रकाश का यही लक्ष्य है कि हमारे जीवन का ज्योति जो जल रहा है उसमें कम से कम और सा प्रकाश आए। और जैसे कि आप भी इस कार्यक्रम में सहयोग देते हैं और अपने ओर से और भी प्रकाश डाल रहे हैं, तो हमारे सुनने वालों भी इस बात को सुन करके जरूर प्रसन्न होंगे। हम एक गीत की ओर बढ़ेंगे और फिर गीत के बाद हम फिर जुड़ जाएंगे आपके साथ ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है सुनने वालों, और कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश जो इस समय ब्रॉडकास्ट किया जाता है।

0: والو جیسے کہ ابھی آپ نے سنے اور جا کر کے اور پروٹین اور کیلشیم جو ہوتے ہیں ہمارے شریر کے کتنے ضرورت پاتے ہیں، اور انورادھا جی جو اس کے بارے میں جانکاری لے کر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو آپ اپنا اور سندیش کو آگے رکھیے۔
1: تو سننے والوں، آپ ابھی تک یہ پروٹین اور کیلشیم تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ ہماری ڈائٹ میں روز کتنے ضروری ہیں، اور اب سنتے ہیں کہ کیا تیسری چیز ہے جو ہمیں اپنا کھان پان میں ہمیں شامل کرنی چاہیے۔ تو وہ ہے فائبر۔ فائبر آپ کو پتا ہے، فائبر، ہائی فائبر فوڈ کھانا چاہیے۔ فائبر کیا ہوتا ہے، کس میں ہوتا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو اس میں فائبر اتنا ہوتا ہے کہ جو 60 سال کی عمر والے اوپر والے لوگ ہیں ان کو اپنا یہ روز کھانا چاہیے، وہ ہے بروکلی۔ آپ کو پتا ہے بروکلی، بروکلی کھانے کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ آپ سب کو پتا ہے جو بروکلی بازار میں ملتی ہے، بہت یہ ایک طرح سے یہ گوبھی کی فیملی سے ہوتی ہے، کالی فلاور کی فیملی سے ہوتی ہے، تو پر بروکلی میں بہت فائدے مند اس میں نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، یہ ہائی فائبر فوڈ ہے۔ بوڑھے لوگوں کو بروکلی کا سیون اوشی کرنا چاہیے، کیونکہ بروکلی نہ صرف ہائی فائبر فوڈ ہے جو پاچن کو صحیح رکھتی ہے، بلکہ بروکلی میں موجود نیوٹریشن ہارٹ ڈیزیز، ڈائبٹیز اور آنکھوں کی سمسیاؤں سے بچاؤ بھی دیتے ہیں۔ تو یہ تو آپ نے سوچا ہوگا کہ بروکلی کسی کو تو بہت اچھی لگتی ہے، بہت لوگ کو لگتا ہے کہ وہ یہ ہمیں پسند نہیں ہے، پر یہ یاد رکھیں کہ بروکلی میں کتنا کچھ اس میں گن ہیں، یہ کہ ہارٹ ڈیزیز، ڈائبٹیز اور آنکھوں کی سمسیاؤں سے آپ کو بچا ہو سکتا ہے۔ بڑھاپے میں آپ اگر ہارٹ پیشنٹ ہیں تو یہ تو سب سے سپر فوڈ کہلاتا ہے، اور جن کو ڈائبٹیز ہے کیونکہ اس میں شوگر نہیں ہوتی زیادہ، تو یہ آپ کے سواستھ کے لیے بہت ہی لابھ دائک ہے۔ اور جن کو آنکھوں میں کوئی بھی سمسیا ہیں، آپ کی آنکھیں عمر کے ساتھ کمزور ہو جاتی ہیں، تو یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ کو چشمہ نہیں پہننا پڑے گا، پر یہ ضرور ہے کہ بروکلی کھانے سے آپ کی آنکھوں کی نسوں میں اس سے طاقت ملتی ہے، اور آپ کی آنکھیں زیادہ کمزور نہیں ہوں گی اور آپ ہیلدی رہیں گے۔ بروکلی کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اس میں اتنا فائبر ہوتا ہے، اس کے اندر فائبر سمیت وٹامن اے، تو وٹامن اے، وٹامن کے اور پوٹیشیم، وٹامن سی جیسی نیوٹرینٹس سے یہ بھرپور ہے۔ ہم تو سوچتے تھے کہ کیول یہ ہائی فائبر فوڈ ہے، پر ہائی فائبر فوڈ میں اس میں یہ سوچئے کتنا فائدے مند کھانا ہے کہ اگر آپ بروکلی کھائیں تو اس میں آپ کے باڈی میں وٹامن اے، وٹامن سی، پوٹیشیم، وٹامن سی، اینٹی آکسیڈنٹس، بائیو ایکٹیو کمپاؤنڈ جیسے کئی پوشک تتو ہوتے ہیں، تو یہ بروکلی تو اس کو سپر فوڈ کہلاتے ہیں، کہلایا جاتا ہے، تو اس کی کوئی عمر نہیں ہے بروکلی کھانے کی۔ بروکلی تو آپ انسان جو کم عمر والے بھی کھا سکتے ہیں، پر صحت اگر جن کی عمر زیادہ ہے تو اگر یہ بروکلی کھائیں، روز سیون کریں، تو وہ اپنا سواستھ اچھا رکھ سکتے۔ سن رہے تھے کہ کیا کیا اچھے ہیلدی کھانے چاہیے جو ہمیں فائدے کریں، فائدہ مند ہو۔ ابھی میں آپ کو بروکلی کی فائدے بتا رہی تھی، اور پھر میں آگے آپ سے چرچا جاری رکھوں گی۔
2: और अनुराधा जी बता रहे थे किस कुछ के बारे में, तो उसको हम यहाँ से जरूर से आगे में सुनने गए अनुराधा की मुखारबिन से। तो अनुराधा जी और आप बताइए।
1: तो अभी हम सुनने वालों को खाने के फायदे बता रहे हैं कि क्या क्या खाना चाहिए जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। जो 60 साल की ऊपर वाले लोग हैं तो हमने प्रोटीन की बात कर ली, कैल्शियम की बात कर ली और हाई फाइबर फूड। और अब चलते हैं कि क्या ऐसी चीज खानी चाहिए जिससे कि हमें आयरन मिले। बुढ़ापे में देखा गया है कि खून की कमी होने की बहुत समस्याएं हो जाती हैं, लोगों को खून की कमी हो जाती है जो कि आम तौर पर शरीर में आयरन की कमी से होती है। इसलिए बुजुर्गों की डाइट में आयरन से भरपूर पालक, जो कि स्पिनच बोलते हैं, उसको शामिल कर लेना चाहिए। पालक में भरपूर आयरन होता है, वो रोज हम अगर पालक खाएं तो हमारे शरीर में आयरन की कमी नहीं होगी। पालक में आयरन के साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फोलेट, प्रोटीन ये आदि से भरपूर होता है। स्पिनच तो भी एक सुपर फूड है जो हमें कितना कुछ आयरन देता है हमारे शरीर के लिए। यह हेल्दी फूड हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफी मददगार होता है। तो शांता जी, आप जैसे जानती हैं कि पालक आप कैसे भी खाएं, पालक पनीर के फॉर्म में खाएं या पालक को दाल में डाल के खाएं या पालक की पत्तियों का आप साग बना के खाएं, जैसी भी खाएं पर पालक जरूर अवश्य खाएं। ये बहुत हेल्दी फूड है और इसमें आयरन भरपूर भरा होता है।
2: जी हाँ, आयरन उसमें ढेर से है और सेहत के लिए हमारे बहुत लाभदायक है। तो लोग सोचेंगे कि पालक क्या है। पालक मेरे ख्याल से स्पेनासी है, बबली जी, स्पेनासी
3: सही बोला शांता जी, पिनासी कोई पालक कहते हैं।
2: अच्छा, नहीं क्योंकि मैं कभी भारत गई थी तो वो सब कहते थे पालक पनीर, पालक पनीर, मैं क्या मुंह बाकर ताकते थे पालक क्या है तो वो भी समझा नहीं पाते थे, पर हम समझ गए कि स्पेनासी को कहते हैं पालक। अनुराधा जी आप आगे जारी करें।
1: जी तो अभी मैं आपको जो मैं सुपर फूड के बारे में बता रही थी कि क्या खाएं, तो अभी हमने बात करी आयरन की कमी से हमारे शरीर में, क्योंकि आयरन हमारे शरीर को बहुत जरूरी होता है बुढ़ापे में, जिससे ब्लड बनता है, ब्लड सेल्स बनते हैं और इसकी कमी से शरीर हमारा कमजोर हो सकता है। तो पालक खाना बहुत ही आवश्यक है। आइए चलते हैं अगले चीज की, क्या खाएं जिससे कि हमारे बॉडी में ताकत बनी रहे। और ये आइटम है कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर में दही के साथ तो मिलता ही है, पर दूसरी क्या पदार्थ, क्या खाना खाएं जिससे उसमें कैल्शियम भरा होता है। तो बुजुर्ग लोगों को दूध अवश्य पीना चाहिए। अब बहुत लोगों को दूध नहीं पसंद होता है, मैं जानती हूं, वो चाय में डालकर दूध पी सकते हैं। गर्मी के टाइम में आप उसको दूध की रू अफजा डालकर कुछ बनाकर पी सकते हैं, उसमें आम डालकर उसको दूध का मैंगो शेक बना सकते हैं, ये आप कैसे भी पिए, या उसमें चॉकलेट डालकर चॉकलेट मिल्क की तरह पिए पीजिए, या कॉफी डालकर कॉफी उसका दूध का फ्लेवर अच्छा बना लीजिए, पर दूध बहुत ही जरूरी है। शांता जी आप को आप मानती हैं कि दूध जरूरी है?
2: जरूर मानती हूँ दूध जरूरी है, पर आप एक शब्द ने इस्तेमाल की है लस्सी। लस्सी को कैसे कहते हैं? लस्सी यानी कि योगर्ट।
3: अनुराधा जी, लस्सी कैसे बनती है आप बताइए जरा।
1: तो बबली जी, तो लस्सी तो हम पहले बता रहे थे कि दही से बनती है लस्सी, और जो उसमें भरपूर कैल्शियम है, और दूसरी जो चीज है दूध, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं कि दूध से हम क्या बना सकते हैं जिससे कि हम उसमें से पीने से हमारे शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम भरपूर हमारे जाए। तो ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है। इसमें आप जानते हैं दूध में आप इसको आम मिलाकर, आम का गूथा जो होता है पल्प, उसको मिलाकर हम मैंगो शेक बना सकते हैं। तो मैंगो शेक बहुत ही आसान है। आप एक ग्लास दूध लीजिए, थोड़ा सा मैंगो पल्प लीजिए, ताजा मैंगो है तो उसको छीलकर उसका गूदा निकालकर थोड़ा डाल दें मिक्सर में, और बस चला लें, और इतना स्वादिष्ट मैंगो ड्रिंक बन जाएगा।
0: अनुराधा जी, जैसे आप कह रहे हैं तो कुछ ख्याल आ रहा है हमारे बचपने का, और बचपन में जो हम सब घर पे जब घर घर पे और ख़रीदने लगा, परिवार में आने लगा रेफ्रिजरेटर जो कहते हैं ना कुलकास्ट, तो उस समय पे हम लोगों ने वहाँ तो लस्सी सूरीनाम में हम शायद नहीं जानते थे, पर चीनी डाल करके और दूध में और उसे आइस ब्लॉक बनाया जाता था शांता, नरियर, वो नरियर का दूध था, दूध के साथ। क्या आपने उस वो भी बनाए?
2: जी हमने भी बनाए, और हमारे गांव में एक लड़का था तो नवजुग था, तो वो भी बना कर और बेचते थे शाम के वक्त में, दोपहर ऐसे जो होते गर्मी वक्त के वक्त में, तो वो बेचते थे, और घर पर भी हमारे मामा जी भी बनाते थे कोकोनट। वो कोकोनट कोकोस कच्चा पक्का कोकोस को गिरित के उसका दूध निकाल के, और पका हुआ दूध में और थोड़ा से क्लोरसल चीनी डाल के खूब घोर के और फ्रिज में धर देते। हाँ, अरे मुंह में पानी आ जाता
0: ये बात कह कर के, और लोगों को आप तकलीफ दे देते हैं शांता जी, क्योंकि बिल्कुल ये पुराने बातें और ख्याल आ जाता है और यहाँ की वो स्वाद को, और पर कहने के तात्पर्य ये है कि वो भी ठीक होता है ना अनुराधा जी, कि कुछ भी और दूध में डाल करके, पर दूध प्रयोग करना बहुत आवश्यकता है।
1: जी संजय जी, आप पता है दूध में विटामिन डी बहुत भरपूर होता है, और उम्र बढ़ने के साथ शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसके कारण हड्डियों को कमजोर बनाने वाली ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी हो सकती है। जिस ये बीमारी है जिसमें घुटनों में दर्द हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो लेकिन अगर कोई लैक्टोज इनटॉलरेंस है, इसका मतलब जिनको दूध पीने से वो नहीं पी सकते, उनको वो टॉलरेट नहीं होता है, जो नहीं पी पाते उनको, तो उसको कहते हैं लैक्टोज इनटॉलरेंस। तो यह हम क्या करें कि जिससे हम क्या पिएं, अगर दूध नहीं पी सकते तो क्या पिएं, क्योंकि ये डेयरी मिल्क गाय या भैंस का दूध की जगह हम क्या पिए जिससे कि हमें ये सब चीजें मिली जो दूध से है, तो वो है सोया मिल्क। सोया मिल्क ये भी बहुत फायदेमंद होता है, और इसमें हमें भरपूर कैल्शियम और विटामिन डी मिलता है। आप चाहते हैं कि उम्र के साथ आप स्वस्थ रहें तो दूध पिए या सोया मिल्क पी सकते हैं।
0: सुनने वालों, यहाँ जबकि कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश में आज का विषय जो स्वस्थ या रेनौदर, जो अपना स्वस्थ और कैसे और ध्यान दे सकते हैं, और हमारे जो इस पे ज़्यादा तादाद में और संदेश दे रहे हैं वो है अनुराधा जी, जो अपने ओर से और ये बढ़िया संदेश जो रख रहे हैं। हम एक गीत की ओर बढ़ेंगे और गीत के बाद अभी आपके साथ फिर दोबारा जुड़ जाएंगे।
2: हाँ जी, तो गीत के बाद हम वापस आ गए हैं। यही उम्मीद है कि आपको गीत पसंद आए होंगे, और जो यहाँ हम आपको भी बता रहे हैं कि 60 बरस के ऊपर आप कैसे अपना शरीर को भी ध्यान में रख सकते हो, और वो भी हमारे अनुराधा जी की आवाज़ में। उनके आवाज़ से हम सुनते हैं कि क्या क्या आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। अनुराधा जी, आप आगे बढ़िए।
1: जी, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या खाना खाएं, क्या चीजें हम अपने डाइट में इंक्लूड करें जिससे कि हम स्वस्थ रहें, और ये बातें सबके लिए लागू होती हैं, परंतु 60 साल के उम्र से ज्यादा उम्र वाले लोगों को ये खाने पीने का अगर ध्यान रखें तो वो अपना जीवन स्वस्थ रख सकते हैं। तो आगे चलें, तो चलते हैं और देखते हैं कि और क्या चीजें हैं जो हम खाएं, रोज हमें अपने खान पीने में डालनी चाहिए। वो है सूखा मेवा और बीज। तो आप जानते हैं ड्राई फ्रूट्स, जिसको हम कहते हैं ड्राई फ्रूट्स या सूखा मेवा और बीज, यानी कि सीड्स।
2: अनुराधा जी, मेवा का मतलब मेवा क्या होता है?
1: जी, मेवा है अखरोट, बादाम, काजू, ये होता है मेवा। ये किशमिश, ये सब बहुत फायदेमंद होता है, और खास तौर की अखरोट होता है जिसको कहते हैं वॉलनट।
2: कोई भी अखरोट वॉलनट है, और किशमिश यानी कि रोसाइन है।
1: जी, रेजन्स। तो बीज, आप कोई भी बीज भी खाएं, ये बहुत फायदेमंद करता है। नट्स कोई भी फॉर्म में। अक्सर बुजुर्ग लोग सूखे मेवा और स्वास्थ्य वर्धक बीजों का सेवन करने नहीं करते हैं, इसलिए हमने बुजुर्गों की डाइट में इन्हें शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत फायदेमंद है। बादाम, अखरोट, काजू, सूरजमुखी के बीज, ये सनफ्लावर सीड्स जो कहलाते हैं, ये आदि खाने से उम्र बढ़ने के कारण होने वाली आपकी कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम से बचाव किया जा सकता है। आपको पता है शांता जी, बबली जी, कि 60 साल की उम्र के बाद टाइप 2 डायबिटीज होने की लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज, नसों की समस्या, नर्व्स, बॉडी में नर्व्स होते हैं, नसों की समस्या, कमजोर याददाश्त जिससे हम डिमेंशिया या अल्जाइमर जिस लोगों को हो सकता है, स्ट्रोक यानी कि हार्ट आपको हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का खतरा ज्यादा हो जाता है। तो इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं? अगर हम ये हाई प्रोटीन, हाई फुल कैल्शियम, हाई फाइबर फूड और आप हाई फाइबर और ये जैसे मेवा, ये काजू, बादाम, अखरोट, ये खाने से बहुत फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए। तो शांता जी, आप बताएं आगे क्या हम करेंगे?
2: बस हम तो ध्यान लगा कर सुन रहे थे, और मेरे ख्याल से सभी सुनने वालों ने भी बहुत ध्यान से इसको सुन रही है। पर बबली जी उंगली उठा रही है कुछ कहने के लिए, तो जरूर हम बबली को यहाँ से भी सुनेंगे।
3: मेरा एक प्रश्न था अनुराधा जी, क्योंकि बड़ी उम्र में ये सब चीज़ें पचती भी नहीं हैं तो पाचन क्रिया धीमी हो जाती है, तो उनको फिर ये चीज़ें कैसे खानी चाहिए?
1: ये आपने बहुत अच्छी बात कही बबली जी और शांता जी, कि बड़ी उम्र में ये कैसे खाएं। तो एक तरीका ऐसा होता है कि हम बादाम, अखरोट, इसको पानी में भिगोकर रात को अगर हम भिगो दें पानी में, तो उसकी जो कहते हैं ना कि बादाम, ये अखरोट ये बहुत गर्मी चढ़ देता है, तो पर अगर इसको हम पानी में भिगो दें रात को और सुबह उठकर इसका हम बादाम का छिलका निकाल कर खाएं, तो ये बादाम हमें हमारे शरीर में बहुत ठंडक देता है। अखरोट, अखरोट तो आप उसको तोड़कर आप सुबह नाश्ते में दही का सीरियल या उसमें मिलाकर अखरोट को आप पीस कर आप दूध में मिलाकर आप उसका सेवन कर सकते हैं, वो बहुत फायदेमंद होता है। आप अखरोट है, आप खीर खाएं, कुछ बनाएं ऐसी चीज जिसमें आप ये सब खा सकते हैं। और बीज जो है ये सनफ्लावर सीड, ये सूरजमुखी के बीज, इसको तो आप एक चम्मच ऐसे ही थोड़ा सा एक चम्मच ऐसे ही डाल लें चलते फिरते नाश्ते के तौर से, आप एक चम्मच खा लें और इसका बहुत आपको फायदा होएगा। ये आपने सुना ना जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, नसों की समस्या, कमजोर याददाश्त, हार्ट अटैक, ये सब इससे आपको बचाव होएगा।
3: मैं सोचती हूँ राधा जी, अगर बुजुर्ग लोग पंजीरी बना के खाएं और उसमें ये सब चीजें पीस के खाएं तो उनको जल्दी पचेगी।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात कही बबली जी। पंजीरी तो बहुत ही सबसे सही तरीका है खाने का, क्योंकि उसमें आप कई तरीकों के, कई किस्म के बादाम, किशमिश, अखरोट सब चीजें मिलाकर इसको कूट कर खाएंगे और आपको आसानी से पच भी जाएगा और स्वाद का स्वाद और हेल्थ की हेल्थ आपको उसमें मिलेगी। तो पंजीरी तो आप बता सकती हैं कैसे बना सकते हैं बबली जी?
3: हाँ जी जरूर, पंजीरी बनाना भी आसान ही है अनुराधा जी। जैसे मैं बनाती हूँ मैं अपना तरीका बता सकती हूँ, दूसरा तरीका तो नहीं मैं जानती
1: जी। बताएं कैसे बना सकते हैं पंजीरी?
3: हाँ जी, घी लेके घी को अच्छी तरह गर्म करें और आटा यानी पिसान और ये जितने भी आपने मेवे बताए ये सब मेवे उनको अच्छी तरह पीस लें, और वो जो भूरा चीनी होती है जिसको क्रिस्टल शक्कर कहते हैं शांता जी, वो ले लें और अच्छी तरह आटा भून के उसमें फिर ये सब चीज़ें मिला के तो फिर उसको थोड़ी देर रख दें तो फिर अगले दिन आप खा सकते हो। अगर वैसे खाने उसके लड्डू बना के भी खा सकते हो शांता जी। तो अगर लड्डू बना के खाने हैं तो लड्डू बना लो, अगर वैसे खाने हैं तो रोज़ सुबह 2-3 चम्मच खा सकते हो। और जिनके घुटनों में दर्द है और वो जो मेथे होते हैं मेथा दाना वो भी पीस के डाल सकते हैं बीच में, तो उससे घुटनों का दर्द भी दूर हो जाएगा।
2: तो आप कब बनाओगे? आप कब बनाओगे बबली जी?
3: क्योंकि यहाँ पर तो हमेशा ठंडा मौसम है, जब मर्जी हॉलैंड में खा सकते हैं। भारत में तो हमारी दादी हम बनवाते थे सर्दी के मौसम में ज़्यादातर, कि गर्मी में ये चीज़ें सब गर्म है तो गर्मी लगती है खाओ तो सर्दी में बनाते थे वो मेथे दाना डाल देते थे और हम बच्चे थे तो हमें कड़वी लगती थी। हाँ तो हमने थोड़ा हमारे बच्चों के लिए दादी ने मीठी बनवा देनी पंजीरी और अपने लिए कड़वी मेथे दाने वाले, क्योंकि हमारी दादी के घुटनों में दर्द रहता था। तो फिर सुबह रोज़ हमारी दादी खाते थे पंजीरी।
1: तो आपने ये तो बहुत ही अच्छा बताया बबली जी और शांता जी, आप भी बता रहे थे कि ये आप लोग कैसे क्या खाते थे बचपन में। ये पंजीरी सुनकर तो और लड्डू सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आने लगा।
2: तो वही तो मैं बबली को बबली से पूछ रही हूँ वो कब बनाएगा।
1: क्योंकि हम तो इसका इंतजार करते हैं कि कब घर में कोई पूजा हो या कोई त्योहार हो जिससे कि इसी बहाने हमें पंजीरी और लट्टू खाने को प्राप्त हो। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि मनपसंद चीज भी खाओ, उससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। क्यों ना इसी बात पर एक गाना हो जाए शांता जी?
2: आपने गुजारिश की है तो जरूर से होगी, तो यहाँ से संजय जी भी तैयार कर रखी है शांता जी के पिटारा से, नहीं आज संजय जी के पिटारा से निकाला जाता है। हाँ, तो ये गीत आपके लिए, आप सभी सुनने वालों के लिए।
0: सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत के बाद फिर हम सब कार्यक्रम को आगे और बढ़ा रहे। अनुराधा जी, आप आगे और संदेश रखिए।
1: तो संजय जी, आप जैसे सुनने वालों को आप तो गीत पेश कर रहे हैं, और मैं उनके स्वास्थ्य के लिए है, उनकी अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे स्वस्थ रहे, बड़ी उम्र में उनको तकलीफ ना हो। तो मैं अभी तक सब बता रही थी कि क्या खाना चाहिए, तो आखिरी में ये जो एक सबसे महत्वपूर्ण खाने की चीज है वो है, वो हर घर में सबने खाई होगी, वो है खिचड़ी, वो है, और वो भी हरी मूंग दाल की खिचड़ी।
0: तो ये इसके बारे में तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मास्टर जी जो इस समय 8000 किलोमीटर दूर है और हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, तो हॉलैंड आकर उन्होंने हम सभी को खूब खिचड़ी खिलाया और इतना स्वादिष्ट खिचड़ी खिलाया कि आज तलक वो खिचड़ी का और अभी तलक वो याद आता है, और पता नहीं कब फिर दोबारा और जा कर के उतना स्वादिष्ट खिचड़ी हम सब खाएंगे। पर आगे संदेश रखिए अनुराधा जी।
1: तो देखिए, खिचड़ी तो बहुत प्रकार के, आप कितनी भी प्रकार की दालों से बन सकती है, पर बड़ी उम्र के जो बुजुर्ग लोग हैं या जिनको चाहिए कि मैं हल्का कुछ खाऊं, तो सबसे अच्छा जो उनके लिए फायदेमंद चीज है वो हरी मूंग की दाल। देखिए, मूंग की दाल तो पीली होती है और दूसरी होती है हरी मूंग। बुढ़ापे में हरी मूंग दाल की खिचड़ी खाना काफी लाभदायक चीज है, क्योंकि हरी मूंग दाल की खिचड़ी ना सिर्फ पचने में आसान होती है बल्कि संतुलित वजन, बेहतर ब्लड सर्कुलेशन, भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन B1, जिंक जैसे कई सारे पोषक तत्व देना इसमें भरे होते हैं। तो आप ये सोचिए, मूंग की दाल तो लोग दाल तो खाते हैं, पर खिचड़ी खाने से, मूंग की दाल की खिचड़ी खाने से उनको कितना फायदा है। एक तो हल्की फुल्की होती है दाल, तो सहज स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। बबली जी, आप भी तो बनाती होंगी मूंग की दाल की खिचड़ी, तो आपको कैसा लगती है खाने में?
3: देखिए अनुराधा जी, हमारी मम्मी ज़्यादातर पहले पीली दाल की खिचड़ी बनाते थे जब हम छोटे थे तो, और जब लोहड़ी आती है लोहड़ी पे मूंग की दाल की खिचड़ी बनती थी, तो उसको रात को बना के रख देते थे, सरसों का साग और खिचड़ी, फिर दूसरे दिन मकर संक्रांति वाले दिन ये चीज़ें खाते थे। खिचड़ी हाँ पसंद है, लेकिन जब बच्चे थे तो नहीं पसंद आती थी, लेकिन अब जब बड़े हुए तो पता चला कि खिचड़ी खानी बहुत ज़रूरी है, और अब तो मेरा बेटा भी पसंद करता है, पहले नहीं खाता था।
1: बबली जी ने तो बताया कि वो उनको उनका बेटा पहले नहीं पसंद करता पर खाता है, तो खिचड़ी हमारे में मानना होता था जब हम भी जब छोटे थे, खिचड़ी घर में तभी बनती थी जब घर में कोई बुजुर्ग है या कोई बीमार है। ये नहीं पता था कि खिचड़ी के क्या लाभ है, कितना अच्छी चीज होती है जब आप, एक तो बड़ी आसानी से हजम हो जाती है। शांता जी, आप बताएं, आपको कौन सी दाल की खिचड़ी अच्छी लगती है खाने में?
2: कौन सी दाल की खिचड़ी मेरे को पसंद है? मुझे तो ये पता है, अगर शादी होता है ना, बाराती आता है, तो बारात जाने से पहले तो उनको खिचड़ी मिलते हैं खाने के लिए, है ना संजय जी?
0: बिल्कुल, जब बारात में बाराती पहले दिन में बारात हो आता था तो दीनी दिन और 26 पहले चल जाता था ना, पर जो बारात जो रात के लेकर आते थे तो और जा कर के रात के और जब कार्यक्रम पूरा हो जाए तो बारात में हम लोग जब जाए तो सवेरे पचलहरा और कहीं बांगी पे कहीं पायरा पे सोने को मिल रहा है, और उसके बाद में सुबह सुबह और बना करके खिचड़ी और माढ़ों में और खिलाते थे। तो उस समय तो जब छोटे थे तो अच्छा लगता था, वहाँ भी कुछ पैसा आदि भी मिलता था ना। पर कहने के तात्पर्य यह है कि हम सब ज़्यादा तादाद में खिचड़ी तभी खाते थे सूरीनाम में। और जैसे कि अभी आपने और सुना है कि खिचड़ी हमारे सेहत के लिए कितना ज़रूरत है, तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
1: जी संजय जी, बबली जी और शांता जी, कितना अच्छा लगा ये सब बताने पर कि क्या हमें खाना चाहिए। जो 60 साल की उम्र के लोग हैं उनको खास तौर से क्या चीज खानी चाहिए जिससे कि वो स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहेंगे तो उनकी आयु लंबी रहेगी और लंबी आयु रहेगी और वो चलते फिरते रहेंगे, अपने परिवार वालों से खुश होकर अच्छी स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो सुनने वालों, आप लोग याद रखिए ये चीजें जो हमने बताई, कैल्शियम, आपने प्रोटीन, हाई फाइबर और आयरन, ये सब चीजें हमने जो खाने से हमारे शरीर में कैल ये सब चीजें और स्पेशली मेवा ये सब खाने से हमें बहुत फायदा करता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसका ख्याल रखेंगे और ये खाना जब खाएंगे तो ये चीजें जरूर अपने डाइट में याद करके अवश्य खाएंगे।
2: शांता कारण जी, सुनने वालों, आपको हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने इस प्रोग्राम में भाग लिए है, दिल से सुने हैं, और स्वीकार कीजिए शांता की प्यार भरी राम राम नमस्कार हो जी।
1: तो सुनने वालों सबको मेरा नमस्कार और धन्यवाद, और आपको मैं ये सुनाना चाहूंगी, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। बहुत बहुत नमस्कार।
3: धैर्य रखो, निराश मत होना कभी, क्योंकि तुम्हें जिसने लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।
0: सुनो वालों, जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं, जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है, बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज के कार्यक्रम में सहयोग दिए अनुराधा जी, शांता खेमई जी, बबली आसरा जी, राजेंद्र सिंह जी, और मैं हूँ आपका सेवक संजय। आशा ये रखता हूँ कि जरूर कुछ न कुछ संदेश आप तक पहुँचे होंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। सभी को नमस्कार।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुने द प्लस रेडियो पर अनतुलक उक्त बलैस्त्रिफ या इंटरनेट के लहर द्वारा फाउन FM.NL पर ये कार्यक्रम आप दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार सुन सकते हो। जहां पर भी हो जी साल में हो एक बार फिर से स्वागतम हमारे इस हसीन प्रोग्राम में और हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ दिन प्रकट हो एनाटिलक में थेल फेल लाइस्टर प्लेजीर के साथ। जो भी रेडियो का काम हो खास फरमाई से जरूरी खबरें या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर या तो आप एक ऑर्गामन हो ऑर्गा वुमन इवेंट और खानी साथ और तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हो या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनाकर और फाहन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो तो देखना कैसे चमकार पे चमकार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाहन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो खास फरमाई से हो जरूरी खबरें हो या तो कमर्शियल हो ऑफ मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे यारो उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से यही आप सभी से कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेलेटेनेंस कंटोर यूरो अपने 7 2 13 65 98। तो जो भी रेडियो का काम हो डेंकन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यारो रेक्लाम बनाते रहना हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू और इसके लिए हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। बंतिनो खेलित फनफाहुन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन और साथ ही साथ बिनती भी किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रो को भी बनाएं। आपको तो ढेर सारा फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने 7 2 13 65 98। तो वादा के मुताबिक एक ही दम लेकर चलते हैं आप सभी को हमारे दूसरे भाग सरनामी संगीत का। कुछ सरनामी पॉप म्यूजिक आप सुनेंगे तो आज तो मुदर दाख है ना तो इस मदर्स डे स्पेशल डे के उपलक्ष्य में मैं पेश कर रहा हूँ हमारे हॉलैंडीज का मशहूर गायक पैदा हुआ तो पाकिस्तान में लाहौर और 40 साल से ऊपर तक ये दलित सिंगर है हमारे दनहाशर का द स्ट्रेंजर्स ऑर्केस्ट्रा का। तो कुछ माँ के बारे में ये महान गायक सुनाने को जा रहे हैं। मैं का बोलूं मैया आप तो माँ हैं आप महान हैं ये कह रहा है महान गायक द ग्रेट बॉबी जेकब्स।

सुंदर बयान सुनाया आप सभी को महान गायक हॉलैंड देश का द ग्रेट मैस्ट्रो बॉबी जेकब, म्यूजिक अरेंजमेंट कंपोज बाय मैस्ट्रो अशोक अयोध्या। तो कुछ सरनामी संगीत लेकर आया हूँ, खास करके स्पेशल मदर्स डे का ये अति सुंदर प्रोग्राम जो आप सुन रहे हैं लाइव फनाइड स्टूडियो फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। अगला गायक एक महान गायक है हमारे सरनाम देश का, जिसको हम मिस्टर के नाम से भी जानते हैं, द ग्रेट कवीश कालका जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे कॉफरेट सॉन्ग इल्जाम।

मिस्टर के फ्रॉम सुरिनाम, मशहूर गायक, जो आप श्रोताओं के सामने में ये अति सुंदर बयान को पेश किया। अगला बयान सुनाने को जा रही है आप सभी को एक और मशहूर गायक हमारे सुरिनाम देश का, फरानाज चिराग अली जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे ये अति सुंदर डुएट, साथ दे रहा है अर्नोल्ड मालाहे। मिलके सुनते हैं ये अति सुंदर बयान, शी लाइक द वाइंड।

She's like the wind, क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग सुना दिया आप सभी को मिलके, द ग्रेट फरह चिराग अली और अर्नोट मलाहे, सरनाम देश के मशहूर गाने वाले। एक और महान गायक हमारे सुरीनाम देश को मैं लाता हूँ आप श्रोताओं की सेवा में, और वो सुनाते हैं आप सभी को किस मौसम में। महान गायक हमारे सुरीनाम देश का प्रशांत राम जतन जी के मधुर आवाज में ये अति सुंदर बयान।

वे ब्यूटीफुल सॉन्ग सुना दिया आप सभी को हमारे सुरिनाम देश का मशहूर गाने वाली डिग्रेट निशा मदारन जी। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है खास करके मॉडर्स डे स्पेशल में इस खूबसूरत दिन के उपलक्ष में ये नगमे मैं चुना हूँ एक से एक बढ़ बढ़ कर। एक अति सुंदर बयान आप सुनेंगे एक सरनामी मैथिली जो हमारे यादगार ऑर्केस्ट्रा ने 2019 में बनाया था जब वो सब हॉलैंडेस के टूर में आए थे। और ये नगमे चल रहे हैं सभी बकेंद न्यूमर्स है फन बकेंद सांगर्स फनफ 1955 तक 1977 के दरमियान ये नगमे हमारे सुरिनाम देश के कुछ कलाकारों ने तैयार किए थे। तो मिलके सुनते हैं सरनामी मैथिली फनफ 1955 तक 1977।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। कुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप श्रोताओं को भी फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। अनतुलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड अनतुलक बदम। जहां पर भी हो, जिस हाल में हो, फाउन हिंदुस्तानी लव्स यू ऑल। तो जो भी रेडियो का काम हो, देंक ऑन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की फाइट सस्ते दाम, सिर्फ इस गारंटी और क्वालिटी के साथ। आपका जो भी रेडियो का काम हो, अब मात पर हम लोग बनाकर, और जितने बार आप चाहेंगे बंधु, उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, ये भी किफायत सस्ते दाम में। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें और 07-362-2047 पर, या तो आप तार करें आप 07-362-2047 पर। तो जो भी रेडियो का काम हो, देंक ऑन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना या रो थोड़ा बहुत चर्चा करते रहना हम लोगों के बारे में, एनातिलक फुल टीम की तरफ से इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। बेंतिनो खिलत फनफाहुन हिंदुस्तानी रेडियो टू गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रो को भी बनाए। आपको तो ढेर सारा फायदा ही फायदा है। इसके बारे में आप तार करके सभी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं ऑफ 07-362-2077 पर, या तो 07-362-2077 पर आप तार करें। एकदम लेकर चलते हैं कुछ नए नए सुपर हिट सॉन्ग्स सुनाने के लिए। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं यारों, और इस बार एक और महान गायक हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का, जो काफी दिनों बाद कुछ निकाला है, डेग्रेट मोहम्मद इरफान जी के मधुर आवाज में ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे। लिखा है पंकज दीक्षित जी ने ये नगमा को, और म्यूजिक दिया है मनीष एस शर्मा, कॉम्पोज टुगेदर बाय अरबिंदा नियोग। यादों से

से सुना दिया आप सभी को मशहूर गाने वाला हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का डगड़े मोहम्मद इरफान जी की मधुर आवाज में, लिखा है पंकज दीक्षित और कंपोज किया है मनीष एस शर्मा टुगेदर विद अरबिंदा नियोग। अगला बयान की तरफ लेकर चलते हैं यारों आप सभी को, और इस बार आप सुनेंगे काफी दिनों बाद ये भी कुछ निकाला है द ग्रेट सिंगर मोहित चौहान जी के मधुर आवाज में। आप सुनेंगे महान संगीतकार रोचिक कोहली के साज पर, और लिखा है ये अति सुंदर बयान को गुरी प्रीत साइनी जिया लागे, ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय मोहित चौहान।

लेने वाला नगमा आप श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया। सुनने वाला था मोहित चौहान, साथ दे रही थी मशहूर गाने वाली इस जमाने का द ग्रेट शिल्पा राव और रोचक कोहली ने भी मिलके इतनी सुंदर बयान को सुनाया। अगला बयान खुदा हाफिज से अमदत है सो मोहिकन सिंह नॉकमाउस, नया नया कदम रखा है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ये मशहूर गायक जो काफ़ी नाम कमा चुका है अल तमाश फरीदी एक बार फिर प्रोग्राम में खुदा हाफिज। म्यूजिक अरेंज एंड कंपोज बाय अमीर अली।

खुदा हाफिज से ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाया आप सभी को इस जमाने का मशहूर गायक अल्तमाश फरीदी, म्यूजिक बाय अमीर अली एंड द सॉन्ग इज रिटन बाय उदीन कुरैशी। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं यारो, मुसाफिर इज द सॉन्ग नेम और इस बार एक और जबरदस्त गायक हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का जो काफ़ी दिनों बाद कुछ निकाला है, द ग्रेट सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर अंकित तिवारी जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे ये अति सुंदर बयान। लिखा है मशहूर लेखक कुणाल वर्मा जी, मिलके सुनते हैं ग्रेट सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय श्रोताओं के नाम।

ब्यूटीफुल सॉन्ग है मुसाफिर, महान गायक इस जमाने का द ग्रेट अंकित तिवारी के मधुर आवाज में और उन्हीं के साथ छुपर ये थी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना, म्यूजिक बाय द मैन हिमसेल्फ और ये थी सुंदर बयान को लिखा है कुणाल वर्मा जी ने। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, और देखा जाए तो इस बार लाते हैं एक और महान गायक इस जमाने का, द क्वीन ऑफ मेलोडी, द ग्रेट ग्रेट ग्रेट श्रेया घोषाल जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे। बिल्कुल नया सॉन्ग है ये महान गाने वाली की, म्यूजिक अरेंज एंड प्रोड्यूस बाय राम संपत ऑन अरविंदा नियोग एंड द सॉन्ग इज रिटन बाय स्वानंत केरकीरे।

धीमे धीमे ब्यूटीफुल सॉन्ग है लपटा लेडीज इज द एल्बम्स नेम। और देखा जाए क्वीन ऑफ मेलोडी इस जमाने का डगड़े श्रेया घोषाल जी के मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। म्यूजिक अणिचांत कंपोज बाय राम संपत एंड अरबिंदा नेयोग और लिखा है स्वनंद किरकिरे। तो हमारे प्रिय श्रोताओं वक्त हो चुका है कुछ शेर शायरी भी हो जाए ना हमारे शेर के चाहने वालों के लिए, तो जरा गौर फरमाए। अर्ज किया है यारो कुछ ताजे ताजे शेर्स भेजे भाई भूपेंद्र जी ने, तो कुछ दोस्ती के बारे में जाता है ये शेर्स। अर्ज किया है यारो कि हमारे हर राज को, हमारे हर राज का जो हमराज है, जो सजा बनकर हर पल हमारे साथ है, हमारी हर खुशियों का जो हकदार है, तू ही सच्चा दोस्त और आप भी तो लाजवाब यार है। मुलाकात भी कभी आंसू से जाती है, मुलाकात भी कभी आंसू दे जाती है, नजरें भी कभी धोखा दे जाती है, गुजरे हुए लम्हों को याद करके देखिए, गुजरे हुए लम्हों को याद करके देखिए, तन्हाई भी कभी सुकून दे जाती है। ऐसा दोस्त चाहिए जो हमें अपना मान सके, हमारे हर दुख को जान सके, चल रहे हो हम तेज बारिश में, चल रहे हो हम तेज बारिश में, फिर भी पानी में से आंसुओं को पहचान सके। वादा करते हैं दोस्त निभाएंगे, वादा करते हैं दोस्त निभाएंगे, कोशिश यही रहेगी तुझे ना सताएंगे, जरूरत पड़े तो दिल से पुकारना, जरूरत पड़े तो दिल से पुकारना, मर भी रहे होंगे तो मोहलत लेकर आएंगे। क्या बात है, हम दोस्तों को भूलते नहीं मगर ये बात जताते भी नहीं, दोस्तों को हमेशा रखते हैं याद, दोस्तों को तो हमेशा रखते हैं याद, हम भूलने के लिए दोस्त बनाते नहीं। एक आखिरी शेर, मोहब्बत को तुम अपनी दुनिया समझकर हमें भूल बैठे हो ऐ मेरे दोस्त, मोहब्बत को तुम अपनी दुनिया समझकर हमें भूल बैठे हो ऐ मेरे दोस्त, जिंदगी दोस्तों से होती है, जिंदगी तो दोस्तों से होती है, सिर्फ मोहब्बत से नहीं। तो ये था कुछ शेर्स हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। तू जिंदा है अगला बयान सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को इस जमाने के दो महान गायक द किंग ऑफ मेलोडी सोनू निगम जी, साथ दे रहा है द ग्रेट ग्रेट ग्रेट सिंगर अरिजीत सिंह जी, दोनों मिलके सुनाते हैं तू जिंदा है देश भक्ति सॉन्ग रिटन बाय शैलेंद्र एंड कंपोज बाय माएस्ट्रो सलील चौधरी।

गायक हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का, द किंग ऑफ मेलोडी जमाने का, और द ग्रेट ग्रेट सिंगर शैलेंद्र सिंह का लिखा हुआ ये अति सुंदर बयान अरिजीत और सोनू निगम जी ने मिलके सुनाए, म्यूजिक बाय द ग्रेट सलील चौधरी।

आवाज है जनता का, आवाज है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। अगला बयान भरी महफिल, ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाने को जा रही है आप सभी को मशहूर गाने वाली द रॉक एंड रोल क्वीन ऑफ द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री जमाने का द ग्रेट सुनिधि चौहान जी का बिल्कुल नया सॉन्ग, म्यूजिक बाय संजॉय, और लिखा है थी सुंदर बयान को इक्का, कुछ अल्फाज इक्का भी सुनाएंगे आप सभी को इस गाने में भरी महफिल।

भरी महफिल ब्यूटीफुल सॉन्ग है सुनाया आप सभी को इस जमाने का मशहूर गाने वाली द ग्रेट सुनिधि चौहान जी साथ दे रहा था म्यूजिक डायरेक्टर इक्का और ये सुंदर बयान को लिखा है इक्का जी और संजॉय ने मिलके संगीत दिया है। अगला बयान एक और महान गायक हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का तैयार हो गया है आप सभी को कुछ गुनगुनाने के लिए। मोहब्बत के काबिल इस जमाने का महान गायक द ग्रेट सलमान अली जी का अति सुंदर बयान आप सुनेंगे। म्यूजिक बाय शिवा चोपड़ा और लिखा ये अति सुंदर बयान को रवि चोपड़ा।

बिल नहीं थे। ब्यूटीफुल सॉन्ग है सुनाया आप सभी को, इस जमाने का मशहूर गाने वाला द ग्रेट सलमान अली जी, संगीतकार शिवा चोपड़ा के साज पर, और इतनी सुंदर बयान को लिखा है रवि चोपड़ा जी। समय प्रिय प्रिय श्रोताओं, ये तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया। ये आशोमी लेकर घर को जा रहा हूँ कि जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, आप श्रोताओं को जरूर प्रोग्राम पसंद आया हुआ होगा, तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। हमारे बात एक से एक महान अनाउंसर साथी आप लोगों को सेवा करने वाले हैं। गुना देता हूँ तो देखा।

Bye bye, schwai schwai, love you all from the bottom of my heart. और मिलते हैं आने वाले दिनों में. सो लोबी लोबी एंड ब्लेसिंग्स.

वफा उन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है द प्लस रेडियो पर अनतिलक उक्त बुलाइस्टर फिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फूड टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। जहाँ पर भी हो, जिस हाल में हो, घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो, दुनिया के जो भी कार्यक्रम में या दुनिया के जो भी कोने में ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुँचे। हमारे फूल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक शुभ दिन प्रकट हो। मैथिल फील लेस्टर प्लेजर के साथ जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो। या तो आप एक ऑर्गामान हो, ऑर्गा वुमन हो, इवेंट ऑर्गेनाइजर और तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो ज़रूर उसके बारे में कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो। तो देखना कैसे चमत्कार पे चमत्कार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायत सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश है और मात पर हम लोग बनाकर जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से यही कहते आ रहा हूँ आप सभी से कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें टेरेंस कंतूर यूरो ओपनल सीफन तक द्रीफेंस तक ट्वेंट ट्वेंटी सीफन एंड फेर तक। तो जो भी रेडियो का काम हो, थैंक एन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना, रिक्लाम बनाते रहना यारो। फुल टीम की तरफ से इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रो को भी बनाए। आपको तो ढेर सारा फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें टेरेंस कंतोर यूरो ओपनल सीफन तक द्री फाइव सेस तक ट्वेंट ट्वेंटी सीफन फेर तक। तो आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रो को भी बनाए। उबेंट फन हर्ट वेलकम। तो प्रोग्राम में कुछ बदलाव लाऊंगा हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं और वादा के मुताबिक अब से लेकर कुछ देर तक आप सुनेंगे सिर्फ बॉलीवुड सॉन्ग्स और कुछ नए नए आवाजें भी है। तो एक अति सुंदर बयान सुनने को जा रहे हैं आप सभी को। काफ़ी दिनों बाद महान फनकार हमारे पाकिस्तान देश का मशहूर गायक डगड़ैत राहत फतेह अली खां के मधुर आवाज में आप सुनेंगे उनका बिल्कुल नया सॉन्ग चाल। मिलके सुनते हैं ये अति सुंदर बयान को।

Beautiful song by maestro Rahat Fateh Ali Khan, new Punjabi song, aap srotaon ke naam. अगला बयान सुनने को जा रहे एक और महान गायक इस जमाने का, हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का द ग्रेट अरमान मलिक जी. इसका दादाजी सरदार मलिक भी एक बहुत ही महान कंपोजर था, और इनका चाचा जान अन्नू मलिक, इनका फादर भी बहुत ही बड़का संगीतकार है डब्बू मलिक. तो ये महान संगीतकार फैमिली से जुड़ा है ये अरमान मलिक जी. तो उनका बिल्कुल नया सॉन्ग मिलके सुनते हैं. साथ दे रही है इस जमाने की क्वीन ऑफ मेलोडी श्रेया घोषाल जी, तुझ पे दिल हार के.

0: het ding met scamwebsites.
1: Beautiful song bij Arman Malik en Shreya Ghoshal. आजकल का ये कुछ संगीत आप श्रोताओं के सामने मैं पेश कर रहा हूँ। अगला बयान एक और उभरता हुआ कलाकार इस जमाने का आप सुनेंगे, फिर और क्या चाहिए। म्यूजिक बाय सचिन जिगर और सुनने को जा रहे हैं ब्यूटीफुल वॉइस का मालिक द ग्रेट आशीष कौर जी के ब्यूटीफुल आवाज में। म्यूजिक बाय सचिन जिगर।
2: सुनो

फिर और क्या चाहिए। ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय अजीज कौर, संगीतकार सचिन जिगर के साथ पर। अगला बयान एक अति सुंदर सॉन्ग है, मिलके सुनते हैं जोनिता गांधी और सलीम शैं के आवाजों में। म्यूजिक बाय अभिजीत वाघानी, गलियां एंड दिल में हो तुम।

अभिजीत वघानी। तुम हमें मिलो एक और महान गाने वाली जमाने के हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का डिग्रेट नीति मोहन जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे अति सुंदर बयान, म्यूजिक बाय शमीर टंडन और लिखा है विश्वदीप जीस्ट ने अति सुंदर बयान को।

नीति मोहन जी के मधुर आवाज में ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। म्यूजिक डायरेक्ट बाय शामीर टंडन।

हो गया है, कुछ शेयर्स हो जाए ना हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए। तो अर्ज किया है यारों की, आपकी याद ही मेरी जान है, आपकी याद ही मेरी जान है, शायद इस हकीकत से आप भी अनजान है। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं कौन हूँ, आपकी प्यार ही मेरा प्यार का निशानी है।

मोहब्बत क्या नगमा है यारो, और सुना दिया आप सभी को मशहूर गाने वाला म्यूजिक कंपोजर सिंगर द ग्रेट अमर मलिक जी। प्यार है तो है एक और मशहूर गाने वाली हमारे इस जमाने का द ग्रेट पलक मुशाल जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे अति सुंदर बयान, साथ दे रहे हैं अरमान मलिक जी, मिलके सुनते हैं।

तो है ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय अरमान मलिक और पलक मुशाल जी के मधुर आवाजों में। और ये थी सुंदर बयान कॉरेंज किया है अनिक। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, धीरे धीरे वक्त भी करीब आ रहा है आप सभी से विदा लेने के, लेकिन उससे पहले आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में ये आखिरी बयान आप सुनेंगे। और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को एक महान गाने वाला इस जमाने का डिग्रेट जुबीन नौटियाल जी के बिल्कुल नया सॉन्ग पहली बारिश में। मिलके सुनते हैं गुरप्रीत साइनी और गौतम शर्मा ने मिलके लिखा है ये अति सुंदर बयान को और अरेंज किया है रोचक कोहली ने पहली बारिश में।

0: बसपा कहाँ जा रहे हो?
1: करिश्मा को लाने जा रहा हूँ।
0: बहू को? अभी दो दिन तो हुए उससे मायके गए हुए।
1: दो दिन दो साल जैसा नहीं लग रहा, और बारिश भी आने वाली है।

जी एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम कहता हूँ। पावन इंसान रेडियो पर आप चुन है, आप सुनेंगे दिल के बाद पियानो के साथ। के बाद पियानो के साथ चलेगा सिमी, फिल्म साथी का बात है। सिमी पियानो के पीछे बैठ गया है दोस्तों, और बगल में खड़ा हुआ है राजेंद्र कुमार और सामने विजयंती माला। और सिमी क्या फरमाएंगे अपन दिल का बात, आप खुद सिमी का दिल के बात सुनते रहना।

की बार अपन दिल के बाद पियानो के पीछे बैठ कर सुनाएगा राजेंद्र कुमार। अर्जुन कुमार कहेगा, ऐ हुस्न जरा जाग, ऐ हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क जगाए।

साधना सो रही है, साधना जी सो रही है। जब ये म्यूजिक सुना, ये पियानो का आवाज उसे गले में, उसका कान में गया और राजेंद्र कुमार का आवाज, तो जाग गया और आहिस्ता आहिस्ता आकर राजेंद्र कुमार के सामने खड़ा हो गया।

राजेंद्र कुमार के आवाज़ का या राजेंद्र कुमार का दिल के बात अभी आपने पियानो के साथ सुना। दिल के बात पियानो से सुनाएंगे आपकी बार मनोज कुमार पियानो बजा रहा है और सामने खड़ा हुआ है वहीदा रहमान और मुमताज़ का चेहरे पे तो खुशी है लेकिन वहीदा रहमान का चेहरा तनी मायूस मालूम होता है। पता नहीं क्या हुआ, आप हो सकता है अगर आप ये गीत सुनेंगे तो सुनने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि क्या हो रहा हुआ या क्या हुआ है उस वक्त वहाँ पर। दिल के बाद पियानो के साथ

के बाद पियानो के साथ आप सुन रहे हैं और आपको मालूम है दोस्तों फिल्म संगम। इस फिल्म में एक फूलता दो काते यानी कि राजेंद्र कुमार और राज कपूर और फूल था प्यारी सी फूल था वैजयंती माला। तो दोस्तों में जब प्रॉब्लम होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत का बात रहता है। राज कपूर साहेब, राज कपूर जी पियानो के पीछे बैठा हुआ है और राज कपूर के पीछे बैठा हुआ बैठी हुए है वैजयंती माला और उसके सामने राजेंद्र कुमार राज कपूर जी क्या फरमाते हैं। मुकेश की आवाज़ है दोस्तों, लेकिन ये फिल्म में राज कपूर ने प्लेबैक किया। राज कपूर के ये सॉन्ग है दोस्त दोस्त ना रहा, अपन प्यारी जिगरी दोस्त के लिए फरमाते हैं, सुनिए।

उस दोस्त नारहा के बाद आप जानते हैं दोस्तों, दिल में दर्द छा जाता है भी, न सिर्फ प्यार मोहब्बत में, लेकिन जब एक पिता बचपन में माता को और छोड़ के चला जाता है, तो आप जानते हैं किस तरह से एक माँ अपन बालक को पोसते रहते हैं। लेकिन बात यह हुआ है कि देव मुखर्जी पिता प्रदीप कुमार को पहचान लिया है, और प्रदीप कुमार अभी देव मुखर्जी को नहीं पहचाना कि वो उसका बेटा है। तो देव मुखर्जी पियानो के पीछे बैठे हुए हैं और सामने पिताजी खड़ा है, मुंह में एक सिगार लगाकर सुन रहे हैं ये गीत।

चित्र के बाद पियानो के साथ में अब की बार दोस्तों निकली 68 की बात है जब फिल्म ब्रह्मचारी पेश हुआ। शामी कपूर का प्यार था रायश्री से, लेकिन रायश्री ने शामी से प्यार किया और सगाई की प्राण के साथ। तो पियानो के पीछे बैठा हुआ है शामी और सामने बैठी हुई है प्राण और रायश्री, और शामी कपूर क्या फरमाते हैं सुनिए।

के बाद पियानो के साथ आप सुने एक आखिरी दिल के बाद पियानो के साथ आप सुनेंगे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार पियानो के पीछे बैठा हुआ है दोस्तों, और सामने बैठी हुए उदासी छाई हुए है चेहरे पर, बैठी हुई है वहीदा रहमान। और कुछ देर बाद आ जाते हैं, दिलीप के बगल में खड़ा हो जाता है मनोज कुमार। तो ये दोनों क्या फरमाते हैं मिलके, आप सुनिए दिल के बाद पियानो के साथ।

के बाद पियानो के साथ अभी आप सुन रहे थे दोस्तों फाहन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुन है। हमेशा आप फाहन हिंदुस्तानी सुनते रहना और हर एक काम जो आपको रेडियो के जरिए कराना है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे दफ्तर से न्यूज सीफो तक 9852 2 4 सीफो पर आपको तार करना है। ओ माजिरे आशा जी के आवाज़ में आप गीत सुनेंगे, फिल्म बंदे हार्ट का सॉन्ग है दोस्तों। ये फिल्म जिसमें मुमताज अमिताभ बच्चन के साथ काम किया, ओ माजी रे।

फिल्म बंदे हाथ का सॉन्ग मैं पेश कर रहा हूँ दोस्तों। इस फिल्म में मुमताज अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। बात क्या हुआ है कि निखिल सीफन तक जब भी फिल्म बन रहा था, फिल्म के शूटिंग के समय, तो मुमताज अपन मर्सिडीज बेंज से आते थे और अमिताभ बच्चन वही कदम रखा था फिल्मी दुनिया में, एक छोटा सा मोटर कार से आते थे। तो हमेशा जब मुमताज आ जाते थे तो अमिताभ बच्चन वहाँ दरवाजा के सामने खड़ा होकर इसका कार को तारीफ करते थे। शूटिंग के समय भी कार के बात मर्सिडीज बेंज के बातचीत करते थे। तो मुमताज ने सोचा ये आदमी को मेरा मर्सिडीज बेंज बहुत पसंद है। तो मुमताज क्या कहा दोस्तों, एक रोज़ ये शूटिंग के बाद मुमताज निकल के चला गया और अमिताभ बच्चन के मोटर कार लेकर चला गया और अपन मर्सिडीज बेंज वहाँ छोड़ दिया। आमने सामने एक दो लोग जो था उनसे कहा कि कह देना अमिताभ साहब से कि तोहफा के रूप में ये बेंज वो रख सकता है। तो अमिताभ बच्चन जब शूटिंग के बाद बाहर आया और देखा उसका मोटर कार नहीं है, वहाँ बेंज खड़ा हुआ है, तो लोग गया उससे कहा कि आपका कार जो है तो मुमताज उन्हें लेकर चला गया है। तो अमिताभ बच्चन के से बताया भी कि तोहफा के रूप में आप इन्हें रख सकता है। अमिताभ बच्चन बहुत खुशी हुआ और बहुत तारीफ किया मुमताज जी को। और आप जानते हैं दोस्तों, मुमताज अमिताभ बच्चन ये दोनों लगभग 5 या 6 फिल्म बनाए। मुमताज उन दिनों में एक पुराना एक्ट्रेस था, कई फिल्म खेल चुका था, लेकिन अमिताभ बच्चन वही जैसे मैंने कहा कदम रखा था फिल्मी दुनिया में। और अमिताभ बच्चन के उतना पैसा भी नहीं था उन दिनों में एक नया कार किने, तो एक पुराना सा कार लेकर स्टूडियो में आते थे। तो ये था अमिताभ बच्चन और मुमताज का कहानी फिल्म बंदे हाथ का। दिल के बाद पियानो के साथ यहाँ से मैं समाप्त करता हूँ। घड़ी की ओर देखता हूँ तो धीरे धीरे रिक्लामों का समय आ रहा है। आफ्रिका हैप्पी स्टेशन फार ऑन हिंदुस्तानी रेडियो, आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ, और सामने बैठा हुआ है साहेब यूसुफ।

चोली में चोली में दिल है मेरा। आज शाम का मौसम के समाचार बोलकर एंड बैंड ट्रैकर फॉर ओवर हेटलैंड फॉर अ लॉन्ग दिस वार्स इज हेयर ओक नो रेंट फॉर द सन इन हेट नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न कैन हेट सम्स व्हाट लॉन्गड्यूरिंग रेन फॉल और टेंपरेचर टिसन 10 एंड 12 ग्राड रहेगा दोस्तों। जब वीकेंड है कल शनिवार का मौसम 13 ग्राड रहेगा मैक्सिमम 13 ग्राड। उसके बाद सोमवार रविवार को 14 वीकेंड के बाद सोमवार को 16 मंगलवार को 16 रहेगा और बुधवार को 18 ग्राड हो जाएगा।

0: एगो पुराना खबर है सुनाम देश का दोस्तों, एक नीदरलैंडर, नीदरलैंड से एक नौजवान हिंदुस्तानी रहा, ये आदमी गैल है सुनाम लो शेयर करे फकासिस गैल है, पता नहीं कहा लो शेयर करते मार अबारा ब्रोकी जहाँ है क्लैन मारे जहाँ छोटका बाजार है कनकंतिस रात ओकर हबरा में एगो रास्ता है बलुतिस रात ओके सब बोले है कुलीवेई हाँ कुलीवेई तब कुलीवेई में तो नमुआ है कुली नहीं कैसे पड़ल है मार
1: अशरफ कह रहा अशरफ लोग कह रहा
0: हाँ मार एक दो कुली हुआ रहे हैं हम नमो ऐसे तो हम बोलना माफ करे कि और तो कुली खबर है पिला एक दो ही हिंदुस्तानी रहे मार झुका पड़ल है ते रमिया का करल है ये अपन हान बखाश हान तास जो गटे में टांगे हैं ये गटे में टांगे हान तास और रात के अकेले कुलवेई में चलल है पता न कहा जा रहा और हांतास में रहा दृढ़ दर्शन एरो ओकर पासपोर्ट और मोबाइल टेलीफोन तो एगो आदमी खली गए है ओके ना माइल कुछ न बोले कौन जा खड़ा हो गया तो एक गटेम से निकाल के लेके चल गए कोनो से रोई गए है कोनो से पूछिल कि यहाँ सिपाही घर कहाँ सब बटायल रहू है दूर अभी ना है तो गए है अनकिफ चकेल मार सो तो बरकू डार के कहा का मुड़ी में आयल रहा कि दृढ़ दर्शन एरो ताश में धर के और रात के ऊपर ओसन जगह खुली हुई बहुत खफालक जगह हुआ पर है हुआ पर घूमत है तो अपने से खोजिल तो फिर निस्वजन सुनी तो हम सोचिला ई अदमिया शायद फरसेकड़े से पैसे न माचो निकारे ये चीज वो एगो फरसानक मैंने काम कभी न करी ओके यह मई चीज अब है सुनाम देश में एक हफ्ता के बाद है पुराना खबर है मार हम आप तो आप सभी को चेतावनी दिला दोस्तों जो सुनाम देश जाना है चाहे जहाँ पर छुट्टी जाना है ये काम मत करना कि सब पैसा जेबी में गट्टे में टांग के और तो रात के चलिए न जाने कौन सड़क कहाँ कौन चीज है अकेले भी इस वक्त तो इन दिनों में तो फड़ा शहर में तू तो गाँव तो रास्ता जहाँ पर तू जिंदगी भर बड़ा फैले मार वहाँ पर भी डर लगता है चलने को तो कुलवे का छोड़िए तो ये है सुनाम देश का छोटा सा खबर चार मिनट बाकी है सर है चार बजने में गोरी कलाई ये दिल लगी फिल्म का नाम है अक्षय कुमार काजल फिल्म में काम किया है

चुमा दो दोस्तों आइटम का शुरुआत मैं करूँगा और पहला सॉन्ग जो मैं पेश करने वाला हूँ वो है मुझे प्यार के जिंदगी देने वाले कभी गम न देना खुशी देने वाले मिस्टर साहेब यूसुफ सेतु के ओर से प्यारी प्यारी मासुका सिला के वास्ते।

मुझे कितना प्यार है तुमसे, साहब यूसुफ सेठू की तरफ से प्यारी प्यारी मासुका सिला के वास्ते। चला जाता है अलकमार की ओर, वहाँ पर रहता श्रीमान आंद्री राजकुमार, और आंद्री भी इस वक्त रेडियो के करीब बैठकर और प्रोग्राम सुन रहा है। आंद्रे के लिए मैं पेश करता हूँ मुझे प्यार के जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले।

वाह वाह क्या बात है, मुझे प्यार के जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले श्रीमान आंद्रे राजकुमार के लिए स्पेशल ये सॉन्ग पेश था। भाई आंद्रे, हमार और यूसुफ का नमस्कार आप तक पहुँचे। मुझे कुछ कहना है, ऋषि कपूर और डिम्पल का रोमांटिक हिट फिल्म बॉबी का सॉन्ग चलेगा और ये है श्रीमान मून जीबोत, मून की तरफ से प्यारी प्यारी जीवन साथी माला के लिए।

अक्सर कोई लड़की इस हाल में मुंज बोत के तरह से प्यारे प्यारे जीवन साथी माला के लिए ये सॉन्ग पेश था। मुझे का आइटम जारी है दोस्तों, मुझे नींद न आए।

जाने कहा दिल खो गया। दोस्तों आइटम यहाँ से मैं रोक देता हूँ, धीरे धीरे 5 का वक्त हो रहा है, अभी कुछ देर बाद रिक्लामा चलेगा और न्यूज़ पर एक

हमेशा प्यार बांटना चाहिए। प्यार तो इसलिए जिंदगी मिला है दोस्तों, प्यार जेबी में लग के चलेंगे तो जिंदगी नहीं बढ़ेगी। तेलमा डेनहाक में रहती है, उन्हीं के लिए स्पेशल, उन्हीं के फरमाइश था ये तेलमा का चॉइस, मैंने आप अभी पेश किया। और चला जाता हूँ तुरंत सोका चटनी के ओर दोस्तों, क्रिस गार्सिया एंड फ्रेंड्स चटनी वर्ल्ड बीट स्टूडियो से मैं निकाला हूँ आप सभी के लिए।

चटनी सॉन्ग अभी आपने सुना दोस्तों। नीदरलैंड का सरकार जो है वो अफिशियल कर रहा है कि अगर आपको सुनामदेश जाना है हर एक रेसकर्स को तो चिकनगुनिया का फक्सिनासी ले लेना। तो ये अफिश नीदरलैंड सभी रेसकर्स को दिया है जो सुनामदेश जाना चाहता है। तो इस बात पे सारा से ध्यान रखना दोस्तों। चटनी सोका का प्रोग्राम चल रहा है और रिकी जय

स्पोर्ट स्पोर्ट स्पोर्ट स्पोर्ट बरिश्त आप सुनेंगे दोस्तों, वी का वर्ल्ड कंपनी फुटबॉल का मुकाबला शुरुआत होगा 11 यूनी और 11 तारीख यूनी से लेकर 19 तारीख जुलाई तक तो नीघंटिंग यूली ये खेल खेला जाएगा वीका का, वो भी फॉरेन स्टार है अमेरिका मेक्सिको और कनाडा तीन देशों में लगातार ये खेल खेला जाएगा। ट्वेन देर तक देश इस वीका में भाग लेगा और पहला खेल जो खेला जाएगा 11 तारीख जूनी को वो है मेक्सिको सहित अफ्रीका। नीदरलैंड्स एरफ्ताल पास फेरती यूनी का मुकाबला करेगा, वो भी 10 बजे रात्रि को नीदरलैंड्स एरफ्ताल खेलेगा जापान से ये खेल। और आपको मानना चाहिए जापान का 5 खिलाड़ी जो वर्ल्ड फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेंगे वो एयर डिफिस में मुकाबला कर रहा है, जैसे कि फेयनोर्ड का सुयुशी वतानाबे और अयासे उएडा, आयाक्स का को इताकुरा और ताकिरो तोमियासु, माफ कीजिए अगर मैं गलत पढ़ूंगा दोस्तों, और एनएसए का है कोकी ओगावाया। ये सभी खिलाड़ी जो एरेजिफिसी में मुकाबला कर रहा है ये सभी भाग लेगा वीका का फुटबॉल जो आने वाला 11 तारीख जून को शुरुआत होगा। वैसे तो एरेजिफिसी का लास्ट राउंड रह गया है फुटबॉल का, आप जानते हैं पीएसवी तो कैंपियन हो गया है और ट्विटर प्लेक फेयनोर्ड है, ये दोनों का बसलेस हो गया है, फिर भी इसे बला रेक नहीं। और लास्ट स्पेल रॉन्जर जो रहेगा वो सोमदाग रविवार हालत द्रिक शुरुआत होगा और सभी खेल लगातार एक समय पर खेला जाएगा, जैसे कि पीएसवी एफसी ट्वेंट पैक्सवल फेयनोर्ड एनएसए गोएट ईगल्स हेरफेन आयाक्स आसेट नाग ब्रेडा एफसी इतरक फोर्टिना सितार्थ हेराक्लिस आमलो मुकाबला करेगा एफसी ग्रोनिंगन से स्पार्टा रोटरडम एक्सेल्सियर और आखिरी वेस्टसाइड या आखिरी लेज पे जो है वो है एफसी फोलंदाम टेलस्टार। ये सभी खेल और हालफदरी शुरुआत हो जाएगा। तो यहाँ तक था छोटा सा स्पोर्ट बर रिख्त, अब चलिए पीछे।

अब चलिया पीछे पसीना बनवारी, अब की बार किंग ऑफ कैलिप्सो मिस्टर सुंदर पोपो के आवाज में आप सुनेंगे डोंट फॉल इन लव।

सुंदर पोपो के मीठे आवाज में भी आपने सॉन्ग को सुना दोस्तों। यतलान जोडन हक्सहर वाटरिंग फेल्ट और रईसवे के आसपास में है, वहाँ अभी कुछ देर के बाद है तीखन हालत दरी 3 बजे के बाद है कि वार्निंग ओवरफॉल हुआ है, 2-3 आदमी घर में घुसकर और रोफ किया है, सिपाही पहुंचा वहां पर लेकिन ये दादर जो है ये भाग गया है। अभी पता नहीं है कि ये लोग कुछ लेके भागा है या खाली हाथ गया वहां से, तो और खबर रहेगा मैं आपको जरूर देता रहूँगा चटनी सोका।

चुरी चमके रे चुरी चमके, आप ही का हैप्पी स्टेशन फाहो हिंदुस्तानी रेडियो और प्रोग्राम गीतों का संगम में चटनी सोका का प्रोग्राम चल रहा है दोस्तों। टैरी गजराज गयाना बाबू

क्या बात है, मुझे भी दाल खाने का इरादा है दोस्तों। जब दाल का नाम सुने लेकर तो दाल इस बारिश का मौसम में। अगर आपको बाहर निकलना है दोस्तों, अपन पारापली छतरी मत भूलना, इसलिए कि बाहर बारिश हो रहा है। दाल राइस एंड भाजी।

दाल राइस एंड भाजी, रेवटी राम रूप, चल की ना जाए ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो।

धीरे धीरे 6 बज रहा है दोस्तों। मैंने आपका सेवा किया 2-3 घंटे आशा उम्मीद के साथ कि आप सभी को यह प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। हर एक जो प्रोग्राम सुना या प्रोग्राम में तार किया उसको मैं बहुत से धन्यवाद या शुक्रिया कहता हूँ। शुक्रवार शाम में 4 बजे एक बार फिर मैं स्टूडियो में उपस्थित रहूंगा प्रोग्राम गीतों का संगम के साथ। मिस्टर जॉनी नंबर 1 आ गया स्टूडियो में, अभी उसका न्यूज ब्रेक तो आप सुनते रहना। और साहब यूसुफ भी अपन यास पहन चुका है, वो भी घर के रवाना। यूसुफ बोले बहुत भूख लगल है। सभी को प्यार भरा वीकेंड, हैप्पी वीकेंड पेश हो। खुशबू रहेगा तो फूल खिलेगा, जिंदगी रहेगा तो फिर मिलेगा। आप सभी को एक सुहानी रात।

जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश और विदेश के समाचार सुनाना है। फिर से एक बार हमारा काम यही है, हमारी मोहब्बत भरी

और हम तुरंत इसी चून से और जा रहे हैं, और कहां जा रहे हैं, समाचार की ओर हम चलते हैं हमारी जनता। दोस्तों बात चीज बहुत गंभीर है सूरीनाम देश में, और हमारे सूरीनाम देश में गंभीर के बात जो किया जाए तो भैया वहां पर और क्या किया जाए, बारिश बहुत जोर तोर से आ रहा है, परमारी बहु बुड़ गया भैया, शहर से बुड़ गया है, और जनता हाय हाय चिल्ला है कि बचाओ बचाओ बचाओ। निकेरी के लोग भी बहुत बहुत इसमें और चिल्ला है भैया कि निकेरी के रास्ता बहुत खराब हो गए, टूट गए हैं। तो सिमोन के बोले हैं एक से एक मीडिया के सब सूखे हैं, बुलावे हैं और फिल्म बनावे हैं जगह जगह और दिखावे कि लांटी दे कुछ करे ना है, और चारों बगल बुड़ल है भैया निकेरी के जनता। फिर से एक बार बोले हैं कि हमारा निकेरी के रास्ता सब बुड़ गए, अब मिलांस के भी चाहे चले के जब कुछ गड़बड़ी है तो आमस्तन यानी कि ब्रांतवेर के भी तूफान चाहे जाए के, तो बोले हैगा ये रखेरिंग सिमोन कुछ ना करे है, अब बोले न संतोखी करके गए है, अब बोले ये भी कुछ ना करे है। तो निकेरी के जनता आप लोग इस रखेरिंग को बैठाए है तो इसका काम है आपके प्रॉब्लम अपलॉस करे के। अब चांद तो दुनिया पे ना भैया, अब चांद ना है बोलिए कि चांद बुराई से या चांद मर गए तो ऊपर से कस के बरखा बरसावे है, तो जाने है जब कुछ होत रहा तो चांद संतोखी करत रहा तब तो दुनिया में ना है दोस्तों, तब ओकर स्किल ना है। और आप लोग जाने निकेरी के जनता लोन एनडीपी का रखेरिंग के पूरा वोट देकर आज सिमोन के और रिसलांत के प्रेसिडेंट बनाई से, और आशा ही है करे रहा कि सब उस सब के प्रॉब्लम अपलॉस करेगा जो संतोखी ना कर पाए से। लेकिन अभी तक यहाँ के जनता निकेरी के जनता तफरीदा ना है भैया, और का बोले है अने ये रखेरिंग के भी बोले है तुम भी कुछ ना करे है जैसे संतोखी ना कर ले रहा। तो हमारे जनता हमारे दोस्तों आप लोग को और आगे हम अपना प्रोग्राम को और लेकर चलते हैं और बताते हैं। अब देखो भैया यहाँ क्या हुआ है, दृक्ष भाई बहुत जबरदृक्ष के कारोबार यहाँ है। एगो ब्रासिलियान के औरत के भैया ना, ब्रासिलियान के औरत सरनाम में ओके सबन एगो दृक्ष बंद है ब्रासिलियान के सूरीनाम में, और बताई सेगा ई औरतिया के बकड़ के बन करे रहा सबन ब्रासिलियान के एक सबन हुआ पे, और बोले ओके चाहत रहा कोक इन कैप्सुलस ढको लीले के, तो जाने हम लोग बोले ला बोल चस्तो औरतिया के जबरदस्ती सबन बोल चस लिलाए रहा भैया ब्रासिलियान के औरत के, और बोले इस देश में इस हफ्ता में नेशनल एगो ऑर्गेनाइज्ड दृक्ष बंद है जो रोके का बोले रहा अन लिलायरा भैया से सो में फॉल्स बलोफ्टन ऊपर वेरक नारे लैंड सेन खलोक में फॉल कॉलन सेन फास कहोदन दिस एक के ब्रासिलियन से बुलाए रहा दूसर की कि आओ यहां पे तो के मोई मोई हम काम हम देवावे बाकी ओके सेवन दृक्ष बंद पकड़ के बंद कर ले रहा, और जबरदस्ती ओके दृक्ष चेस ओके लीलावत रहा भैया, और ब्राजीलियन से फेडरल पुलिस सी वर्तस्लाग ओवर को ध्वंगन कोकाइन कैप्सुलस इन तसलेकन फॉर स्मोकल ट्रांसपोर्टर नर यूरोपा, बोले तो के चाहेगा कोकाइन के बोल चेस वा लीले के और तो के चाहे ले जाए के यूरोपा में। तो यहां पे बताए गए है कि रेकनेस ऑपरेशन 6 तारीख मई के और फुरक करिसेगा साम इंटरनेशनल सामवर्क्स इन हेड से फेडरल पुलिसी और रहेगा पर्नमान बिको इस सामरवर्क में फेडरल पुलिसी सरनाम से, और जाए कि औरतिया के बफरेट करी से भैया बफरेट कर दी से, और अक्षिया भैल है एच विशल भैल, और बोले है दोनों देशों ने कर बारे में तब बोले बैतला लेखाल वेरक सौ से इन फरिक्तन कोर्नर अनकोम से श्री नाम सौ से एक्त से उन
फूर्त जैसे छौड़िया औरतिया आयल है सरना में ओके सब डायरेक्ट ऑन फूर्त कर लीजिएगा और काबिल इंटरनेशनल दृक्ष हंडल खातिन और बताई गई हैगा बोले द पुलिस फरमोट की औरतिया इन सेट सो नाम द दृक्ष मेल दैट वे वर्डन कैप्सुल्स में कोकेन एट लिखाम फॉर फूर्त मन एंड फॉर स्मोकल फ्लक्टर ना यूरोपी से बस्टेमिंग तो यूरोपा मुख्य पठावत रहा लीलाए लीलाए भैया और ओकर खसोंत है इस ऋषि को रहा एकर बारे में जे लीलियो भैया जो पेट में दग गए कोकाइन त जैसे भैया गोदो बोक ब्रोको सीरी पाया हो जाए और तू मर जाइए भाई और यहां बतावे है खसोंत है सरख के कर बारे में बोले है अरेस्ट कर ऋषि को रहा और बताए दुर क्रिमिनल नेटवर्क इन द क्वेस्टबार पर्सोनन रेक्रूटेरन मेट फॉल्स बलोफ्टन और बोले हैगा फेलर तरह के ना ब्राजीलिया मोखलक तमाकन और के फिर से पठा दी से ना हर फ्राइडे से द डिप्लोमेटिक प्रोड्यूसर्स ऑफ कस्टार और मार फेलर तरह ना ब्राजीलिया मोखलक से फेडरल सिपाही जो हैगा ओके बोले हैगा इन्फॉर्मेर के इस फ्राइगेकेवो मोखलक फरदाखतन ऑफ आनहोडिंग द साक इज अंडरसोक अब देखो टिपकड़ा है भैया का बोले हैगा अन दृक्ष बंधुन की ना पकड़ा है तो जानो भैया उसर नाम है और विश्वास बहुत कम है कि सबर पकड़ पाई कि ना पकड़ पाई भाई एक बात और है बड़ा तमाशा अरे चौन चकलस भाई ले नानी तुलन जाने तो अन का बोले है ओके ईशन ईशन भैया एनडीपी के अडमिरा ईशन फर्नसन ईशन फर्नसन भैया और का बोले रखेरें के आदमी रहा बाउटर्स के तहत पे तो अब ये का करी सी अब बहुत हो मुदक खेलत रहा ना यह लिखल भैया हम ना बोली ला तो ये गई ले सुरिनाम के डीएसबी बैंक में भैया डीएसबी बैंक में गई है और हुआ पे झगड़ा भई ले भैया जो हुआ झगड़ा भई ले डीएसबी बैंक में यहाँ बतावे है तो हुआ के बफेल किंग एक बहरे निकाल दे इसे भैया ईशन फंडरसन के बहरे निकाल दे इसे वादी रमिया चाहे जहाँ जात रहा लड़क फड़त रहा तो यहाँ बतावे फंडरसन जो रहा बोले आंटारिक मई के सब के बवाकर एक के जबरदस्ती उठाई के बहरे बिक दे इसे भाई बिक दे इसे का बोले हैगा डीएसबी से डीएसबी बैंक के ओमदाती लड़त रहा बतावे फंडरसन वेर तू door een bewaker uit de bank gezet op bolle nadat een discussie over kosten zou zijn geëscaleerd. De voormalige directeur van kabinet-president van Bouterse zou daarbij buiten op de rug en hoofd zijn gevallen. De van der Zanige Boerhoademi, ja, lekker een baatje, bouw, lamba, chowra, hè. Toen ik heb het aanwezigen. बहरे बिक दे इसे अब बोले हैगा बांग बोले हैगा ते सिस्ट नबरतर एनिमेटर्स कॉन्टैक्ट है मन अपखरूमन मेरे बतरोकन क्लियन 81 यार खुशियन फंडसान के सब बहरे बिक दे इसे मा ओ बतिया अपना भैया अब फंडरसान का करे बोले आ तोरी नोक बातो सांडरसान बोले तोरिया थोरो दोन हुईगे बोले तोलो हमें बहरे बिगले हैं हाँ ऐसे चिजुआ ना है फंडरसान बोले है अब फंडरसान का करी से भैया ई गैल है फिन से बंकवा में हाँ यहाँ बताए गए है फंडरसान फिन गैल है बंकवा में भैया और वहाँ पे गैल है ओझाई करे बंकवा में भाई हाँ गैल है ओझाई करे बंकवा में इस सब भैया हमारा देश के अपरे के बहुत महान बतावे है बहुतस के रखेरें के और ये रहा रखेरें के आदमी रहा भैया हुआ और बतावे ईशन फंडरसान के तभी का गईले भैया एगो विनती एगो ओझा के लेके गईल है जेकर नाम है बासी रामोड मैकनेक के सोमार के सवेरे लेके गईल है और बोले है अन्वेषक मेरे फिलियाल डीएसबी बैंक के जो कोरोना स्ट्रांड में बा हुआ लेके गईल भैया आ हुआ पे गईले ओझाई करे दर कबूत ना दर बिल दन फसेरमोनी ऑफ सोशल मीडिया इन सुरीनाम साल वर्ड खदेल एंड फोर फील्ड रिएक्शन सोरख द तो अपि भैया मैकनेक जोन है रिट्यूअल बदूल ओम क्रा Intellect bescherming van der Sand terug te roepen bij een grote val of ongeluk. Vooral bij een biggie man of Uma blijft de kra op de locatie achter. Dat is van der Sand overkomen toen hij op grof en hard
handen gewezen naar buiten werd geduwd en hard op de grond viel, stelt hij. De abibank met geile ojaikere van ja, bolle geestelijke balans gaat die ritueeltjes geilge, bolle van der San te herstellen. Of bolle hega om de geestelijke balans te van ja, itra barka barka admiloon, John regering ke admiraha, u geile bank me ojaikere nana, socho hamara des me ojaai se chale ka. देसवा ओझाई से कहां चले भैया, अब देखो और आगे हम जाए तो भैया राजेश रामदत्त भी हमारे प्रोग्राम में आकर जुट गया है। तो राजेश आपको हम बहुत स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में, भैया राजेश रामदत्त आ गया है। तो राजेश सुन काबल भैया तीनर भैया एगो तीनर सरनाम में नम ओम वेल हो गए है, ये दम ओम वेल हो गए है एगो तीनर। और ये कैसे ओम वेल भैया, एगो कुकू खाई से भाए, तो सुरीनाम में जइयो कुकू और जे खइयो तो जान लियो कौन कुकू हम खाइला। तो हिया बता ले एगो कुकू के नाम बा ओरियो कुकीज, बाकी यहाँ बतावे हैगा और ये कुकी खाई से का दुई गो स्कूल के लड़कन खाई से नानी। और ओमवेल भाई लेगो 15 बरिस के और एगो 16 बरिस के 11 तारीख मई के बात है। तो भाई सब खाई से कुकू माँ कुकुआ में कैसे ओमवेल भाई ले नैली रघुनंदन महावीर भी हम आपको स्वागत करते हैं। तो नैली ई दुई गो कुकुओ लड़कवन खाई से कैसे ओमवेल भाई ले मालूम पड़ल है कि ई कुकुअन में दुर्योक्ष में बनाव अल्लाह भाई सरनाम में अब कुकू भी दुर्योक्ष के बने लगा। अब कुकू वो खाए के लड़कन के अब हुआ डर है भैया। हिया बताए गए हैं बोले मैं दुर्योक्ष फरमेंग द ओरिया कुकीज ऑन द स्कूल इवेंट फॉर कोपन एंड ऑफ तू तदीनन। तो कुकू में जे तू दुर्योक्ष बनाए के लड़कन के लिए तो बदूले यही है ना कि लड़कों को इन से फॉर स्लाफ होई अपन लड़कन के स्कूल के लड़कन के जो हमारा देश के भविष्य है जो हमारे देश के तू कौम से ओके तू स्कूलिए में से दृक्ष खवैयो भैया तो हम लोग के देश के तू कौम कहाँ जाएगा। तरी सोचो ई चीज भइल है हमारा देश में। और बताए गए हैगा मेड स्कूली एरेस आन बताए गए है twee dagen daarvoor hadden schoolleden via TikTok een video bekeken waarbij een echtpaar koekjes consumeerde waar er drugs was verwerkt en daardoor high werden. Deze koekjes staan bekend als Idibles. Je kon ook koekoek namen Idibles, maar ja, Suriname hoort het. Doe je wel een beetje raadje, joh. Op de hega, ik is van Kaise. Koekjes wilde uitproberen. Daarbij gaf RS een medescholier deze. En ook haar baap, ja, de vader van RS, die buiten was van om de jongeren op te halen. Merker is gegaan. Hij heeft naar huis. Haar moeder merkte kort daarna op dat haar dochter kort aanweeg, matlab saas na le paawat raha aur okar hart klop karat raha. To okar vertoonde ook naar haar kleding uitdeed. Op bole hega, de moeder aarzelde geen moment en deed direct de slachtoffer moeder politiebureau legelege he. Op bole sipahi okar patai ze direct is te hulle. De eerste hulle met patamilel hega. En medische team stelde vast dat er marijuana in de bloed van de tiener was, waardoor zij het op observatie werd genomen, wil ook er koen met ganja milen hey. Tijdens voorzichtig van een onderzoek 11 mei ke dui verdachte ke pakraan hey. Sipahi bureau ban kari se ob ole koekjes aangetroffen koekoen bhi paai se. Het vermoeden bestaat dat hij de koekjes maakte en verkocht. Verder deed ook nog komen vast te staan dat het niet de eerste keer was dat de verdachte RS deze koekjes had gekocht. Beide verdachten zijn de afstemming op is op kikuku jaiga bhaiya jahliya me khai. Deko kauncha kallas hove hamare anani ki school ke ladkan ke kuku banai ke khawawe hai. Ab deko hiya se jaiyo Suriname Rajesh ta apan passport bhaiya kam se kam जहां तू रहिए हुआ ना धरिए कोई जाने ओई चन आदमी भी ना दिए कहीं चुरवा दिए कहीं धल लिए वन हिया पे गो जबर जब रूप भैले सन्ना में भैया रूप भैले को बैतल अंदर के ओकर का बोले हैगा ओके बहुत ब्रुताल परमारी वो में सब स्त्रात रूप करी से पासपोर्ट आसपोर्ट लेके ना चलियो भैया यहाँ बतावे घरे छोड़ दिए नहीं कहीं लुकवाई दियो यहाँ बतावे द मन फॉर लोअर दार भाई ओकर ता
pas, ook er reisdocumenten en een groot geldbedrag, ook er ze van loodlezer naam pe, of die je bolle tristraat ke baanchit hei, hamare janta, of bolle plotseling benaderd door een onbekende man, die verdachte greep onverwacht de schoudertas van het slachtoffer, ook een leek ook er taas beelbhagele, jama ook er bichara ke, टिकट रहा भैया ताश में पासपोर्ट रहा और 3000 euro रहा दोस्त इन अनबेकेंट हैं मैंने ओमगेवे कौन स्लाक्टऑफर्स नहीं आनगेवे फिया वेलके रूट द दादर इस कफले और भैया अपने टूरिस्ट रहा तो जान ना पाई सेगा ना जान पाई सेगा कि कहां कौन ची और कैसे लेके सबन और भाग्य है हमारे जनता अब देखो कौन से कलस भाई लेनानी सुरीनामे देश में भैया लोन रजेश सुरीनामे जइयो भैया ढेर के कंदोम लेके जइए वन जोन जोन आदमी के ना है बांटो डडीए उबडुल करीला वन थेसुआ में बड़ा ढेर हा इफे फिरस होई गया भैया एच होई गए है याद करियो जॉनी का बोले है हाँ जइयो भैया तो कंदोम खबराई करे में ना चुकियो जा हो सके शायद दुई गो तीन गो लगा ली हो जा चाहे बोट के हेडा इनम समुंदर के ऊपर दिखाई लेकिन अपन फेल है जोन है वो बहुत वो है अब देखो सुरीनाम के खसों थे सोरख जोन है स्टांसिस बोले देसवा में बहुत ढेर सोवा सोई गए भैया और हाई फे मतलब एच सोई गए भाई बहालफो दैट इज फेल वेर बस में थिंग इज इन कोस्टेड ब्लैक ओ की बोले आदमी लोन बहंदल और सोरख नो द के फॉर लाखर इज आदमी लोन दतरा तरा ना जाए भैया ओकर बारे में और बोले ओ मेर सिख तक रहेगा ऑन द ऑफंग फॉर द प्रॉब्लम फॉर द इस मान तेगो लांडल का टैक्स अक्सी भैल की सबको जाए अपन टेस्ट करवाई सके है तो ई अक्सिया है 4 तारीख से और 15 तारीख मई लेक बिरकर जाए के खरातस में 85 तक टैक्स लोकासी जो देसवा भर में है जगह में जाए के 3 और 10 मिनट में और एक क्वार्टर के बीचे में जाए के अपन टेस्ट कर सके हैं बोले मौरीन फान दैक फरमेन अलगमेने डायरेक्टर मेडिसिन फॉर मेडिसिन जंदिंग बतावे हैं तो अगर जा आम सुरीनाम बाटो आइलो बाटे और जाए बाटे तो जइयो भैया अपने के टैक्स करवा लियो सरनामुआ भर में जैसे चिकुनगुनिया आफन मचाई से ऐसे एज आफन मचाई से भैया तो ओके ओवरड्राफ्ट जोन हो दोनों सेक्सुअल ओवरड्राफ्ट हुए में से वे वेट अलमल द मखे का लाख भैया रामदत मां एक विल इट वेल सेग गा 2 ऑफ 3 गा एन कंडोम गब्रुइक दी क्वालिटी ओक इज भैया क्वालिटी चीज जइयो अटल फटल चीज ना खबराई करियो ना और जइयो वहां पे जनता के ये बतइयो यहां से जइयो तो अब बोले हैगा वन कितने आदमी लोन यहां जाए भैया केलवा लोन जा है सुरीनाम देश में तो लोन समझो है अपन खनित करे कुछ ना कुछ करो भैया मां फैलक दूर फन देख रूप सामलेविंग अप ओम गब्रुइक te maken van tetswee wanneer we geen mogelijkheden hebben dan schreeuwen we om mogelijkheden dit is de mogelijkheid maar maak er goed gebruik ervan bole he ichi jega to gita kali bilanga dam wala aayegi he aur o gita aapko hum bahut pyar se apne program mein swagat karte hain thank you well gita ji bole he ga suriname mein itra hoige h gita ki admi loan bole jaise chikungunya hoige oise h hoige soa hoige तो वहां पे 10 तारीख और 15 तारीख मई ले बोले फ्री आदमी जाए के और अपने के टेस्ट करवाई सके है बोले बिना द अनपखलिक नादरक फॉर कॉमन ओम ओवरड्राफ्ट फॉर मदर ऑफ के स्वांगर फ्राउन वर्डन खतेस ऑफ हाईफी और बताई गई है कि भैया लोन हिया से जइयो जा सुरीनाम से ना जइए बबाल करे भैया देसवा भर में जैसे चिकुनगुनिया काटे है ऐसे हुआ एच है भाई और सोवा है En daar moeten wij met ons alle namelijk alert zijn. Dat gaat het om. Oh, maar to kaam hai bole ke. Aur baki ab tor kaam hai. Kousu bechiyo ki kousu pahiriyo. Apne aap ke bachayyo ki apne aap ke na bachayyo. Ab dekho bhaiya.
आप लोग जानो है। हाँ हम लोग के बोली ला के बोली ला धीरन धीरन बैल भैया जो जानवर के पीटे पाटे चलो जानो तो एगो 17 बरिस के लौंडा भाई। हाँ 17 बरिस के लौंडा भैया एगो बिलार के भैया 12 मारी से छुड़ी से के सिपाही पकड़ी से जिके घर में बिलार है भैया वो तो जाने उकर प्यार है द फरदख्त सो अन पुश फंसेन बीर फॉर आवर एरस्ट तक हेवन में सांदल एंड फर्स्ट कलेक्ट और बिल ऊपर से फिल्म बनाए रहा भैया जैसे अमिताभ बच्चन के फिल्म बनाए रहा। सोचे हमें अनमी लोन बोले हैगा बड़ी तारीफ करी कम बिलार मारीला भाई बोले हम बिलार मारीला तो जैसे टिकटॉक सब करे ना गीता ऐसे ही बिलार मार के पर टिकटॉक बनाए रहा। तो बताई गई है संतो बोमा के सिपाही एक पकड़ के ले गए है कि ई दीर में सामलिंग करी जाओ ई स्ट्राफवार है दबीते हुए अलमाल में से सो खात तुख। अब हम तरी जाई नीदरलैंड की ओर नीदरलैंड के सिपाही का करी से भैया पकड़ी से 10 गो आदमी के 10 गो आदमी के पकड़ी से भैया और बतावे हैगा 10 गो में से 8 गो रहा कोलंबिया के आदमी और 2 गो हॉलैंडर रहा भाई दी वर्दर फरदाख और इस अफेयर से में सैंडलिंग इन ऑन फूरिंग कलर रहा 2 नीदरलैंड से को 2 फेर तक 47 यार के फरवरी में भैया सबन एक पकड़ी से दुगो के कोलंबिया में द मानन सौदन फनोई दार अ रोल हैव अ खस्पेल इन ड्रग्स हैंडल मेट यूरोपा तो लो जानो कैसे हजार ने कितना पकड़ा ने ड्रग्स वो तो फोकस पॉलिसी स्टोन से नो कांटेक्ट विद द इन्फ्लुएंस राइक ड्रग्स कार्टल। तो इस ड्रग्स के बारे में आज आप लोग को हम बड़ा ज्यादा बताई चुक लिए बड़ी लंबा चौड़ा लिखल है मौसी मां हम तो के का बोले हैं इतने बतावे। अब देखो दादा अब क्या हुआ है आओ जानो अबे ईशान अफगानिस्तान के बारे में बताइली भैया तो ई और बाउटस के रखेरिंग में रखेरिंग के आदमी रहा एक के संबंधी एस बी बांग का बोले बफेलर सुल्तान के बहरे बिगी से तो अब ये नमिया गए ओझाई करे नानी हाँ गए ओझाई करे ई बात है सुरीनाम में भैया। हाँ और आगे हम आपको अपना प्रोग्राम लेकर चलते हैं। हाँ तो दोस्तों बातचीत ई होवे है यहाँ पर तो लोन जानो है निकेरी में सब के बोले है तो कोने फा निकेरी रशीद दुखी भैया एंडे पेयर है जबड़ का और का बोले है देना में भी बैठा था तेजर से रखे रिंग फन बाउटर्स के बारे में तो लोन जानो है तो रशीद रशीद दुखी अब का बोले भैया रेसलान के और रेसलान के और सिमोन के अब के रखे रिंग के अब की के रखेरिंग के बोले फोकस आउट एनडीपी रसीद दुखी बोले है बोले अबे तक बोले इस सब बहुत बोले कुछ करबे ना कर जैसे वही ना खदान इन एटलान। तो राज रामलगन आज भी हम आज भी हमारा प्रोग्राम में आकर जुट गए हैं तो हमारा राज आपको हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं और हृदय से धन्यवाद देते हैं हमारा प्रोग्राम में जुड़ने को। तो आज भी हम फेसबुक के माध्यम से लाइव है दोस्तों और आपके पता है मंगलवार के है और शुक्रवार के हमारा प्रोग्राम चलते हैं तो यहाँ बताए गए हैं रसीद फिर रसीद दुखी बोले हैं बोले अबे तक तो नी तो हेल वैनक बराइक बोले कुछ बराइक न हुआ सारो बगल में भैया अरमी लोन सरनाम में गीता अरे बोट चलावे डाम पे मोतर बहुत से भैया तो चो कौनची होई गए दसवा में कौनची होई गए बरखा इतना बढ़ से है और का बोले पहले जब बुढ़ा रहा था बोले चान करवावत रहा था चान ऊपर से पानी बरसवावे हमें जना भैया द रियो ले रहे हैं द अफोर्स एंड आलमान इन सुरीनाम फर्स्ट स्टॉप भैया। अच्छा ओके छोड़ अब एक बात हम बतियाला रसीद पीर खान का बोले हैं
tegelijkertijd Ambulina Pirkan Rasi Dukika bole sorry mensen bole hega sade char bris bole 4,5 jaar op correcte wijze kan worden beoordeeld aangezien zij voor een periode 5 bris koos van kisakalera bole hega sade char bris bole plus minus sade char bris hij doekie in de interview radio pe bole se or hier pe or chit bataai se bole deswa bole abbe tak isab kuch na barai kari se volgens Dukie bole hij staat zo oppassen dat een paar van de slechte minister haar reputatie en goede wil niet te grabbel gooien zoals dat bij Weilen en Santoki is gebeurd met personen als Albert Ramdien en Permanent Soudien als minister. Dukie vindt overigens dat een reshuffling van de minister niet nodig is. Ta hamlun to jani labhaya kon kon chakalsal bhaile jon fe yahan pe har gaye hai okar minister lon jon hai अपन काम नमुई करे रहा वारदोर फे हापे अने लास होइगे दोस्तों आप लोग जानो है अब इरकेरिंग में बोले रशीद बोले है रशीद बोले दुखी बोले है भी बोले मोई से एक काम ना होवे है हाँ और दोस्तों अब तरी हम जाए तो लोग जाने देशवा भर में सोना खोदा है जंगल में और बोले हैगा भैया पोरक क्रॉकर है हाँ खवान खराब फॉल्कन फॉर लोप के इंफॉर्मेशन फन स्लॉट ओवर इन मेन पिट्स इन गफालन यहाँ बताए हुए है अरे मियाँ बीजा गिर गए पानी में तू जाने भारी भारी गढ़ा खोदा है भैया सूरीनाम में तब जाए के सोना मिले है बहुत आदमी मर जाए भैया पेटिए में गिर के कितना सोना खोदत में मिल जा है और कितना है नाना जो रूफ में मराई जा है हाँ सबन रूफ करे बड़ा जोर ब्रासिलियान और हुआ के आदमी लोन चोर चपाटी जाए के बेनलांत में और रूफ करे बड़ा जबर भैया तो कितना आदमी दगाई जा है तो ये बात है हमारे जनता प्यारे प्यारे जनता अब देखो पानी इतना बुड़ल है तो अब का बोले है असेंबली ले इफानाल्डो प्लेन एंड पीएस के बोले के कर कसूर है अरे भगवान के कसूर ना दिखा देवे तू जाने एक एक गो आदमी ना बोले अनोमी फौतिया रे गीता कैसे बोले अनोमी फौतियर है हाँ तो बरखा बरसे तेरी फालदो बोले वी इज कुलक फन अंडर वाटर ओवरलास्ट पहले रहा चांद मर गए बेचारा तो अब के कर ऊपर उंगली दिखाएगा तो बतावे है इतना बरखा बरसल है बोले रीबा घर में आदमी के पानी स्कूल में पानी आदमी जो काम कर रहा काम पे ना जाई पावे वर्क नहीं मच क्यों ने हुन हैस नहीं फलांतर ऑनडर नहीं मच से हुन बसितंग इन कोम्स्टन बदरेक फॉर वर्दन ऑटोमोबाइलिस्टर ऑटो जो चलावत रहा भैया स्कादा भोवे ऑटो में नोट को दुआंग दूर ओवर कस्टरों में वीकन मुस्तन से राइडन और बोले हैगा फ्रस्टासी देसुआ में गुस्सा है मख्तलों से मद फ्राग की इके कर कसूर है वी इस खुलग फन द ओवरलास आनोमी राज ऐसने ना बोले है आनोमी तो यहां बताए गए हैं हमारे जनता हैत अंतवर इस नीत इनफोदर वन द वार है इस दैट वे आर सामन लेवन कलेक्टिव गफाल्ट हैवन तो अब बोले है बोले संतोखी के कसूर ना है बोले जनता के कसूर है और पहले जनता के कसूर ना रहा मिनिस्टर के कसूर रहा द ओवर है द्राखन स्वार फ्रांतवरलिकheid maar ook burgers moeten eerlijk durven kijken naar hun eigen gedrag. Bolle, we kunnen niet blijven wijzen naar de regering terwijl sommigen van ons zonder schaamte de oude koelkasten, vriezer, matrassen en andere afval in de trenzen en goten dumpen. We kunnen niet klagen over verstopte afwateringskanalen terwijl men de auto ruiten, lege flessen, plastic bekers en andere vuil op straat gooit alsof het normaal gedrag is. Dat u जनता के कसूर ना दे भैया बहुत लंबा चौड़ा हम देला दे तू बोले है जनता के कि जनता बोतल बीगे सब फर्स्टॉप हुए है जनता ऐसकासी बीगे पानी में फर्स्टॉप हुए है तर रखेरें के ताक है
ऊपर नबूटू मारे उस सबके खात ऑप्लोसिंग धरे सेट हेल्थ जैसे हम लोग के नीदरलैंड में है कि बोतल पे 15 सीस के तरह धरिए सेट खून अम बतरा ऑफ द फ्लैशेस में से ते देखिए जिंकियन गोत्र हुआ मसे अपरे से हल के निकारे जाई के बेचे खातिर और बेच के पैसा किन के दृक्ष कीने के एक को पेट फ्लैश तू ना पाइए एक को बोतल ले ही का डाम पे ना पाइए एक को फॉर स्टॉपिंग ना पाइए दैट इज एन हेले eenvoudige oplossing. Maar dit moet toch de regering gaan doen. Bhaiya Raj, regering kan aan je hintje wakker keer. कि रखेरें खाली बोले कि जनता भीगे है सौरख फोर की जनता ना भी कहे ना हिया भीगा है नीदरलैंड में भीगा है हिया तो फेलस बाख में अदमीलों जा है और वही मसे ब्लैक वन निकारे जे मस्तासी खेल थे और सब ले जाए और अल्बर्ट है इनमें और दूसरे दूसरे जगह पे कहा बोले लीफर करके ओसे सब अपन दूर बड़े किन के भी घरे ले जा है और जो पियकड़वन है नशेड़ियन है वह बीन के जा है तो एगो ब्लैक बीरी किन लेवे है या कुछ किन के पिए तो कहे ना सरनाम में हो सके और तू इधर चीज ई है भैया जो यहाँ पे लिखल है कि ऐश काशी बिगा है पानी में वो सब चीज बिगा है तो समुद्र खेरिंग एंड फिर सौरख की हुआ पे भी तो खरोट फैल है खरोफ फैल है मुझे अस्पराक माकर वर्तर खरातस अब खाल दर खात ओ मेंसे तो ऐसे आदमी उस सब चीज हुआ पे ना बिगी और जब तू बिगले बाटे दन करे के अनहेल खरोट यानी कि boete ervoor en de kosten van de opruiming moet je ook gaan betalen aan de overheid. Is dit een moeilijke oplossing? Of Suriname, bhaiya, badka badka ingenieur hai, regering mein baithe bhaiya, aur bole hai ga janta ke kasoor hai. Maar wat doet onze regering? Het is alleen wetten en regels te maken. Dat zijn de oplossingen. En dat kan de regering. Geen één regering heeft dit gedaan, mensen. Laten we daar even duidelijk maken hoe deze problemen opgelost kunnen worden. Or adviseur ke upper adviseur kalaya kha bhaiya. Jaise moos kalaya kha de swame. Aise hua pe ek se ek adviseur se ja khali paisa lewe hai. Aur paisa lewe ka e sab adviseur wan kaun chi kare hai rakhne ka advis na de paave hai ki e problemon hum kaise hum bhala oplos kari. Dit moet toch wel kunnen, mensen. Dit moet toch wel kunnen. Dit zijn allemaal. Ab de kook, bhail heka. Iban chit hoe klefia me. Klefia me, bhaiya. Pani bulal hai, sap rasta. Aur Salai Swakhtar ke pate na kahan hai. Salai Swakhtar ke pate na kahan, bhaiya. Khali kalepua to ke chahi khole ke. To ab janta hua ke ka kare se, bhaiya. Aur Salai Swakhtar kahin daru pe ke soote ki kahan soote hai. Janta dekhe riba ke pani saka hai. Aur okar rasta gotro sab budal hai. Deze een kwestie namelijk om de sluis open te maken. Aur koi Salai Swakhtar ke pate na te klefia ke janta apre gaile bhaiya. अपरे गैले केती खड़खड़ खड़खड़ उठाई के और अपरे क्लैप ऊपर करी से तब देखो कैसे पानी निकल के बहरे जा है रीमा में जा है एक बार में एनडीपी के फेहपी के पार्लियामेंटारियर किशन राम सुकुल भी हुए रहा और मिनिस्टर के बैलकनी से कि कम करतुवन कहाँ है भैया कम करतुवन कहाँ है एगो स्लैश नुआई खोल पे तो के लंटी हर महीना पैसा देवे है तो के सिकोफोन्स देवे है तो के सब कुछ देवे है और स्लैश वक्त लोग सूते है कि एगो क्लैप तो जाए के ना खोल पावे है तो क्लेफिया के भीड़ बहु ओनर्स जो है भैया वो सब गए अपरे से स्लैश खोली से बेस है पार्लियामेंटारियर किशन राम सुकुल और alles heeft hij vastgelegd namelijk op het beeld dat ze niet kunnen zeggen ki kaise chijua bhail hai afkomstig uit Klefia bole hij zegt dat er meerdere pogingen zijn gedaan om contact te krijgen met de ministerie van OW Sangse daarbij werd aangegeven dat de sluiswachter onderweg was maar de buurtbewoners wilden niet langer wachten dat ook de sluiswachter ke kaam nahi dat ook de minister ke bel kare ke bhaiya tab u batayega ke be hamara stambati van abbe hum dukaniya mein
एगो ठंडा ठंडा बीरी बारेला। तो इर्शिला भग्गू समुझ भी आ गया है पंडित तिलकधारी वैक्से, और भैया फतिंगन रामराज हरिओम हरिओम हरिओम भी आ गया है। तो आप सबको हम स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में। तरा सुकुल स्वाक्तर बोले बरिशन से बोले काम पे बा जनता बोले के प्रॉब्लम बॉयस रे स्वाक्तर वाके एंड वर्क वर्क मेर फास्ट स्कीम आज फॉर इट ओपन फॉर सोल्यूशन terwijl de praktijk soms vraagt dat de deuren 2 tot 3 uur eerder worden geopend. Daarna zouden sommige sluiswachten te laat komen of zelf helemaal niet opdagen. To i hamara deske, hamara des Suriname ke aadat hai bhaiya ki man karo to kaam pe jao aur na man kare to ghare suto. नहीं बोले हम सीख बाटी बीमार बाटी सौ खनाम। तो भैया सौ खनाम बोली हम बीमार है और उगैल है भैया मछरी मारे। अपरे जाए मछरी मारो काम पे सिक में अलग कर दी। एक को कंट्रोल ना है कि अदमिया सच्चे के बीमार है कि सच्चे के बीमार ना है तरी सोचो। तो रजेश किशुन भी आ गया है और वो है लंगाडाम के। तो रजेश किशुन सरनाम बुड़ गए भैया चांद बुड़ाई से। तो ये बातचीत है अभी बताई है पूरा देश बुड़ गए भैया। और का बोले हैगा अब बोले जनता के कसूर है। तो जनता के कसूर ना है रखेरिंग और रखेरिंग आयल है। एक को न गए लेको खुए बलाइट बनावे भैया कि जितना आदमी बोतल इधर उधर भी गए सबके चाहे लीफर करे दुकान में तब तो ओकर पैसा पाइए कर बारे में। अब ऐज ब्राइट हमें कर बारे में बताए रही कि आज सरनाम में भैया आदमी लोग के घर में पानी है आदमी लोग डाम पे वोट चलावे है। निकेरी के जनता जो है मसाल नहीं रखे पे का बोले है स्टेम कर ले रहा कुछ सबके प्रॉब्लम ऑफ करी ऑन द संतोखी ना कर पाए रहा आज तक रास्ता सब अफदाम इनके से बुड़ल है भैया कि वो तो चले के बहुत बहुत दिख है दुख है। तो हम जाए तरी नीदरलैंड की ओर हमारा देशन सस्तक की ओर रॉब यतन हम लोग के प्रीमियर जोन है और मंगलवार के गए है बोनेर के सिकन हाइस में और उन्हें नारदात है तेईस है स्वयं दूर इस वास का प्रेक एंड आले रखी रियाक्सी करे है प्रोग्राम ऑफ से बुसुक फन और उबैन बोनेर इस दार ऑफ आन खपास भैया गैला पौड़त रहा बोनेर में और हुआ कुछ गड़ गए है। तो ई जाए के हुआ बोनेर के अस्पताल में रात अपन प्रोग्राम से बदल दी से और यहाँ हम लोग के ब्लास्टिंग जो ने भैया हम लोग के गटाई दवाई से और नवा नवा चीज यहाँ पे भरल भैया इस सब मांगे फिनो इन लीफ ते जो पेंशन लीफ ते तो आप फिन ऊपर करे आप लोग तो न्यूज में देख ले बाटो कि हम लोग के यहाँ जनता गटाई दवाई से तेल के दाम यहाँ पे भैया डाला हो गए है कुछ सस्ता ना हुए है। विया जो नदमी पावे है जो आपको क्योर थे ओके सबन मांगे ऊपर जाए ओके मांगे फरकौर्थ करे। हाँ और ये सब चीज हम लोग के जनता के ब्लाइफ चिमार द्रुक एंड द्रुक एंड द्रुक दिस इज नीदरलैंड इज ओक नीत हुत मुत मेंस दिस ने ढेर आदमी सोचे थोड़ी बहुत विशाल है नीदरलैंड भैया माजे यहाँ रहे हैं वो ही जाने हैं कि ओकर संगे का हुए है कैसे यहाँ पे आदमी लोन अपन चलावे है भैया। अति हिल हिल मुइलक घर द्वार के बारे में इनफन आलसमेंस बड़ा देर हम तो लोग के दिली हम बोली आप तो लोग के एगो चटनिया हम सुनाई दे चटनी के बाद में अब हम वापस आएंगे मत जाना। चलो तरी पिंग पोंग करे भैया पिंग पोंग तो लोग जाने क्या है सुनो कौन जी पिंग

और डुई डुई डुई डुई डमा डुलवा और ई डमा डुलवा सबके डम्मा डोल कर दे इसे भैया। तो हम चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर और आगे। हमारी जनता, हमारी

अब देखो यहाँ पर यून बुरा सुरिनाम में भाई ले भैया संघ का बोले मिनिस्टर फन ओवी का बोले है ओरू बोले हम लोग बहुत जबरदस्त बोले प्रेस कॉन्फ्रेंसी कर ली बाटी बोले प्रेस कॉन्फ्रेंसी कर ली बाटी 11 तारीख मई के कि जैसे सब पनिया एक रोज में इस सब सोख ली तेज बहन कौन सा मिनिस्टर इन खानों प्रियोरिटेट इन मात्री कोमन प्रियोरिक periode worden genomen over de situatie aan te pakken. De appies heb kei ze aanpakkeri. Malum na bhaiya. Maar laten we even afwachten. En vertrouwen hebben op deze regering. Van Sang. Dat ze met een oplossing komen. Want janta hoan pe bari duk me bhaiya. Itra barka. Ha. Kabule hega duk hua. अब देखो और आगे हम चला जाए भैया तो यहाँ बतावे हैं बताए गए हैं कि आदमी हुआ पर रोफुआ अरे कहाँ है हमारा वो है मिनिस्टर फन मिनिस्टर कहाँ है काबले है यूसीसीएन पॉलिसी के हनीस मनोरथ के बाद बतियाला हमारे जनता हनीस मनोरथ बोले है बोले रोफुआ कमती भइल है और यहाँ पे देखे गो फिरन दर तक या रखा अतवार के और बोले है यहाँ पे बरूफ

और बोले एगो करिया करिया फिर वापस निकारी से अब द मुदर ओकर माइक ऊपर प्रोबेरी के ओकर केती ओकर घटाई में से घैचे के और बोले ओतरे में बोले मैया से उसे कुश्ती होवे लगल जबरदस्त मैया रहा होई तो ऐसन तैसन मैया थोरो है तई द वर्सलिंग ब्राक द कहते हैं केतिया टूट गए है मार दो दा द फ्रो से हेफक verzegde, slaagde de rovers er niet in om de buit mee te nemen. Nalijai Paise, de gewapende verdachte, loste daarbij een schot in haar richting. De vrouw werd gelukkig niet geraakt. We hebben dagis Oretjake mee, maar Oretjake gelukkig nalegel bij ja. Op bolle van Landsbergstraat, Rambranders, klaag gebaat. Bolle hega, man zette de achtervolging in, maar een van de criminelen draaide zich om en vuurde nog twee gerichte schoten af. Een kogel trof HB in zijn linker onderbeen. Bolle hij slachtoffer werd per ambulance, bolle Chorwan ke dawraai se, maar Chorwan ulte dagi se oke bhaiya, jo rokar adamiya ke ghode me lagal hai, aur batawe ke sakwa bolle ondar sukh hove hai bhai, aur choror ke piche na dawriye jae bhaiya, tu apre dekhe chorwa dagi se abhi ghode me lagal hai, ante lag ja tab to ye admi mar ja bhai, aur chor ke ka ho tu jai ke jhal kaat ke aur dheere se bahre ghumat, tari socho to bhaiya, tu chor log ke baat cheet e hove haiga हमारे जनता एगो आदमी के नाम बा भाई ना भौजी वाला भाई भैया ये आदमिया के नाम बा जयन कल्लू मिसिर नाम के मुताबिक तो हिंदुस्तानी है सीन देर तक या रख भैया ये आदमिया का कर ले रहा एगो बड़का और खानी सासी में चोरी के काम कर ले रहा भैया द फोर्थ फॉर द मन वाज एर्दन एक्सटर्न ऑफ रुपीज ब्रेक रहा बोले पुलिस एक मेडर फुरते एक दिव चोरी करता रहा ओ तो भाई वर्बे आले द्री गस्टोलन फुरतेगन मिल गए हैं और फालन इज दैट द टू इधर फ्रॉम टोटल गस्लोप सेंटर को फोन ओ तो वाई सब चोरी करके भाई वा स्लोप करत रहा और बतावे गए हैं एको नवा त्यो उता फेस इज चोरी कर ले रहा संतो दरप में तो फुरत एक बार लातर ओके सब खोल काल के वेल खलीखन स्ट्रेट में पाइसे क्वाटा में और ये कल्लू के सिपाही पकड़ ली से भैया त्यो उता पासो आने लाई स्वेक में चोरी कर ले रहा फोर खयान दिव साल फन त्यो उता फोक्सी और नेपाल स्ट्रेट में क्वाटा में तो अब एक सिपाही पकड़ी से सीफ ने दर तक यार के नाम एक बै नाम बा भाई भाई नाम बा भैया तू जाने फिस्टी केल के फिल्मों में भी भाई बोले है तो ये बात है हमारे जनता हमारे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर जनता अब देखो सैमसन का बोले है अंतरेकर साया खीन हंडलिंग दी स्ट्राइक इज में द वेट एंड रीगल गिवन टू लोन जाने साया मिक्सन हाइटियन तो ओ मांगे ओ हैगा काबल एडवाइजर बनल है तो इरेमिया बोले बोले को प्रॉब्लम ना है हां मस्कर दे रोफर्स लान तू इन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स मेर तर वोनिंगन लीव खरोफ भैया एगो ना औरो ढेर घर किसी रोफ करी से हिया अपार्टमेंट में भाई हिया से भी आदमी जात अपार्टमेंट हिर करके रहे हैं तो हिया बताए गए हैं यहां बताए गए हैं सिपाही पकड़ी से रोफ ओवर फाल भैले वोनिंग इन बराकर रात के तपाई स्ट्रेट में और बेलवार्डर वेक में हुआ अपार्टमेंटन भैया कॉम्प्लेक्स हैगा Volgens de aangever trapten de daders de achterdeur van een van de appartementen. De bewoner vluchtte samen met haar partner uit angst naar een andere ruimte nadat zij lawaai had gehoord. De indringers verlieten het appartement uiteindelijk zonder iets buit te maken. Or bataye gaye ko 26 jarige onder schot gehouden. Daders maakte tijdens het beroven een rode iPhone. Oude toe behoort aan zijn vriendin. Vrouw raakte in paniek rende weg en kwam daarbij ter val. Volgens slachtoffer waren twee van de vier daders gewapend. Toe hamara minister bole he. Bole choria. Danko en roofwa. Bole bahut kamti hoi ge he. Te bole se thoro hove he bhaiya manorat. Tari kaam करके दिखाओ सही फर्ज दिखाओ तो ये बात है हमारी जनता हमारी प्यारे प्यारे जनता तो यहां पर दिखाए गए हैगा तुलुन जानो है मेलक सेंट्रल वाला आर्मिया के जानो तो डायरेक्टरवा मेलक सेंट्रल के तुलुन तोरिया जानो ना बन रहा भैया और वो छूट गए है भाई

voormalig directeur. Or bolle hega melk centraal ke. Bolle hega bewaring verleende rechtercommissaris was verstreken. Or bolle vrije voet hoe he. Oud-directeur werd eerder samen met de ouder-onderdirecteur, president-commissaris aangehouden. Fraude kalera bij je anticorruptie wetgebaren mis je bandra. Baki ook zeg zag wat door he. Volgens de sociale autoriteiten betekent dat de invrijstelling niet dat de strafzaak is beëindigd. De voormalige directeur blijft verdachte in de lopende onderzoek. Het gerechtelijke te i doet wakatoria he. Hamari piari piari, janta, tolonjano melk centraal ke. दुधवा जो ने डायरेक्टर वन सब चोरी कर ले रहा तो स्मॉकल कर ले रहा मतलब दुकान में और पैसा उस सबके जेब में जात रहा भैया ऐसे बात है। फ्रीडरिक स्ट्रोप में भैया 20,000 यूरो एको फरलेंग फ्रीडरिक स्ट्रोप में 20,000 यूरो घर में से सामान चोरी करी से इन ब्रेकर्स और बच्ची एको छोटा के बच्ची लड़का पानी में बुड़ के मर गए भैया ओकर बोट उड़ गए रहा उलट गए बा कोरियल ऑफ द स्ट्यूमेर पे और यहां पर बताएंगे पुलिसिया खेंदुन आनखिफ्ते स्टेल द से फॉल्स इज बस्कुल दो द पेनिशियर अंत नारन के बारे में हमारी जनता आप लोग को छोटा छोटा न्यूज यही खबर बताई कि हमारा प्रोग्राम खत्म होने को आती है। सिपाही फरदख्त पकड़ी से दोस्तों ना कि सिपाही कुछ काम ना करे सिपाही काम करे है मत अटकान फील बीतर से मनसे मनोरथ आपको हम बस्कुल ना करेला लेकिन काम करो तो जबरदस्त काम करो और काम करो कारण की इचोरवन उरवन अब्बे बहु

तो रोशिता शंकर भी आकर हमारा प्रोग्राम में जुड़ गए हैं। अगर हमारा प्रोग्राम को आपको सुनना है तो हमारा फेसबुक पे भी आप लोग सुन सकते हैं। हमारा प्रोग्राम रविवार को हरहाल किया जाएंगे। दोस्तों आपको यहाँ से हम ही कहते हैं सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। हमारा न्यूज जो चलते है लाइव जो होता है मंगलवार को शाम को 6 बजे और एल्क फ्रेडक में रख। ओम ससुर नमस्कार बाय बाय स्वाई स्वाई।

और दोस्तों क्या किया और क्या किया, आज हम आप लोग को कुछ नया और पुराने गीतों से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे दोस्तों। और हम चलते हैं अगला गीत की ओर। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा एक गीत है जो नैतिल के लता जी और उदित नारायण को गाया हुआ गीत है। इस फिल्म का नाम है वीर जरा, शाहरुख खान और प्रीति सिंधा का ये गीत आप लोग सुना जाए।

और ऐसा देश है तेरा। जितने लोग दुनिया पे है हमारे प्यारे सुनने वालों, अपना देश सबके प्यारा होता है, चाहे आप भारत में हो या सुरीनाम में हो या पाकिस्तान में हो या जहां भी हो, अपना देश सबका प्यारा है। चाहे वो देश आपका जैसा भी हो, लेकिन तुम्हारा अपना ही देश है। और चलते हैं हम और आगे को, सतो सातो जन्म में तेरा ही रहेगी। फिल्म के नाम है दिल वाला, कुमार शानू और अलका याग्निक इस गीत को गाते हैं।

जन्म तक हम तेरे रहेंगे, ये क्या मुमकिन है? सात जन्म तक किसके साथ रहे? एक जन्म में भैया कहीं कहीं उल्टा सीधा हो जाए, सात जन्म में भला क्या होगा? सोचो तो, हम चलते हैं एक गीत की ओर। औ है खलनायक, खलनायक की ओर, और पलकी में होगे सवार, पलकी में होगे सवार। आओ सुना जाए।

बस पालकी में होके और सवार चलिए। कल का यानी फिल्म का नाम है खलनायक, जिस फिल्म में माधुरी दीक्षित संजय दत्त ने काम किया है और गीत को गाया है अलका याग्निक। और हमारे प्यारे सुनने वालों, हमारे दोस्तों, यहाँ से प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम हम चलाते हैं। अगर जो आप किसी के ऊपर दीवाना हो गया है, अगर जो किसी के ऊपर आप दीवाना या दीवाना हो गया है, दिल दे चुका है, तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए। आओ देखो क्या है।

और ऐसी दीवाननी, और तेरा नाम हमने लिख दिया अलका याग्निक और विनोद राठौड़, ऋषि कपूर, देविया भारती का ये फिल्म है ऐसा दीवानी। फिल्म का नाम है दीवाना। और हमारे प्यारे सुनने वालों, आज हम आज कुमार शानू के गीत भी आप लोग को सुनाएंगे, और वो है ये चांद कोई दीवाना है, ये चांद कोई दीवाना है, ये भी कुमार शानू और अलका ने इस गीत को गाया है।

चांद कोई दीवाना है और ये चांद कोई दीवाना है। छुपा रुस्तम फिल्म का नाम है और इस गीत को हमने अपने प्यारे लोगों के लिए चला दिया है। मोहब्बत भरी गीतों से आज हम आप लोग को फिर कुछ मनोरंजन को आप प्राप्त करेंगे। और हम चलते हैं, कोई पागल प्रेमी होता है भैया, कोई श्रेक होता है, कोई पागल होता है। कविता कृष्ण

पागल प्रेमी आवारा। दोस्तों और ये गीत क्या होगा दोस्तों, ये कुछ प्यार भरी गीत है और ये गीत है झुकी झुकी नजरों तेरी कमाल। झुकी झुकी नजरों तेरी कमाल की ओर हम जाते हैं।

मेरी तकदीर में क्या है और मेरी हम सफर अब तो बता। और फिल्म के नाम है हरियाली और रास्ता। दोस्तों जॉनी नंबर वन है। आप लोग को हम बता देते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है हर शुक्रवार को शाम को 6 से और रात्रि के 9 बजे तक चलते हैं। मंगलवार को दिन में 5 से 6 बजे लेक सुरिनामी न्यूज और रविवार की सोमवार को दिन में 1 बजे हमारा सुरिनामी न्यूज। दोस्तों और आपको हम बता देते हैं कि लोग जो इसको मालूम नहीं है हमारा फ्रिक्वेंसी जो है हम सब AM पे अब नहीं है दोस्तों। दिस मीन्स दी डेंक ए हमारा रिवॉर्म कुछ भले नहीं मीन्स आशी अंदेया बी प्लस रेडियो है दम पास क्वेंटी ऑन्स लॉइस्टर ऑफ अलेन ऑफ द इंटरनेट। और हमारा फ्रिक्वेंसी है 195.93 मेगा हर्ट्ज पर और नहीं कनाल 8A DAB प्लस रेडियो पर हमारा प्रोग्राम रेडियो फाहून के प्रोग्राम आप सुन सकते हैं, अपने गाड़ी में भी सुन सकते हैं दोस्तों। और हम कहते हैं यहाँ पर कि कहते हैं मरे तो लाखों होगे तुझ पर, मरे तो लाखों होगे तुझ पर, मैं तो तेरे साथ जीना चाहता हूँ। दोस्तों मुझ पे पाने को मुझे पाने के तुम जिद ना करो, मुझे पाने का तुम जिद ना करो, किसी को चोरी हुई मोहब्बत हूँ मैं किसी की चोरी हुई मोहब्बत हूँ मैं दोस्तों। और यहाँ से हमारा प्यार भरी गीतों का और बाहर नामक प्रोग्राम हम चलाते हैं लाइव रेडियो फाहुन के माध्यम से हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और हम चलते हैं फिल्म ब्लैकमेल की ओर, हम चलते हैं पल पल दिल कोई पांच किशोर साहेब ने इस गीत को गाया है, आओ मिलकर सुना जाए।

और पल पल दिल के पास सिर्फ तुम ही रहती हो। किशोर साहब ने इस गीत को सुनाया है, फिल्म का नाम है ब्लैकमेल। और दोस्तों कहते हैं जिंदगी के कुछ लम्हे यादगार होते हैं, जिंदगी के कुछ लम्हे यादगार होती है, यादों में कुछ लोग खास होती है, यादों में कुछ लोग खास होती है। यूं तो वो दूर होता है नजरों से, पर उनकी एहसास दिल के पास होती है। प्यार करने वालों के लिए कुछ प्यार भरी शायरी आप लोग को हम सुनाते हैं कि तेरे हर नाकामी को कामयाबी में बदल दूंगी, तेरे हर नाकामी को कामयाबी में बदल दूंगा, तेरे हर सपनों को हकीकत में बदल दूंगा। ऐ दोस्त हम खुदा से दुआ ऐसी करेंगे कि तेरे हर गम को खुशी में बदल देंगे। कुछ प्यार भरी शेरें हम आप लोग को और सुनाते हैं दोस्तों। आओ चला जाए एक और गीत की ओर, और वो है और वो भी फिल्म हरियाली और रास्ता कहे, जो 1966 का ये फिल्म है। मनोज कुमार और मालहा सिन्हा इसमें काम किया है। आओ चलकर और इस गीत को मजा लूटे।

चला हूँ और खुद उसके और क्या क्या प्यार भरी मोहब्बत भरी गीतों से आज हम आप लोग को और सेवा करेंगे। दोस्तों अपनों के बीच बेगाना हो गए हम, अपनों के बीच बेगाने हो गए है, प्यार का लम्हे अनजानी हो गई है। जहां पर फूल खिलते थे कभी आज वहीं पर वीरान हो गई है। ये बात है दोस्तों, जो शख्स तेरे तस्वीर से ही महक जाए, जो शख्स तेरे तस्वीर से ही महक जाए, सोचो तुम्हारे दिलार में उसका क्या होगा। हमारे प्यारे सुनने वालों, तो हम चलते हैं एक गीत की ओर, वो है कभी कभी का, फिल्म कभी कभी का ये गीत है, मैं पल दो पल का।

खैर हो। और इस गीत के बाद में हम चलते हैं एक मोहब्बत भरी गीत की ओर। लोग बचपन पर बहुत प्यार किया है, और जो बचपन पे किसी को प्यार किया है उस सब के लिए यहाँ पर एक शेर है, जिंदगी का पहला प्यार कौन भुलाता है, जिंदगी का पहला प्यार कौन भुलाता है, ये पहली बार होता है जब कोई किसी को खुद से बढ़कर चाहता है, उसकी पसंद उसकी ख्वाहिश मिल खुद से को भूल जाता है, अकेले में उसका नाम लिख लिख कर मिटाता है, दोस्तों बात करने से पहले सोचता है क्या कहना है, बात होने के बाद फिर भी कुछ रह जाता है, होता है खूबसूरत कितना पहला प्यार, होता है खूबसूरत कितना पहला प्यार, ना जाने क्यों अक्सर अधूरा रह जाता है पहला प्यार। तो सबके लिए यहाँ पर हम एक गीत को चलाते हैं कि बचपन का प्यार कभी भुलाना नहीं, आओ मिलकर सुना जाए।

और बचपन की मोहब्बत को दिल से दुआ करना। और दोस्तों, प्यार भरी गीतों का बहान प्रोग्राम हमारा चलते हैं। और कहते हैं, मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों को हुआ था, मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था। फर्क सिर्फ इतना है हमारे प्यारे दोस्तों, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने क्या था और मुझे हुआ था। उसने किया था और मुझे हुआ था। दिस इज गवेल्दिग मोई दोस्तों, कोर्ट मार हेल मोई। मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसे किया था, उसने मोहब्बत किया था और मुझे मोहब्बत हुआ था। हमारे प्यारे दोस्तों, ये सब प्यार भरी शायरी और आपको हम यहाँ से सुनाते हैं कि जाओ जाओ जाओ ढूंढ लो, हम सबसे ज्यादा चाहने वाला मिल जाए तो खुश रहना। जाओ ढूंढ लो, हमसे ज्यादा चाहने वाला मिल गया तो खुश रहना। ना मिली तो हम फिर भी तुम्हारी है। ये सब बातें हैं दोस्तों जो दिल को छू कर और निकल जाता है। हम चलते हैं एक गीत की ओर जिसमें शमी कपूर काम किया है, राइसी संगे पद्मा श्री मोहम्मद रफी का ये गाना है और ये है, ये गीत है और मेरी मोहब्बत जवान रहेगी। मेरी मोहब्बत जवान रहेंगी यानी कि मोहब्बत कभी बुढ़ाते नहीं है, उम्र चले जाते हैं दोस्तों लेकिन मोहब्बत जवान रहती है। ये हमारा पैगाम है रेडियो फाउन के माध्यम से, आओ सुना जाए।

और दोस्तों मेरी मोहब्बत जवां ही रहेगी। और ये है परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत है और मोहब्बत भरी प्यार भरी लवली सॉन्ग यहाँ से हम और प्यार भरी हार्टब्रोकन सॉन्ग्स और कुछ यादें हम आप लोग को यहाँ से चलाते हैं कि कहते हैं समझाता ही नहीं वो मेरे अल्फाज की गहराई का, समझता ही नहीं वो मेरी अल्फाज की गहराई, मैंने हर लफ्ज का दिया जिसे मोहब्बत कहता है, मैंने हर लफ्ज कहा दिया कह दिया जिसे मोहब्बत कहता है। दोस्तों एंड ब्रोकिंग्स हार्ट शायरी यहां से हम आप लोग को एक दो सुनाते हैं। तुमसे मोहब्बत तेरी अवकांश से ज्यादा की थी, तुमसे मोहब्बत तुमसे प्यार तुमसे मोहब्बत तेरी अवकाश से भी ज्यादा की थी, अब बात नफरत की है सोच सोच तेरा क्या होगा। माना कि मुझे प्यार करना नहीं आता, माना माना कि मुझे प्यार करना नहीं आता, पर तू बता कि तुझे डील तोड़ना किसने सिखाई है। ये तो भी होता ना हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों रेडियो का। हम चलते हैं आशीष जी के एक रोमांटिक सॉन्ग है परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत है और चला जाए फिल्म के नाम है प्यार का सौदा नहीं। दोस्तों प्यार का सागर फनी कति होंदत एन एनन सस्तक आओ चला जाए सुनने को कि मोहम्मद रफी और आशा भोसले क्या गाया है।

प्यार की जिंदगी देने वाली। दोस्तों कितने लोग कहते हैं, बोले जॉनी तू सिर्फ प्यार भरी गीतों को चलाते हैं, लेकिन हम अपने जिंदगी में बेवफा बहुत हमको मिला है और बेवफाई भी बहुत हुआ है दोस्तों। और जितने लोग बेवफाई के रास्ते से गुजरा है वो सब के लिए यहाँ पर हम कुछ बेवफा का शेर लेकर आया है और एक गीत भी लाया है। कहते हैं फिर से तेरे महफिल में चला आया हूँ, फिर से तेरे महफिल में चला आया हूँ, अंदाज वही है, अंदाज वही है, बस अल्फाज नया लाया हूँ, भूल तो जाऊं तुझे दोस्तों। और कहते हैं भूल तो जाऊं तुझे पर मेरे पास रहेंगे क्या कुछ, यानी कि बेवफाई का हम आपको शेर सुनाते हैं कि कितनी लोग बेवफा के रास्ता से भी गुजरा है, ठोकर लगा है, दिल टूट गया है, वो सब के लिए भी यहाँ पर हमने कुछ रखा है। अब जुदाई का सफ़र को मेरे आसान करो, अब जुदाई का सफ़र को मेरे आसान करो, तुम मुझे ख्वाब में आकर ना परेशान करो, तुम मेरे ख्वाब में आकर और ना परेशान करो। और तो क्या था बेचैनी के लिए अपनी आंखों के ख्वाब बेच आई है हमने। तो दोस्तों ये सब एक हम एक दो बेवफाई का गीत आपको हम सुनाते हैं, आओ सुना जाए।

और तेरा मासूम चेहरा भूल जानी को काबिल नहीं है। और दोस्तों मोहम्मद अजीज ने इस गीत को गाया है और कहते हैं, कुछ ऐसा हंसने भी जिंदगी में होता है, कुछ ऐसा हादसा भी जिंदगी में होता है कि इंसान बच तो जाता है मगर जिंदा नहीं रहता है। दोस्तों ये तो भी कभी कभी बात होता है ना कि प्यार में अब ये शामिल करना है, वो सच कहना है, वो सच कहे ना कहे हम अतबार करना है। तो ये सब बात है दोस्तों। इस गीत जो है, इस गीत को इस फिल्म में सुनील दत्त और माला सिन्हा ने काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए।

दोस्तों बारिश बन जाना कुणाल वर्मा का गाया हुआ ये सॉन्ग है और प्यार भरी मोहब्बत का पैगाम यहाँ से हम और आपके कानों तक पहुँचाते हैं। दोस्तों आप लोग को जैसे मालूम है फिर भी हम बता देते हैं, ये है रेडियो फाहोन। हमारा पता है न्यूटन स्ट्रैट नंबर 520। हम सिर्फ देहाबी प्लस रेडियो पे, आप हमारा फ्रिक्वेंसी है 95.3 आप इसको फॉलो कर सकते हैं, सुन सकते हैं और वो है www.fahon.nl पर। और हम चलते हैं, मंजिल तो एक होंगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। मंजिल तो एक होगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। तलाश खत्म हो जाएंगी मेरा, तलाश खत्म हो जाएंगी मेरी जब तेरी लबों पर मेरा नाम होगा। दत्वासलमो ये है दोस्तों कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती। अगर जब आप दूर हो, आपकी चाहने वाले दूर हो, तो आप इसको जरूर अपने चाहने वालों को सुनाना कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती, बस तेरे पास आने को मेरा जी चाहता है। टूट कर सारी दुनिया की रस्मों रिवाज को तुझे अपना बनाने को जी चाहते हैं। और प्यार की बातें तो करना हमारा काम है। चिरागों में इतना नूर ना होता तो तन्हा दिल मजबूर ना होता। हम आपसे मिलने जरूर आते अगर आपका घर इतना दूर ना होता। तो हम चलते हैं, छाया है यो दिल पे क्या नशा है, दिल है तुम्हारा कविता कृष्णमूर्ति का ये सॉन्ग है, आओ मिलकर हम सब सुना जाए।

0: और कृष्णा मूर्ति, कविता कृष्णा मूर्ति शान का गया हुआ गीत है। छाया है और ये छाया है जो दिल पे क्या नशा है। और कुछ आज हम नई पुराने गीतों से आपको हम आज सेवा करेंगे दोस्तों। कि कहते हैं उनका गुस्सा, उनका गुस्सा और मेरा प्यार, उसका गुस्सा और मेरा प्यार एक जैसा है, क्योंकि ना उसका गुस्सा कम होता है और ना मेरा प्यार कम होता है। हमारे सुनने वालों, और गुस्सा में तो प्यार करना भी आता है और कभी प्यार में गुस्सा करना भी आता है। कि कहते हैं हमसे दूर होकर हमारी पास हो तुम, हमसे दूर होकर, हमसे दूर होकर हमारे पास हो तुम, हमारी सुनी जिंदगी के आस हो तुम। कौन कहता है हमसे बिछड़ जाएंगे हो तुम, हमारी हमारी यादों में हमारी साथ तुम हो और सदा साथ ही रहेंगे। और ये सिर्फ लफ्ज कह सकते हैं दोस्तों। कि कहते हैं जब बारिश के मौसम आते हैं तो बारिश में और अपने चाहने वाले को याद करते हैं लोग, क्योंकि अकेले महसूस होता है। और खास करके विंटर के महीना में कि ये बारिश का मौसम बहुत तड़पता है, ये बारिश का मौसम बहुत टपट्टा है, वो बस मुझे ही दिल से चाहता है, लेकिन वो मिलने आ भी तो कैसे आवे दोस्तों। उसके पास ना कोई गाड़ी है और ना कोई छाता है। हम चलते हैं कुणाल वर्मा के ओर, रिमझिम से ये सावन। अगर जब हम मौसम की ओर बढ़ते हैं तो रिमझिम का ये सावन और बारिश का, तो ये दोनों तो साथ में चलता है ने हमारे दोस्तों। आओ चला जाए।
1: बचाने तू मुझे, क्यों बचाया?
2: अरे तुम पागल हो गई हो?
1: वो कहता था प्यार करता हूँ, शादी के मंडप से भाग गया साला।
2: तो ये प्रॉब्लम है। ओके बाबा सॉरी।
0: सॉरी बोलने में आप मत चूक जाना।
2: ट्रेन 6 घंटे में यहाँ वेट।
0: एक सॉरी से और क्या क्या काम न बन जाते हो दोस्तों।
2: प्रॉमिस।

और दोस्तों ये रिमझिम ये सावन रिमझिम नौ यानी कि जुबेन नौतियाओ और दीक्षा सिंह का कुणाल वर्मा का गाया हुआ सॉन्ग है कि कहते हैं दिल में हो आप तो कोई और खास कैसे होगी। दोस्तों जब अगर किसी से आप प्यार करते हैं तो आप ये शेर जरूर उसको सुना देना कि दिल में हो आप तो कोई और खास कैसे होंगे, यादों में आपकी शिवा कोई पास और कैसे होंगे। और वो भी कहते हैं कि वो जो हमारे लिए कुछ खास होता है, वो जो हमारे लिए कुछ खास होता है, जिनके लिए दिल में एहसास होता है, चाहे वह कितना भी दूर कर जाए, चाहे वह कितना भी दूर कर दे, दूर रह के भी वो दिल के पास ही रहता है। हमारे प्यारे सुनने वालों और कभी प्यार करने वालों को रास्ते में कभी रुकना नहीं, यानी कि प्यार का जो यानी कि उसका स्नेल है तो दोस्तों बहुत लंबा होता है कि कहते हैं कि प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं, प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं। मैं भी कल चल के देखा है हमारे दोस्तों, मुझे तो रास्ता ठीक ही लगा है। और हम चलते हैं संजना इस लव मैं प्रेम की दीवाना हूँ एक रोमांटिक सॉन्ग फन कृष्णा कुमार कन्नाथ का ये सॉन्ग है।

और संजना आई लव यू, संजना आई लव यू हम नहीं कहते दोस्तों, आप अपना संजना को कह सकते हैं। और ये गीत है मैं प्रेम की दीवाना हूँ, रोमांटिक लव सॉन्ग फन कृष्णा कुमार कुनाथ का और काश चित्रा का ये सॉन्ग है। और दोस्तों कहते हैं वह कितना भी बदल जाए मेरे मोहब्बत कभी नहीं बदलेंगे, ये हमारा पैगाम है। दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो दोस्तों, दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो, पास रहकर कोई रिश्ता खास नहीं होता। तुम मेरे दिल के इतने करीब हो कि मुझे दूरियों के एहसास नहीं होता। कि कहते हैं जुल्फों पे फूलों को सजा कर रखना, जुल्फों पर फूलों को सजा के आए, चेहरे से दुपट्टा उठा के आए, किसी ने पूछा आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो, हमने कहा शायद आज नहा कर आई हो। तो दोस्तों हम चलते हैं, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है। और सिद्धरात मन मल्होत्रा का ये सॉन्ग है, निहा शर्मा का गाया हुआ सॉन्ग। आज आप लोग को कुछ नए गीतों के सॉन्ग हम आज आप लोग को सुनाते दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए।

प्यार तो हमें भी इस गीतों से होने लगा है दोस्तों, और नेहा शर्मा का गाया हुआ ये गीत है, और हम चलते हैं कुछ प्यार भरी और कुछ शायरी की ओर। कहते हैं बहुत लकी हूँ मैं क्योंकि बहुत नसीब वाला हूँ मैं क्योंकि आपके साथ जो मिला है मुझे, और कहते हैं मिलना इफ्तिता

अरे दोस्तों, मिलना इत्तेफाक था, बिछड़ना नसीब था। वो उतना ही दूर चला गई जितना करीब था। हम उसके देखने के लिए तरस रहते थे। हमारे यारो, जिस शख्स ने हथेली पे हमारा नसीब था, जिस शख्स की हथेली पे हमारा नसीब था। और कभी कभी जब उम्र जब बढ़ते हैं तो उम्र के साथ ही चलना चाहिए, कि कहते हैं उम्र की राह में जय बात बदल जाती है, वक्त की आंधी पे हालात बदल जाती है। सोचा था हूं काम कर कर के रिकॉर्ड तोड़ दूं मैं, कम बखत पैसा ही सलारस ही देख के हर ख्याल बदल जाते हैं। अरे भैया, जब आमदनी कम है तो ख्याल तो अपना बदलना चाहिए। हम जाते हैं अरिजीत सिंह, श्रिया घोषाल के ओर, शाहरुख खान और दीपक का इस फिल्म में काम किए हैं, मनवा लागे। फिल्म के नाम है हैप्पी न्यू ईयर, और हैप्पी न्यू ईयर में क्या होने वाला है आप सुनिए।

और मनवा क्या क्या, मनवा कहां कहां ना लागे दोस्तों। फिल्म के नाम है हैप्पी न्यू ईयर ब्यूटीफुल सॉन्ग फन अरिजीत सिंह श्रिया घोषाल का, जिस फिल्म में काम किया शाहरुख खान और दीपिका दोस्तों। और प्यार भरी प्रोग्राम यहां से हमारा चलते हैं रेडियो फाहुल के माध्यम से। हर एक काम के लिए आप हमें तार कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07 3 6 5 20 20 47। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा पता है न्यूटन स्ट्रांड न्यूरो 25 देन हाँ शहर से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं। मोहब्बत भरी प्यार भरी प्रोग्राम हमारा यहां से चलते हैं। मोहब्बत का कोई रंग नहीं है हमारे यारो, मोहब्बत का कोई रंग नहीं है फिर भी वो हसीन है। ये तो वैसे ही है ना भाई कि मोहब्बत का कोई रंग नहीं फिर भी वो हसीन है, उसके सामने दुनिया की हर रंग अरे फिक्का से है दोस्तों। कि मोहब्बत के रंग की तरह खूबसूरत है कि कहते हैं कभी हम मिले तो भी क्या मिले थे, कभी हम मिले तो भी क्या मिले, वही दूरियां वही फासले, ना कभी हमारे कदम बढ़े ना कभी तुम्हारे जियग गई, तुम्हारे यादें गई है हमारे यारो। कि कहते हैं दिल दो तो किसी एक को दो दोस्तों, दिल दो तो किसी एक को दो, अरे वो भी किसी नेक को दो, अगर देना है तो किसी नेक को दो, जब तक मिला नहीं जाए और बस मेहनत करते रहो। हम चलते हैं इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया है, और इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया है। लव सॉन्ग दर्शन रावल का न्यू सॉन्ग है फन दित्यार मेंस, और हम चलते हैं इस गीत की ओर।

और दोस्तों प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम हमार चलते हैं और कहते हैं कि इस कदर का ये गीत है तुमसे हमें प्यार हो गया है, इस कदर हम तुमसे हमसे और प्यार हो गया है कि कहते हैं पहले वो मेरा दोस्त थी अब जाके मोहब्बत बन चुकी है। कभी कभी दोस्त के भी मोहब्बत हो जाते हैं कि पहले वो मेरी दोस्त थी अब जाके मोहब्बत बन चुकी है। पहले सिर्फ उसे याद करती थी और अब तो आदत बन चुका है। हमारे यारो रेडियो फाउन के माध्यम से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं कि कहते हैं धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, इन सजी महफिल के बहार हो तुम, तरसती हुई निगाहों का इंतजार हो तुम, मेरे जिंदगी का पहला प्यार हो तुम। हम चलते हैं अनुराधा पौडवाल की ओर और सोनू निगम की ओर। आपकी याद आई तो दिल क्या करे।

और आपकी याद आई तो दिल क्या करे, माना कि तुम्हें थोड़ा परेशानी करते हैं, लेकिन प्यार भी सबसे ज्यादा तुझे तो ही करते हैं। खुद भी रोता है और मुझे भी रुला देता है, ये बारिश का मौसम उसके याद दिलाते हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों, दोस्तों हम जाते हैं वादा रहा सनम, आई लव यू फिल्म के नाम है खिलाड़ी, इस गीत को गाया है अभिजीत भट्टाचार्य एंड अलका याग्निक। आओ मिलकर सुना जाए इस सॉन्ग।

फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 9735 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी।

और ये गीत है और ये है फिल्म सॉन्ग का नाम है प्रेम की नैया और फिल्म का नाम है अजब प्रेम की गजब कहानी, अजब प्रेम की गजब कहानी के ये गीत है, आओ मिलकर सुना जाए।

और प्रेम की नैया है और राम के भरोसे। दोस्तों कुछ रीमेक सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाएंगे और प्रेम की नैया के बाद हम क्या लेकर आएंगे, बस सुनते रहो। Full hot one.

और मुन्ना मुन्ना मुन्ना मुन्ना गोरा रंगड़ी की और दीवाना हो गया हमारी दोस्तों। और हम चलते हैं रिमेक सॉन्ग और रिमेक सॉन्ग की ओर हम चलते हैं फुल डांस एंड हॉट वन।

ओहो, फुल रीमिक सॉन्ग आज हम लोग को आपको हम सुनाएंगे, एक और हो जाए।

0: मिक्स बाय डीजे तोनमोय।
1: एंड दोस्तों आज हम रिवेक्स के मोड में हैं, औजरगेस के मोड में हैं, तो आपको हम सिर्फ रिमेक्स ही रिमेक्स आपको सुनाएंगे हमारे यारो। उसके बाद में हम चलते हैं एक और जोन की ओर, आओ सुना जाए ये क्या है।

और तुवनारी और कौन है खिलाड़ी, ये कौन सा सॉन्ग है, रीमिक्स सॉन्ग है जो रेडियो फोन के माध्यम से आप लोग को हम आज छुमाते हैं, नचाते हैं, आओ सुना जाए।

En beste luisteraar, Aantje Remix के मोड़ में है, आज Remix के मोड़ में है, तो आपको आज छुमाएंगे, नचाएंगे, सजाएंगे, जानी है हमारा नाम।

और छोड़ दिए हमने, सारी दुनिया तेरे लिए है। और उसके बाद हम चलते हैं और आगे को अपना फुल रिमिक्स सॉन्ग लेकर हमारे दोस्तों। तो हम चलते हैं, आज रिमिक्स के मूड में हम हैं और रिमिक्स के मूड में हैं तो हम क्या लेकर आते हैं, आओ सुना जाए।

और विजाओं ही विजाओं। और देखा जाए तो आज हम आप लोग को कुछ रिमिक्स सॉन्ग सुनाएंगे और कुछ शायरी आज नहीं होगा लेकिन सिर्फ सिर्फ रिमिक्स हॉट वन। नाचने के मूड में हो तो आप नाच सकते हैं, झूम सकते हैं हमारे यारों।

0: DJ Saran.in
1: हम किसी दूसरे की अमानत है।
2: नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो, और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया।
3: हाँ, और समझो हम दोनों की प्यार के बीच में कोई आया तो वो समझो कि वो मर गया है।

और जीना दुश्वार हो गया है। तो आज रिमिक्स के मूड में है मेरे दोस्तों, आप लोग जानते हैं आज हम रिमिक्स के मूड में हैं। तो हम फिर एक रिमिक्स सॉन्ग के और हम जाते, तो हम चलते हैं एक सॉन्ग के ओर।

0: और दिल देना ही पयाए और दिल लेना ही पयाए। तो हमारे दोस्तों हम चलते हैं अगला गीत की ओर, आओ मिलकर सुना जाए ये कौन सा गीत है हमारे सुनने वालों। अनहिट सुपर सॉन्ग फॉर नहीं खती नहीं खनते रोमांटिक सॉन्ग
1: सर की जो सर से वो धी
0: द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार जानू मेरे महबूबा सॉन्ग दिनेश।

और तेरी चुनरिया दिल ले गई 90 का ये यानी कि हिट बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग जो आप लोग को हम सुनाते हैं। तो अगला गीत की ओर हम जाते हैं, रोमांटिक फुल सॉन्ग है और तेरी चुनरिया के बांध में हम जाते हैं। देखा तुझे तो क्या होता है, क्या होता है, दिल में कुछ मजलता है।

मालूम तुझे तो मिट ना जाए। और दोस्तों और अगला नई खंती का रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग, यहां से जॉनी नंबर वन का प्रोग्राम हम चलाते हैं।

और क्या है हमारे यारो लवर्स के लिए बॉलीवुड सॉन्ग्स वन नेकम तक रोमांटिक सॉन्ग है जो आप लोग को लिए हम चलाते हैं राजा हिंदुस्तानी।

जी करे देखता रहूं, इतना प्यारा तुझे कौन बनाया है? रब ने बनाया है हमारे यारो। ये जो रोमांटिक सॉन्ग है बॉलीवुड नई घंटक का, आप सुनिए।

और जाती हूँ मैं और धड़के जिया, तो ये सब बात तो होता ही रहते हैं। तो मूवी का नाम है कोबरा गिल, मैथ मुकेश का ये सॉन्ग है।

0: और नजर को संभालो, ये क्या हो रहा है? है और ये गीत जो है, मैं हरदम किसी को और वो ढूंढता है, फिल्म के नाम ही रास्ता, रास्ते का पत्थर, जिसमें अमिताभ बच्चन ने काम किए ही, सिंगर इसमें मुकेश एंड आशा भोसले।
1: मैं हरदम किसी को ढूंढता हूँ, मुझे

और मैं हरदम किसी को ढूंढता हूँ और किसी को खोजता हूँ। दोस्तों एक रोमांटिक सॉन्ग के ओर है।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 7 3 2 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

राहत भी अपनों से मिलती है और चाहत भी अपनों से मिलती है। अपनों से कभी रूठना नहीं, क्योंकि मुस्कुराहट भी अपनों से मिलती है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं फिर आप सबके लिए प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ, जिसका नाम है स्वप्न विज्ञान। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार।

सुनने वालों, आज मैं आपको बताऊंगी पशु पक्षी शकुन विचार। यानी पशु पक्षी जब दिखाई देते हैं तो कैसे शकुन होते हैं। कीट पतंग आदि पर शकुन। यदि कीट पतंग वृक्ष आदि से निकले तो अनावृष्टि। यानी कि सुनने वालों, कीट पतंग जैसे लाइट वगैरह के ऊपर आपने देखा होगा, एक मच्छर मॉस्किटो ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। अगर वो हमें किसी वृक्ष में से निकलते दिखाई दिए तो उसका मतलब है कि वो अच्छी बात नहीं होती। चींटियों पर शकुन। यदि चींटियाँ सिर के ऊपर वाले छत के भाग से निकलें तो शीघ्र ही धन संपत्ति भोग सामग्री की प्राप्ति। सुनने वालों, यदि चींटियाँ हमें छत के ऊपर से निकलती दिखाई दें तो उससे हमें धन की प्राप्ति होती है। धृत पात्र में घुसकर आहोरात्रि वही रहे। धन नाश चोरी। लाल घर के ऊपर से निकले, चोरी भय प्राण भय। चावलों में से निकले, धन की वृद्धि। काली कोशा ग्रह से निकले, धन की अत्यंत वृद्धि। अधिक सीलन या भूसे आदि से चींटियां निकले तो फल रहित। काली अंडे रहित वर्षा का आगमन। उत्तर दिशा से चींटियां निकले तो सुख देने वाली। पूर्व दिशा से चींटियां निकले 12 घंटे तक भय रत। दक्षिण दिशा से चींटियां निकले तो लाभ। पश्चिम दिशा से चींटियां निकले धन संपत्ति का लाभ। अग्नि कोण दिशा से चींटियां निकले 12 घंटे तक अग्नि भय। वायु दिशा से चींटियां निकले ईंधन की प्राप्ति। ईशान दिशा से चींटियां निकले लड़ाई की सूचक।

अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। कान खजूरा संबंधी शकुन। किसी कार्य वंश घर में जाते समय बाईं ओर से मिल जाए तो शुभ होता है, चलते समय दाईं ओर से मिल जाए तो हानिकारक, लड़ाई झगड़ों और गृह क्लेश का कारण होता है। मार्ग में चलते समय रास्ता काटे बिल्ली से ज़्यादा हानि होती है। किसी प्रकार सिर पर चढ़ जाए तो अत्यंत कष्ट होता है। सुनने वालों, कान खजूरा वो है जानवर कि जो कान के अंदर घुस जाता है। अब डच में क्या कहते हैं वो मेरे को नहीं पता,

सर्प संबंधी शकुन, यदि सर्प दिखाई दे यानी कि सांप अगर दिखाई दे तो उसके क्या शगुन होते हैं। किसी भी कार्य से जाते समय अगर सांप मिल जाए या सांप दिख जाए तो अशुभ और वापस लौट जाना चाहिए। बाईं ओर दिखाई दे तो अशुभ है। मार्ग में काला नाग दिख जाए तो वो भी अशुभ है। नाग नागिन का जोड़ा दिख जाए तो धन गड़ा होना, तो उसका मतलब है हम जिसको नाग नागिन का जोड़ा दिखाई दे तो उनके धन की प्राप्ति होगी। ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ अगर सांप दिखाई दे तो उच्च पद प्राप्ति होगी। फन को ऊंचा करके बैठा हुआ सांप मिल जाए अत्यधिक शुभ होता है सुनने वालों।

भौरा संबंधी शकुन। सुनने वालों, भौरा वो होता है जो लकड़ी के घर में अपना घर बना के रहता है, और अगर हम उसको वहाँ से हटाएंगे तो वो हमारे ही पीछे पड़ जाता है, और कई बार इतना ज़ोर से डंक मारता है कि उसके डंक में जहर होता है और उसका असर बहुत बुरा होता है, और उसी का है भौरा संबंधी शकुन। यदि यात्रा समय या गृह कार्य समय भौरा मिल जाए तो बाईं ओर किसी फूल पत्ते पर बैठा हो शुभ शकुन। अगर भौरा किसी फूल और पत्ते पर बैठा हो तो उसका शुभ शकुन होता है। बाईं ओर आ जाए हितकर तो उसका बुरा शकुन होता है। सामने घूमता दिखे भौरा, अगर हमारे सामने उड़ता हुआ दिखाई दे तो बहुत लाभदायक होता है। फूलों पर घूमता दिखाई दे तो कष्टकारी होता है।

मधुमक्खी संबंधी शगुन। मधुमक्खी को तो आप सब जानते हैं सुनने वालों, होनिंग बाइट यानी जो शहद बनाती है, होनिंग बनाती है, अगर वो दिखे तो उसके क्या असर होते हैं। यदि मधुमक्खी सामने दिखाई दे तो ठीक नहीं है, बाईं ओर दिखाई दे तो शुभ धन लाभ मिलता है सुनने वालों, दाईं ओर से मधुमक्खी दिखाई दे तो परिश्रम पर पानी फेर दे, जितने भी हमने मेहनत की है उस पर सब पानी फेर देती है। यदि पीठ पीछे दिखाई दे तो हानिकारक होती है, लौटते समय दाईं ओर दिखाई दे शुभ आहार प्राप्ति तो हमें शुभ समाचार मिलते हैं और अच्छा खाने की प्राप्ति होती है सुनने वालों।

अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों, चकवा संबंधी शकुन। चकवा एक पक्षी का नाम है सुनने वालों, और वो कैसा दिखता है, कैसा रंग है, वो आप लोगों को ढूंढना चाहिए। चकवा यदि उड़ता हुआ दिखाई दे तो हानिकारक होता है, कई एक साथ बैठे हुए दिखाई दे तो अत्यंत सुख प्राप्ति होती है। यदि चकवा का जोड़ा दिखाई दे, नर और मादा, तो समृद्धि का घातक। जोड़ा अति स्वर करे शुभ नहीं। यदि चकवा नर और मादा दोनों ऊंचे स्वर में गाएं कुछ तो अशुभ होता है, वो शुभ नहीं होता सुनने वालों।

चील संबंधी शगुन। चील को तो आप सब जानते होंगे सुनने वालों, एंगल्स में उसको ईगल कहते हैं। यदि चील घर से चलते समय या घर में घुसते समय दिखाई दे, चील बोले सुख की प्राप्ति। मुंह में रोटी आदि लिए दिखे, अन्न भंडार भरे। लौटते प्रवेश समय बोले धन लाभ। घर पर आकर बैठ जाए या मंडराए अशुभ। सुनने वालों, यदि चील जोर जोर से चिल्लाती है तो इसका मतलब है कि सुख की प्राप्ति होगी, और वो मुंह में रोटी लिए हुए हमें दिखाई देती है तो हमारे अन्न के भंडार भरे रहेंगे। और यदि हम घर में प्रवेश करते हैं और वो बोले तो धन लाभ मिलता है, और घर पर आकर ऊपर बैठ जाए या मंडराए तो वो अशुभ माना जाता है। सुनने वालों,

उल्लू संबंधी शकुन। यदि उल्लू बोले, यात्रा पर जाते समय रात्रि समय अत्यंत अशुभ। दाईं ओर से उल्लू बोले अत्यंत अशुभ, बाईं ओर से उल्लू बोले अत्यंत शुभ। किसी के घर पर बोले अशुभ अनिष्टाकारी। दिन में उल्लू बोले अनिष्टाकारी, जाते समय हूँ हूँ करे अशुभ, जाते समय की ओर की देखे शुभ, पीठ के पीछे चले इच्छित फल प्राप्त होता है। सुनने वालों, आप तो सब जानते हैं कि उल्लू जो है पक्षी, वो दिन में सोता है और रात में जागता है। अगर कोई ज़्यादा सोए तो उसे हम कहते हैं क्या उल्लू की तरह सो रहा है, तो वो उसके सारे जितने भी कार्य हैं सब ज़्यादातर अशुभ भी माने जाते हैं। बस एक कार्य है कि अगर पीठ के पीछे चले तो इच्छित फल की प्राप्ति होती है। सुनने वालों,

बगुला संबंधी शकुन। घर पर जाते समय बैठा दिखाई दे तो सामान्य फल की प्राप्ति होती है। बैठा हुआ बोल रहा हो तो कष्टकारी होता है। साधारण उछल कूद करे तो लाभकारी होता है। यात्रा समय ऊंची उड़ान भरे बहुत ही शुभ माना जाता है। सुनने वालों, बायां पैर ऊपर उठाता मिले इच्छित धन प्राप्ति होती है। अपने ही देह को निहारे यानी अपने ही शरीर को देखे स्त्री संपत्ति का लाभ। बार बार प्रवासी को देखे उसकी सारी बाधाओं को हर ले यानी कि जो बाहर से घूमने वाले लोग आते हैं अगर उनको देखे तो उनकी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं।

अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। सारस संबंधी शगुन। सारस भी एक पक्षी का नाम है, अगर वो दिखाई दे तो कैसे शगुन होते हैं। अगर सारस पक्षी मार्ग में दिखाई दे तो मेल मिलाप होता है। यदि दोनों पक्षियों का नर और मादा जोड़ा दिखाई दे तो सर्व सुख संपत्ति प्राप्त होती है। दाईं ओर से बोले अशुभ माना जाता है, बाईं ओर से बोले शुभ श्रेष्ठ माना जाता है। सम्मुख बोले तो राज सम्मान मिलता है। सुनने वालों, तोता संबंधी शगुन। तोता यदि घर से चलते समय तोता दाईं ओर होकर बोले तो शुभ माना जाता है, बाईं ओर होकर बोले तो भय और संकट माना जाता है। सामने क्रूर वाणी बोले तो अशुभ बंधन में माना जाता है। सुनने वालों, तोता यानी पापा खाई

मुर्गा संबंधी शगुन, इसको तो आप सब लोग जानते हैं। घर से जाते समय यदि मुर्गा देहरी पर चढ़कर बोले, यानी घर की दीवार के ऊपर चढ़कर बोले, तो बहुत लाभकारी होता है सुनने वालों। बाईं ओर से दाईं ओर आ जाए तो शुभ माना जाता है। सामने हो और बोले अधिक लाभ मिलता है सुनने वालों। दाईं ओर रहे शुभ माना जाता है, बाईं ओर रहे अशुभ माना जाता है। यदि मुर्गा हमारी पीठ पीछे बोले तो अधिक हानिकारक, शत्रु भय, प्राण भय, उस दिन घर से ना निकलें सुनने वालों। स्वाभाविक से अन्य स्वरों में अगर मुर्गा बोले तो क्लेश कारक होता है। सायंकाल घर लौटते समय बोले, अगर शाम को हम घर लौटते हैं तो अधिक कष्टकारी, परंतु जोड़ा प्रेमरत दिखाई दे तो इच्छित भोगों की प्राप्ति होती है सुनने वालों। प्रत्येक पहर में अगर मुर्गा बोले तो अशुभ माना जाता है।

रिश्ता टूटे डार से कि ले गए पवन उड़ाए, यारी बिछुड़े यार से ये दुख हमसे सहा न जाए।

सुनने वालों, ये जो गीत अभी आपने सुना ये सुरीनाम के एक मशहूर कलाकार श्रीमान रामदेव चेतू जी की आवाज़ में था। अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों, गौरैया संबंधी शगुन। गौरैया भी एक पक्षी का नाम है सुनने वालों। यदि इसकी ध्वनि हमें चींची दिन में सुनाई दे तो उसके क्या असर होते हैं, क्या परिणाम होता है। दिशा में, यदि पूर्व दिशा में और प्रथम पहर में इसकी आवाज़ सुनाई दे तो राज्य में सम्मान मिलता है। यदि दूसरे पहर में इसकी आवाज़ सुनाई दे तो अमोद प्रमोद होता है। यदि तीसरे पहर में गौरैया की आवाज़ सुनाई दे तो मित्र मिलन होता है, कि मित्रों से मिलन होता है। चौथे पहर में आवाज़ सुनाई दे तो व्यापार में लाभ मिलता है। और पूर्व दक्षिण में अगर गौरैया की हमें आवाज़ सुनाई दे तो प्रथम पहर में अगर सुनाई दे तो आग से हानि और भय होता है। दूसरे पहर में सुनाई दे तो व्यापार में लाभ मिलता है सुनने वालों।

दक्षिण दिशा में अगर गौरैया हमें उसका स्वर सुनाई दे तो प्रथम पहर में सुनाई दे तो जुए से धन की हानि होती है, दूसरे पहर में स्वर सुनाई दे तो व्यवसाय में वृद्धि मिलती है, तीसरे पहर में स्वर सुनाई दे तो प्रियजन में लाभ होता है, चौथे पहर में अगर स्वर सुनाई दे तो सुख वृद्धि होती है सुनने वालों।

तक दक्षिण पश्चिम दिशा में गौरैया का स्वर सुनाई दे, अगर प्रथम पहर में सुनाई दे तो सुख में वृद्धि मिलती है सुनने वालों, दूसरे पहर में सुनाई दे तो राज द्वारा सम्मान मिलता है, तीसरे पहर में अगर इसका स्वर सुनाई दे तो अप्रत्याशित समाचार मिलता है, अगर चौथे पहर में सुनाई दे तो मूल्यवान वस्तु मिलती है, और पश्चिम दिशा से अगर इसका स्वर सुनाई दे, अगर प्रथम पहर में सुनाई दे तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, दूसरे पहर में सुनाई दे तो चोरों से भय होता है, तीसरे पहर में अगर सुनाई दे तो लाभ की संभावना होती है, चौथे पहर में अगर गौरैया का स्वर सुनाई दे तो अप्रिय समाचार से गहरा अफसोस होता है सुनने वालों।

सुनने वालों, अब मैं आपको बता रही थी गौरैया पक्षी के बारे में। वो एक चिड़िया जैसी लगती छोटी सी, और बाकी आपको खोजना है कि वो कैसी दिखाई देती है और उसका रंग कैसा है। अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। पश्चिम उत्तर, यदि गौरैया चिड़िया हमें पश्चिम और उत्तर में दिखाई दे, तो अगर प्रथम पहर में दिखाई दे तो संकट का सामना करना पड़ता है। दूसरे पहर में दिखाई दे तो धन की प्राप्ति होती है। तीसरे पहर में अगर हमें गौरैया पक्षी दिखाई दे तो सम्मान प्राप्ति होती है। चौथे पहर में अगर दिखाई दे तो शत्रु से झगड़ा होता है सुनने वालों। और अगर उत्तर दिशा में दिखाई दे, अगर प्रथम पहर में दिखाई दे तो बुरा शगुन होता है। दूसरे पहर में दिखाई दे तो पति पत्नी में क्लेश झगड़े होते हैं। तीसरे पहर में दिखाई दे वस्त्र आभूषण की हानि होती है। अगर चौथे पहर में दिखाई दे तो मृत का समाचार सुनने को मिलता है सुनने वालों।

गौरैया पक्षी अगर उत्तर पूर्व दिशा में हमें दिखाई दे, प्रथम पहर में दिखाई दे, तो चोर चोरी करता पकड़ा जाए। दूसरे पहर में दिखाई दे तो निराशाजनक समाचार मिलता है सुनने वालों। तीसरे पहर में अगर दिखाई दे तो आग से हानि होती है सुनने वालों। अगर चौथे पहर में हमें ये पक्षी दिखाई दे तो यात्रा की संभावना बनती है।

कबूतर कपोत, यदि इसकी गुटर गू दिन में सुने तो क्या होता है सुनने वालों? पूर्व दिशा में प्रथम पहर में सुनाई दे तो धन का लाभ होता है सुनने वालों। दूसरे पहर में सुनाई दे तो आग से भय होता है। तीसरे पहर में सुनाई दे तो शीघ्र ही विवाह होता है सुनने वालों। अगर चौथे पहर में इसकी गुटर गू सुनाई दे तो बाधाएं पीड़ित करती हैं सुनने वालों। पूर्व दक्षिण दिशा में अगर इसकी गुटर गू सुनाई दे, प्रथम पहर में सुनाई दे तो व्यवसाय में वृद्धि होती है। दूसरे पहर में सुनाई दे स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होता है। तीसरे पहर में इसकी गुटरगू सुनाई दे तो शत्रुओं का नाश होता है। चौथे पहर में अगर इसकी आवाज़ सुनाई दे तो शुभ समाचार मिलता है सुनने वालों।

सुनने वालों, मैं आपको बता रही थी कबूतर हिंदी में कहते हैं, कपोत संस्कृत में कहते हैं, और सुरिनामी भाषा में दोइफी कहते हैं। तो अगर उसकी गुटरगू हमें दिन में सुनाई दे तो उसके क्या परिणाम होते हैं सुनने वालों। अब हम आगे चलते हैं। यदि दक्षिण दिशा में इसकी गुटरगू सुनाई दे, अगर प्रथम पहर में सुनाई दे तो अप्रत्याशित धन लाभ, दूसरे पहर में सुनाई दे खतरे की संभावना, तीसरे पहर में सुनाई दे अप्रिय घटना की संभावना, चौथे पहर में अगर इसकी आवाज़ सुनाई दे तो शुभ समाचार। यदि दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर इसकी आवाज़ सुनाई दे, प्रथम पहर में सुनाई दे शारीरिक पीड़ा, दूसरे पहर में सुनाई दे कपोतजनन में वृद्धि, तीसरे पहर में अगर इसकी आवाज़ सुनाई दे तो धन अर्जित करेगा, चौथे पहर में अगर इसकी आवाज़ सुनाई दे तो राज्य में सम्मान की प्राप्ति होती है। अगर पश्चिम दिशा में इसकी आवाज़ सुनाई दे तो अगर प्रथम पहर में सुनाई दे आय में वृद्धि होती है, दूसरे पहर में सुनाई दे वाहन खरीदने की संभावना, तीसरे पहर में इसकी आवाज़ सुनाई दे आगे उन्नति की आशा, चौथे पहर में अगर इसकी गुटरगू सुनाई दे तो धन लाभ निश्चित होता है सुनने वालों।

सुनने वालों, अगर उत्तर दिशा में प्रथम पहर में कबूतर की गुटरगों सुनाई दे तो चोरों का भय रहता है, दूसरे पहर में सुनाई दे तो व्यापार में लाभ मिलता है, तीसरे पहर में अगर सुनाई दे तो वाहन की प्राप्ति। सुनने वालों, अगर तीसरे पहर में इसकी गुटरगों सुनाई दे तो हमें कोई गाड़ी कोई भी वाहन प्राप्त हो सकता है, चौथे पहर में नहीं इनकी आवाज़ सुनाई दे तो मुसीबत की संभावना, तो समझो कोई मुसीबत आने वाली है। उत्तर पूर्व दिशा में प्रथम पहर में अगर इनकी गुटरगू सुनाई दे तो मित्र वर्ग में वृद्धि, कि हमारे मित्रों में वृद्धि होती है, दूसरे पहर में अगर इनकी आवाज़ सुनाई दे तो आग का भय, तो आग लगने का भय रहता है सुनने वालों, अगर तीसरे पहर में इनकी आवाज़ सुनाई दे तो राज्य दंड का भय, तो हमें कहीं से कोई भी दंड मिल सकता है, चौथे पहर में अगर इनकी आवाज़ सुनाई दे तो चोरी द्वारा धन हानि, तो हमारे धन की हानि होगी सुनने वालों।

अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। बाज, बाज भी एक पक्षी है सुनने वालों, जो गुरु तेग बहादुर जी थे सिखों के 10वें गुरु, उनके पास हमेशा बाज पक्षी रहता था और पुराने ज़माने में वो जगह जगह संदेश भी पहुंचाया करता था। यदि वह पूर्व दिशा में दिखाई दे, प्रथम पहर में दिखाई दे तो वर्षा में विलंब, तो वर्षा देर से होती है सुनने वालों। दूसरे पहर में दिखाई दे तो राज्य दंड, तो हमें राज्य से दंड मिलता है। तीसरे पहर में दिखाई दे तो शत्रुओं द्वारा कार्यनाश, जो हमारे शत्रु हैं वो हमारे बनते हुए कार्य को भी बिगाड़ देते हैं। अगर चौथे पहर में वो पक्षी दिखाई दे तो अच्छी वर्षा की आशा, तो वर्षा खूब अच्छे से होती है। और अगर दक्षिण दिशा में बाज पक्षी दिखाई दे, अगर प्रथम पहर में दिखाई दे तो सुस्वादु भोजन मिले, कि हमें स्वाद वाला भोजन मिलता है सुनने वालों। अगर दूसरे पहर में दिखाई दे तो रोग हो, तो रोग होने की संभावना रहती है। तीसरे पहर में अगर बाज पक्षी दिखाई दे तो देह पीड़ा, तो हमारे शरीर में दर्द रहता है सुनने वालों। अगर चौथे पहर में हमें बाज पक्षी दिखाई दे तो लंबी बीमारी भोगे, तो हमें कई बार ऐसे रोग हो जाते हैं जो बहुत समय तक चलते हैं सुनने वालों।

सुनने वालों, आज मैं आपको बता रही हूँ कीट पतंग और पक्षियों के बारे में कि जो हमें नुकसान भी होता है और उनसे

ग्रास बने, दूसरे पहर में दिखाई देता है तो धन की हानि होती है सुनने वालों, तीसरे पहर में दिखाई देता है तो संकट ग्रस्त, तो हम पे समझो कोई संकट आने वाला है, चौथे पहर में दिखाई देता है तो धन की प्राप्ति होती है, धन लाभ होता है सुनने वालों। सुनने वालों, अब हमें गीत की ओर बढ़ते हैं और गीत के बाद फिर हम आपके साथ जुड़ जाएंगे।

सुनने वालों, मैंने आपको जो ये पंछी और कीट पतंगों के बारे में बताया है, शायद उसमें से आपको कुछ ज़रूर अच्छा लगा होगा। वाणी और पानी दोनों में छवि नज़र आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नज़र आता है और वाणी मधुर हो तो चरित्र नज़र आता है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

0: वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरुमे देवा सर्वकार्यशु सर्वदा। रुब्ररू मिलने का मौका नहीं पा रहा, अथ शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाहुन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करता हूँ और हम सब यहाँ उपस्थित हो गए हैं कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर। ज्योति का प्रकाश में आज कुछ संदेश रखा जाएगा, जिसमें अनुराधा जी अपना संदेश रखेंगे, बबली जी और शांता जी और मैं खुद भी आपके साथ जुड़ा हूँ। हम अपने कोलेगा साथी शांता जी को आग्रह करेंगे कि अपना एंट्री ले।
1: तो यहाँ से शांता की तरफ से आप सभी को हार्दिक से स्वागत है आज इस ज्योति का प्रकाश के कार्यक्रम में।

0: हमारे दूसरा साथी बबली आसरा जी भी उपस्थित है।
1: हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्या पता कल हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।
0: सुनने वालों, हम वही गीत की ओर बढ़ेंगे जो हर सप्ताह हम सब चलाते आए हैं कि तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डड़े।

0: जी करे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डरे। सुने वालों, हमारे कुलेखा साथी अनुराधा जी भी हमारे साथ टेलीफोन से और जुड़ गए हैं। अनुराधा जी, मैं आपको और जो अर्चनिंग मिला रहे हैं, और आप अपना संदेश रखिए।
1: सुनने वालों को अनुराधा का बहुत बहुत नमस्कार, और मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छी तरह से होंगे। अभी माँ शिवरात्रि का महापर्व मनाया गया। इस दिन फिर से मंदिरों में जगमग जगमग सहस्त्रों ज्योतियां जली, अनहद घंटों की ध्वनि गूंजी, शिवलिंगों पर जल अर्पित हुआ। हर हर महादेव, ओम नमो शिवाय आदि मंत्र गूंजने लगे। इस तरह वातावरण शिवमय हुआ। भोलेनाथ का यह महापर्व हमें केवल भारी ज्योतियां दिखाने, भारी घंटियां सुनाने या केवल भारी मंत्रों का उच्चारण मात्र व जलाभिषेक अर्पित करने के लिए नहीं आता, बल्कि हमें देवाधिदेव महादेव की शाश्वत ज्योति, अनहद नाद और भीतरी अमृत के अनुभव से जोड़ने आता है। यह महाशिवरात्रि का जो पर्व आया, भारी मंदिर की पूजा ही नहीं, अंत जगत के अलौकिक मंदिर का साधक बनाने ही आता है। शिव की महिमा मनाने ही नहीं, बल्कि शिवत्व को जानने और उसमें स्थित त्वच ज्ञान का बोध कराने ही भी आता है। शिवरात्रि में शिव की पूजा की जाती है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। शिव ने सृष्टि के कल्याण, इस दुनिया के कल्याण के लिए ही समुद्र मंथन से उत्पन्न विश्व को अपने कंठ में उतारा और नीलकंठ बन गए। शिव को जो कल्याण करने का भाव है, वही शिव तत्व कहलाता है। शिवोहम का उद्देश्य वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने भीतर इस शिवत्व को धारण कर लेता है, उसे अपने आचार व्यवहार में उतार लेता है। महाशिवरात्रि का जो पर्व उत्सव मनाया गया, उसमें शिव की उपासना तभी सार्थक होती है जब हम दूसरों के कल्याण के लिए विष पीने को तैयार रहें, अर्थात दूसरे के कष्टों के निवारण व सहयोग के लिए तत्पर रहें, हमेशा तैयार रहें, दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहें। इसी तरह हम शिव तत्व प्राप्त कर सकते हैं और शिव के आशीर्वाद के हकदार बन सकते हैं। असल की यही शिव की सही उपासना इसी को मानी जाती है। तो फिर आइए हम सब मिलकर त्याग व कल्याण के पवित्र भाव के साथ, ये हर समय शिवरात्रि के समय शिव की आराधना इसी प्रकार सच्चे दिल से किया करें, क्योंकि सही मायने में कल्याण व त्याग के भाव से ही तो शिव प्रसन्न होंगे। भगवान शिव ने देवी पार्वती को समय समय पर कई ज्ञान की बातें बताई हैं, जिनमें मनुष्य के सामाजिक जीवन से लेकर पारिवारिक और वैवाहिक जीवन की बातें शामिल हैं। भगवान शिव ने देवी पार्वती को 5 ऐसी बातें बताई थीं जो हर मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, जिन्हें जानकर उनका पालन हर किसी को करना ही चाहिए। चलिए जानते हैं ये कौन सी 5 बातें हैं जो इतनी महत्वपूर्ण हैं। क्या है सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पाप? तो पहली बात यही है, प्रश्न यही है, क्या है सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पाप, क्या होता है? देवी पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा धर्म और अधर्म मानी जाने वाली बात के बारे में बताया है। भगवान शंकर कहते हैं, तो जो श्लोक उन्होंने बोला, नास्ति सत्यात् परो नान्त तात् पातं परम। उन्होंने अर्थ इसका मतलब यह है, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना या सत्य का साथ देना, और सबसे बड़ा अधर्म है असत्य बोलना या उसका साथ देना। इसीलिए हर किसी को अपने मन, अपनी बातें और अपने कामों को शामिल करना चाहिए जिनमें सच्चाई हो, क्योंकि इससे बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। असत्य कहना या किसी भी तरह से झूठ का साथ देना मनुष्य की बर्बादी का कारण बन सकता है। तो चलिए जाने कि ये दूसरी बात कौन सी है। दूसरी बात यह है, काम करने के साथ इस एक और बात का रखें ध्यान। तो कौन सी बात है और जो श्लोक क्या है? श्लोक का है, श्लोक इस प्रकार है, आत्म साक्षी भवे नित्य मात मनुस्तुति तु शुभा शुभे। अर्थात मनुष्य को अपने हर काम का साक्षी यानी गवाह खुद ही बनना चाहिए, चाहे फिर वह अच्छा काम करे या बुरा। उसे कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि उसके कर्मों को कोई नहीं देख रहा है। कई लोगों के मन में गलत काम करते समय यही भाव मन में होता है कि उन्हें कोई देख नहीं रहा है, और इसी वजह से वे बिना किसी भी डर के पाप कर्म करते जाते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। मनुष्य अपने सभी कर्मों का साक्षी खुद ही होता है। अगर मनुष्य हमेशा यह एक भाव मन में रखेगा तो वह कोई भी पाप कर्म करने से खुद ही खुद को रोक लेगा। चलिए जानते हैं ये अब तीसरी बात कौन सी है। तो तीसरी बात यह है, कभी ना करें ये तीन काम करने की इच्छा। ये कौन से काम करने की इच्छा बात की जाती है? तो श्लोक ऐसे जाता है, मनसा कर्मणा वाचा नच काण क्षेत्र पात कर्म। अर्थात इसका अर्थ यह है, आगे भगवान शिव कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को मन, वाणी और कर्मों से पाप करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा काम करता है उसे वैसा फल भोगना ही पड़ता है। यानी मनुष्य को अपने मन में ऐसी कोई बात नहीं आने देना चाहिए जो धर्म ग्रंथों के अनुसार पाप मानी जाए, जो सही ना हो। ना अपने मुंह से कोई ऐसी बात निकालनी चाहिए और ना ही ऐसी कोई काम उन्हें करना चाहिए जिससे दूसरे को कोई परेशानी या दुख पहुंचे। पाप कर्म करने से मनुष्य को ना सिर्फ जीवित होते हुए इसके परिणाम भोगना पड़ते हैं, मरने के बाद नरक में भी यातनाएं झेलना पड़ती हैं। चलिए अब जानते हैं ये वो चौथी बात कौन सी थी जो शिवजी से पूछी गई। सफल होने के लिए ध्यान रखें, ये एक बात संसार में हर मनुष्य को किसी ना किसी मनुष्य वस्तु या परिस्थिति से आसक्ति यानी लगाव होता ही है। लगाव और मोह का ऐसा जाल होता है जिससे छूट पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इससे छुटकारा पाए बिना मनुष्य की सफलता मुमकिन नहीं होती। इसलिए भगवान शिव ने इससे बचने का एक उपाय बताया है। तो ये चौथी बात हमें पता चलती है कि शिव जी ने इसका क्या उपाय बताया है। श्लोक इस प्रकार है, दोष दर्शी भवेत्रत यत्र स्नेह प्रवर्तते अनिष्टे नाशविंतम पश्चेत यथा शिवप्रम विर्जयते। अर्थात इसका अर्थ यह है, भगवान शिव कहते हैं कि मनुष्य को जिस भी व्यक्ति या परिस्थिति से लगाव हो रहा है या हो रहा हो जो कि उनकी उनकी सफलता में रुकावट बन रही हो, मनुष्य को उसमें दोष ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। सोचना चाहिए कि यह कुछ पल का लगाव हमारी सफलता का बाधक बन रहा है। ऐसा करने से धीरे धीरे मनुष्य लगाव और मोह के जाल से छूट जाएगा और अपनी सभी कामों में सफलता पाने लगेगा। चलिए जानते हैं वह पांचवी और आखिरी बात कौन सी है। यह एक बात समझ लेंगे तो नहीं करना पड़ेगा दुखों का सामना। यह कौन सी बात है? तो इसका श्लोक ऐसे जाता है, नास्ति तृष्णा सन दुखम, नास्ति त्याग सम सुखम, सर्वान कामन परित्यज्य ब्रह्मा भुवाय कल्पते। अर्थात इसका अर्थ यह है, आगे भगवान शिव मनुष्यों को एक चेतावनी देते हुए कहते हैं कि मनुष्य की तृष्णा यानी इच्छाओं से बड़ा कोई दुख नहीं होता और इन्हें छोड़ देने से बड़ा कोई सुख नहीं है। मनुष्य का अपने मन पर वश नहीं होता, हर किसी के मन में कई अनावश्यक इच्छाएं होती हैं और यही इच्छाएं मनुष्य के दुखों का कारण बनती हैं। जरूरी है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर समझे और फिर अनावश्यक इच्छाओं को त्याग करके शांत मन से जीवन बिताए। तो मैं आशा करती हूँ कि भगवान शिव ने माता पार्वती को बताए थे जीवन के ये पांच रहस्य जो बताए गए, वो आप अपने जीवन में इनको उतारेंगे और इनका उच्चारण करेंगे और एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, अच्छा मनुष्य, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे। आशा करती हूँ ये आपको पसंद आया होगा।

0: प्यारे प्यारे सुनने वालों, आपको हार्दिक से स्वागत है यहाँ पर एक बार फिर से। और इस बार एक प्रश्न हम मेरे साथ की गई है और वो प्रश्न मैं आपके पास भी रख रही हूँ। और उसके बाद ये बात है कि कौन सी धातु के बर्तन में भोजन करने से क्या क्या लाभ और हानि होता है। यानी कि बर्तन आप तो जानते हैं, बर्तन यानी बर्तन जिसमें हम भोजन करते हैं, और इसमें बर्तन कई प्रकार के होते हैं। तो उसके बारे में हम बबली जी से गुजारिश है कि बबली जी आप बताओ कि कौन कौन सा बर्तन में, किस किस प्रकार के बर्तन में खाने से क्या हानि हो, क्या लाभ है।
1: हाँ जी, ज़रूर शांता जी। बर्तन भी कई प्रकार के होते हैं शांता जी, जैसे सोने के बर्तन,
0: अच्छा,
1: चांदी के, कांसा, तांबा, मिट्टी
0: जी,
1: और भी वगैरह वगैरह।
0: हाँ, पोर्सेलेन।
1: हाँ जी,
0: पोर्सेलेन वो भी मिट्टी के बनता है।
1: पोर्सेलेन वो कौन सा?
0: पोर्सेलेन जो हम घर पे आजकल भी यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जो कांच घट होते हैं।
1: ओ,
0: वो
1: अच्छा।
0: सफेद वाला।
1: ओ, अच्छा अच्छा
0: जी। हाँ,
1: सफेद प्लेटी वगैरह जैसे
0: जी।
1: अच्छा, तो मैं शुरू करती शांता जी।
0: बिल्कुल, हम तैयार है सुनने के लिए, साथ में हमारे सुनने वालों भी।
1: हाँ जी, सोने के बर्तन शांता जी।
0: सोने के बर्तन।
1: हाँ जी,
0: सोने की बर्तन।
1: हाँ, सोना कह सकते हो। सोने, सोना एक बर्तन हो गया। सोने तो सब प्रकार के बर्तन, बहुत सारे,
0: बहुत सारे।
1: हाँ जी।
0: और सोने भी तो, नींद लेना भी सोने।
1: हाँ, वो भी सोना। सही बात।
0: पर वो बर्तन नहीं।
1: नहीं नहीं नहीं, नहीं।
0: बर्तन के बात हम करते हैं। हाँ
1: हाँ, हर चीज के दो दो मतलब निकल जाते हैं। तो हाँ जी, जैसे सोने के बर्तन शांता जी, सोना एक गर्म धातु है। सोने से बने पात्र में भोजन बनाने और करने से शरीर के आंतरिक और बाहरी दोनों हिस्से कठोर, बलवान, ताकतवर और मजबूत बनते हैं। और साथ साथ सोना आंखों की रोशनी बढ़ाता है।
0: अब सोना के बर्तन में खाने से इतना लाभ।
1: हाँ जी, और सोने के बर्तन तो ज़्यादातर अमीरों के, राजे महाराजों के पास ही होंगे।
0: अभी हो सकता है, हो सकता है, और हालांकि हम भी बना सकते हैं।
1: सोने के बर्तन मैंने कम देखे शांता जी।
0: हाँ, बनवा सकते हैं।
1: हाँ, बनवा सकते हैं। हाँ, वो कौन सी बड़ी बात है, बनवा सकते हैं
0: जी।
1: लेकिन मैंने कमती देखा कि लोग सोने के बर्तन में खाना बनाते हैं और खाते हैं।
0: सही है, तो सही। हाँ,
1: आप जानते हैं शांता जी, भी पिछले घर कि भारत के एक बड़े बिजनेसमैन
0: जी, बड़े बिजनेस
2: मेरे ओर देख रहे हो तो मैं अंबानी जी का याद
0: जी, अंबानी जी।
1: हाँ जी, अंबानी जी की बेटी की शादी हुई
0: जी,
1: और इतने लोग आए, हम जानते नहीं थे। हमारे बेटे ने बताया कि आपको पता है उनकी बेटी की शादी हुई, सारे फिल्म स्टार, बड़े बड़े राजा महाराजा। हमने कहा हम नहीं जानते।
0: बेटी की या बेटा?
1: बेटी की भी हुई है, बेटे की भी हुई है।
0: अच्छा,
1: थोड़े फ़र्क है, थोड़े दिनों का।
0: जी जी जी।
1: हाँ जी, तो अमीरों की अमीरी बातें, तो जितने अमीर उतना खर्चा। अच्छा, हम आगे बढ़ते शांता जी। चांदी के बर्तन। चांदी एक ठंडी धातु है जो शरीर को आंतरिक ठंडक पहुंचाती है, शरीर को शांत रखती है। इसके पात्र में भोजन बनाने और करने से दिमाग तेज होता है, आंखें स्वस्थ रहती हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है। और इसके अलावा पित्त दोष, कफ और वायु दोष को नियंत्रित रहता है।
0: चांदी के बर्तन खाने में।
1: हाँ,
0: चांदी के बर्तन में खाने से,
1: खाना बनाना और खाना,
0: और बनाना भी,
1: दोनों चीज़ें।
0: अच्छा, चांदी हाँ। के बर्तन में हमने देखे गुरुजी उसमें भोजन करते थे, चांदी के बर्तन, चांदी के गिलास, और एकदम से अलग जी।

0: हाँ, जो आपने सुने बर्तन के बात हो रहे है और हमारे मैंग पनेल के पीछे बैठ रहा है आज संजय जी, तो धरती से गीत खाना मिलेगा पीना मिलेगा और यहाँ बबली बताएगा कि कौन से पात्र में हमको खाना मिलेगा।
1: जरूर शांता जी, अभी मैंने सबको बताया कि सोने के बर्तन और चांदी के बर्तन,
0: सोना चांदी जी।
1: अब हम आगे बढ़ते शांता जी, अब है कांसा के बर्तन। कांसे के बर्तन में खाना खाने से बुद्धि तेज होती है, रक्त में शुद्धता आती है, रक्त पित्त शांत रहता है और भूख बढ़ती है। लेकिन कांसे के बर्तन में खट्टी चीज़ें नहीं परोसनी चाहिए। खट्टी चीज़ें इस धातु से क्रिया करके विषैली हो जाती है जो नुकसान देती है। कांसे के बर्तन में खाना बनाने से केवल 3% ही पोषक तत्व नष्ट होते हैं।
0: ये तो बहुत फ़ायदाकारक है, फायदा इसमें है।
1: फायदा तो है, लेकिन कांसे के बर्तन में खट्टी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। जैसे नींबू हुआ, टमाटर भी नहीं, क्योंकि खट्टास से वो चीज़ विषैली हो जाती है।
0: अच्छा,
1: हाँ जी। अब हम आगे चलते हैं
0: जी।
1: तांबे के बर्तन। तांबे के बर्तन में रखा पानी पीने से व्यक्ति रोग मुक्त बनता है, रक्त शुद्ध होता है, स्मरण शक्ति अच्छी होती है, लीवर संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। तांबे का पानी शरीर के विषैले तत्व को ख़त्म कर देता है, इसलिए इस पात्र में रखा पानी स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। तांबे के बर्तन में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे शरीर को नुकसान होता है।
0: तो इसमें फ़ायदा भी है और ना फायदा भी है, हानि और नुकसान इसमें है। तांबा अगर हम कहें तो तांबा वो जिस पे हम मंदिर में जो देखते हैं ना, शिवलिंग के ऊपर जो,
1: हाँ जी,
0: जो धरता है
1: घड़ा,
0: घड़ा जो
1: हाँ
0: धरता है, उसका रंग जो है थोड़ा लाल लाल है।
1: हाँ जी, तो वही तांबा है।
0: वो तांबा है,
1: तांबा वो भी है। और पहले मंदिरों में तांबे के गिलास में पंचामृत रखते थे।
0: पंचामृत?
1: हाँ जी।
0: अच्छा,
1: अभी भी है, उसी में रखते हैं।
0: और अभी आपने कहा तांबे में क्या रखना नहीं चाहिए?
1: तांबे में, तांबे का पानी शरीर के विषैले तत्व को ख़त्म कर देता है, इसलिए इस पात्र में रखा पानी स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है
0: जी।
1: तांबे के बर्तन में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे शरीर को नुकसान होता है।
0: नुकसान होता है। तो मेरे ख्याल से आप जैसे कहते हैं कि तांबे के बर्तन में पानी धर के और पी, तो अगर आप इसमें रात में पानी धर दे और सुबह में पी ले तो तंदुरुस्ती के लिए भी बहुत ठीक होगा।
1: हाँ, वो ठीक। आजकल मैंने देखा है शांता जी, आजकल तो बोतलें आ गई हैं तांबे की।
0: तांबे के बोतल भी आ गए?
1: हाँ जी, उसमें लोग पानी भर के अपने काम पे या स्कूल में बच्चे लेके जाते हैं।
0: बहुत अच्छा।
1: अब हम आगे चलते हैं पीतल के बर्तन।
0: पीतल यानी कोपर।
1: हाँ जी, पीतल के बर्तन में भोजन पकाने और करने से कृमि रोग, कफ और वायु दोष की बीमारी नहीं होती। पीतल के बर्तन में खाना बनाने से केवल 7% पोषक तत्व नष्ट होते हैं।
0: ये आखिरी लाइन जो आपने कहा, औषधि नष्ट होता है, यानी कि विटामिन जो कहते हैं, विटामिन खुरंत और सब्जी, सब्जी में जो खुरंत
1: 7% नष्ट होती है।
0: विटामिन जो होता है, अगर आप तांबे के बर्तन में भोजन पकाओगे तो उसका विटामिन जो है कम नष्ट होता है।

सुनने वालों, जैसे कि आप सुन रहे हैं किस प्रकार और कौन सा बर्तन में जो आपको और भोजन तथा उनके उनके बारे में जानकारी जो बबली जी आज लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम न्यूज़ और कमर्शियल की ओर बढ़ेंगे और उसके बाद में हम आपके साथ फिर कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे।

0: फिर चमक उठते हैं। हाँ। वो चलते हैं 6 महीने 1 साल तक, और रोज अगर उसमें खाना पकाएंगे हाँ। तो वो तो फिर उतर जाएगी ना।
1: हाँ हाँ, सरनाम में श्री नामों में हम बर्तन साफ करते थे, कैसे कहे, कोकोनट के
2: गुच्छा से।
1: हाँ, कोकोनट के छिलका से।
0: भारत में भी करते थे शांता जी।
1: हाँ,
0: स्पॉन्स वगैरह ये तो अब आए हैं।
1: अब आए हाँ।
0: पहले कहाँ थे, पहले उसी से करते थे,
1: कोकोनट के खुज्जा से। हाँ, ओकर और राखी से।
0: हाँ, कोयले की राख से।
1: हाँ, चूल्हा हाँ में जो आग रहा था ना, जो खाना बनता था, जो राखी था, उससे हम मंजन करते थे बर्तन, थोड़ा से सेब डाल के
0: करते थे मंजन। कोयले का कहते अच्छा होता है, दांत साफ करो।
1: वाकई में सही है बबरी जी, कोयला से अगर आप दांत साफ करो तो बहुत सफ़ेद हो जाता है। जैसे आप आजकल में लोग ब्लैक मेडल खबर करते ना, स्पेशल मेडल है उसके लगा कर, तब रात भर सोते तो सुबह में हो जाते, सही से उपाय है कोयला खबर।
0: सही बात, सब वो और आसान तरीका है, सब पुराने तरीके हैं जो आजकल थोड़े दूसरे तरीके से आ रहे हैं।
2: और जो आपने कहा कि जिस प्रकार से 6 महीना कभी 3 महीना में वो किस प्रकार से आप प्रयोग करते थे हड़िया, तो वो कली उसको कराते थे या उतना समय बाद, जैसे हर बार दिवाली आता है तो दिवाली से पहले साफ कराना
0: ना, जिसकी जैसे इच्छा वो दिवाली पे भी करवा सकते हो, जिसके जल्दी पहले कली उतरी वो पहले भी करवा लेते थे, जिसके ज़्यादा खराब है बर्तन।
1: हाँ बबली जी आप बताओ।
0: हाँ जी शांता जी, लोहे के बर्तन, लोहे के बर्तन में बने भोजन खाने से शरीर की शक्ति बढ़ती है। लोह तत्व शरीर में जरूरी पोषक तत्वों को बढ़ाता है। लोहा कई रोगों को ख़त्म करता है, पांडु रोग मिटाता है, शरीर में सूजन और पीलापन नहीं आने देता, कमाला रोग को ख़त्म करता है और पीलिया रोग को दूर करता है। लेकिन लोहे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें खाना खाने से बुद्धि कम होती है और दिमाग का नाश होता है। लोहे के पात्र में दूध पीना अच्छा होता है। अब हम एक गाने की ओर बढ़ते हैं सुनने वालों।
2: जो गाने की ओर बढ़ रहे हैं तो क्यों ना हम एक शांता जी के पिटारा से निकाला हुआ गीत को रख देते हैं।
0: जरूर।

0: हम अपना संदेश जो आज बबली जी हम सबको सुना रहे हैं कि किस प्रकार से बर्तन, और पर बबली जी इसमें मैं अभी मेरा दिल नहीं भरा ये सवाल से, क्योंकि जो भारत में जो कली कहलाते हैं ना, जो जो बर्तन को और चमक दे देते हैं, तो ऐसा शांता जी आपको ख्याल होंगे कि अगर आप कोला क्रेक कभी गए, पोवाका गए, तो हमारे जो जंगल वाले जो वासी होते थे तो उन लोग का बर्तन एकदम भी चमाचम होते थे, ऐसा है कि ना?
1: हाँ, उसमें हम ना जाने वो सब किस तरह से बर्तन साफ करते थे, जंगल में जो क्रियोल रहते थे ना, वो सब इतना अच्छे से अपना बर्तन नदी के किनारे जाकर और सिर पर धर कर वो नदी किनारे जाकर और वो बर्तन माँजते थे। एक बात मैं बताऊँ, आप बर्तन माँजने के बात करते हैं, शहर में मेरी फ्रेंड के घर एक ऐसे ही व्यक्ति जो गई थी वहाँ पर, इंटीरियर हेल्प थे ना आज जो कहते हैं हेल्प इन हाउस होल्डिंग, तो वो जो हेल्प इन हाउस होल्डिंग था, तो एक बर्तन वो पाई साफ करने के लिए, तो उसका रांत जो था, यानी स्पेशल रांत रहे जो आप आगे पे धर दे और ना बहुत ना काला होए, वो व्यक्ति जो उसके पास घर में काम करते वो साफ कर करके एकदम से निकाल दी क्योंकि उसका आदत थी ना सब कुछ एकदम चमकना चाहिए बर्तन। हाँ, तो वो जब काम पे से घर पे गए तो देखे उसका बर्तन वाकई में अंदर से और बाहर से दोनों चमक गए
0: पर वो जरूरत नहीं था,
1: वो जरूरत
0: ऐसा होता है ना कभी कभी, जब पैंट आया, जो फटा हुआ पैंट आया, फटा हुआ शर्ट आया, तो घर पे बच्चे खरीद करके पैंट और शर्ट लेकर आए। हाँ। कितना मंगा भर के, और माता पिता जो नहीं, पिता तो उस पर ध्यान नहीं देते, पर माँ सोचते कि चलो इसका पैंट फटा हुआ है सी देते, और जबकि वो फैशन था। और इसी प्रकार से जैसे कि, पर ये प्रश्न मेरा अभी बाकी है शांता जी, अभी आपने उसके बारे में नीदरलैंड्स में कुछ कहने वाले थे कि किस चीज़ से वो बर्तन को कली देते थे।
1: आप जानते हैं गूगल मरहाज जो हमारे पास है, जो इस वर्ल्ड वाइड में है ना, तो गूगल मरहाज से अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हो तो उस पर आप खोज लो, और इस तरह मैंने भी खोजी तो हमने पाई कि कली जो बबली जी कहते हैं साफ करता है, तो वो स्वाफल सूर है,
0: स्वाफल सूर कहलाते हैं, और उससे चमक चमक धमक हो जाता था बर्तनों का
1: जी।
0: तो ये खेमिस प्रोडक्ट है ना?
1: हाँ, तो खेमिस प्रोडक्ट तो है,
0: और उसे चमक धमक हो जाता था, यानी कि कली कर देते थे अपने बर्तनों को,
2: यानी बर्तनों में भी नई जान आ जाती है, कली कर दो
1: जी,
0: नई जान आ जाती है।
2: हाँ जी
0: बबली जी, अभी आपको कुछ और भी संदेश हम सब के लिए रखना था।
2: हाँ जी जरूर, अब हम आगे बढ़ते हैं शांता जी।
1: हाँ जी,
2: स्टील के बर्तन,
1: स्टील का बर्तन जी,
2: जो आजकल सब ज़्यादातर मंदिरों में घरों में इस्तेमाल होते हैं, स्टील के बर्तन नुकसानदायक नहीं होते। हाँ? क्योंकि ये ना ही गर्मी से क्रिया करते हैं और ना ही अमल से, इसलिए नुकसान नहीं होता। इसमें खाना बनाने और खाने से शरीर को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता, तो नुकसान भी नहीं पहुंचता। दोनों बराबर रहते हैं शांता जी,
1: बराबर एकदम। हाँ,
2: अब हम आगे चलते हैं एल्युमिनियम के बर्तन।
1: हाँ?
2: एल्युमिनियम बॉक्साइट का बना होता है।
0: तो एल्युमिनियम बॉक्साइट, बॉक्साइट बोले तो बॉक्सिट।
1: हाँ
0: हाँ, तो उसके और बढ़ने से, क्योंकि सूरीनाम में तो बहुत सालों तक और बॉक्सिट का और निकाला गया, और एल्युमिनियम यानी कि पहले जो खास करके फ्लिक्टॉय होते थे ना, हवाई जहाज सब एल्युमिनियम के बनाया जाता था। आजकल तो क्यों कुछ फ्लिक्टॉय है जो कंस्टॉफ को बनाया जाता है, और एल्युमिनियम एक का बोले मेटल सोर्ट है, धातु है ना।
2: और ये भी शांता जी, और ये जो कुकर है भारत में, कहते गैस की बचत हो, खास की बचत हो। हाँ। तो जो प्रेशर कुकर है, दाल उसी में बनती ज़्यादातर, वो भी एल्युमिनियम। तो
1: जी
2: हाँ जी,
0: तो एल्युमिनियम के ओर बढ़ने से पहले क्यों ना शांता जी का जो पिता